0: whether to withdraw the agitation or continue with it. The government has also said that it can recommend an ED probe into the financial irregularities, set up a fast-track court, ensure that the charge sheet is filed within 90 days. The final decision on the protest, of course, rests with the students.
1: Har cheez, har samasya ka samadhan sambad se hota hai. Lathi goli danta se nahi hota hai. लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि नुकसान बहुत होता है. तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं. मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं. आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं. आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखने का भी काम दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे.
2: In the many camps that exist right now, one of course is also this tent where Devendranath Mehto has now been sitting on a fast until death for 15 days. And take a look at this tent. You know, under the tricolor, he's been lying here for over a fortnight. It's been raining incessantly, and very often this tent is not enough to be able to even block the rain. But the fast continues, and the central demand for a CBI investigation also continues. Devendranath ji, 15 din ho gaye hain.
3: Result ka jo umeed tha, wo result satisfied like nahi aaya hai baat. Agar hum sabhi chhatra santusht ho jate, to chhatra ka kaam kabhi nahi hai aandolan karna, protest karna, gherav karna, march karna. छात्र का काम है पढ़ना, एग्जाम देना, रिजल्ट लेना और अपना फ्यूचर.
2: आपको लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए?
3: बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई के जांच के साथ साथ जो जांच रिपोर्ट है उसको ट्रायल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए. नहीं तो यहाँ 25-30 साल पहले जेपीएससी पर 11-11 सीबीआई जांच अलग अलग परीक्षाओं पर हो चुकी है, लेकिन आज तक उसको ट्रायल में कोर्ट में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई है. अभी झारखंड राज्य के अंदर जितने भी सचिव लेवल के पदाधिकारी हैं सभी सीबीआई जांच पर आरोपित हैं, बाय नेम धांधली करके लोग नौकरी लिया है, लेकिन सभी बेल से नौकरी कर रहे हैं, सजा नहीं हो रही है लोग पर. तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिस्टम बदलाव आ जाए.
2: As the time for the march by those who are demanding justice in Ranchi draws close, more attention is now being focused on this stadium where it's been close to 3 weeks that right over here there has been one steady group of students, a total of 4 of them who are sitting on a bhook hartal. They have been sitting on Anshan. 2 of them have had to be hospitalized, but now greater focus on Ranchi, and you've got more people from across the state. A little bit of what you had seen at Jantar Mantar, a little bit of social media awareness as news from Jharkhand spreads across the country. आप यहाँ पर कह रहे हैं सीट बेचना है तो EMI ऑप्शन के साथ बेचना ताकि हम भी खरीद पाएं. Now what's been happening is that people across the country must understand, here it is not so much the issue of a paper leak. What is being alleged is that jobs are being sold and a rate list has been set out. ये किस तरीके की rate list की आप बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए.
4: आयुष पांडे. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीट बेचना ही है, अमीर लोग जो खरीद रहे हैं, तो गरीब के लिए भी कुछ लाना चाहिए, इसलिए EMI ऑप्शन आना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी खरीद पाए.
2: वो कह रहे हैं कि भाई हम CID का तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करा ही रहे हैं, लोगों को हमने जेल में भी डाला है, तो प्रॉब्लम क्या?
5: पर देखिए इससे कुछ हो नहीं रहा ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है, मतलब उसका यही मतलब है कि ऊपर से ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नीचे से नहीं है। तो आप नीचे के एक दो को डाल दोगे, बाकी ऊपर के सारे लोग बच जाएंगे, तो ये फिर से रिपीट ही होगा और कुछ नहीं होगा।
2: ना झुकेंगे ना बिकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, झारखंड हमारा है। बिकॉज अगेन द एम्फेसिस कंटिन्यूसली इज दैट व्हाट हैपेंड ऑन द 20th ऑफ जुलाई इन दिल्ली शुड नॉट हैपन ऑन द 10th ऑफ ऑगस्ट। There should be no violence. There should be no opportunity for the government to take any action. Things should remain peaceful. And that's something, to be fair, we keep hearing being repeated from this stage. आप यहाँ जो पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं?
6: मैं कहना चाहता हूँ कि हर लोग तैयारी कर नहीं पाता, और जो जो कर रहा है कम से कम उसकी सरकार को सुनना चाहिए और पेपर लीक नहीं करना चाहिए। हर किसी का बस का बात नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर पाए। बचपन से मेहनत करता है बच्चा लोग तो कुछ कर पाता है।
0: So all eyes on the student protest in the state of Jharkhand when the third round of conversation between the government and the protesting students has failed. We'll keep a track and much more. For now, slipping into a very short break.
7: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
8: so many attacks,
7: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
7: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
7: Hard facts.
8: War-struck country.
7: Hard questions.
8: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine. In France. In Italy.
9: At Srinagar.
8: I am Iskandar.
10: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on NDTV. Celebrating excellence across journalism and innovation. NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the network of impact.
11: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
12: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
11: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक.
6: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना प्लीज. आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा.
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे.
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: 3 साल.
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत.
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: सिनेमा घर तक अलाउड.
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है.
5: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Trade negotiations, the students have announced a march to the Vidhan Sabha. That's going to be taking place today. Do remember there's a deadline of the 10th of August, and that's going to be taking place at 11 o'clock this morning. Tensions flared in West Bengal after former Chief Minister Mamata Banerjee's convoy was attacked by protesters while she was on her way to meet the family of party worker whose death in police custody has become the centre of a political confrontation. And it is the Lok Sabha Business Advisory Committee that will be meeting today at 1 p.m. with the proposed FCRA bill expected to figure in the meeting. Official details as far as the government's legislative plan is concerned, it's likely to emerge after that very crucial meeting. It's Karnataka's Chief Minister E.K. Shivakumar who held a lengthy 1.5 hour meeting with Mallikarjun Kharge here in Delhi in order to discuss ministerial aspirations and growing dissent amongst legislators following recent cabinet adjustments. Tamil Nadu Chief Minister proposes a special assembly resolution mandating that the state song must be sung first at all public events, universities and government offices across the state. He will move a resolution in the assembly that's going to take place today. Let's begin the bulletin with news coming in from Jharkhand, and that's the student protest that's entered D17 with talks between students and government that is failing to break the deadlock. Students are set to march towards the Vidhan Sabha. That's going to be taking place today at 11 o'clock this morning, and they plan to surround the assembly, get out the assembly, and the protesters remain very firm as far as that demand is concerned for a CBI probe. Do remember that the government is offering an ED probe into the matter. They're also seeking the cancellation of exams amid the ongoing agitation. The government of Jharkhand says it held a very positive conversation with students that they will now decide whether to withdraw the protest. The government has, of course, they have proposed at the moment an ED probe into the matter, a fast-track court and charge sheets within a time frame of 90 days in the exam irregularity cases. But this is not going down too well with the students. In fact, they're not very happy with round three of conversations.
2: Har cheez, har samasya ka samadhan. संवाद से होता है, लाठी गोली डंटा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंटों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
3: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
4: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सरकार के कैपेसिटी में है, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व्ड है वहाँ पर हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाए।
3: इतनी है कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
4: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशंस हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रही हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
3: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
4: नहीं, अब वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।
5: हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है TDPL के द्वारा, तो TDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ JSSC CGL की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज्स के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जाँच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं, तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है, हम लोग CBI जांच पे हम
6: रद्द करने की मांग थी।
5: हाँ यस सर,
6: आपकी मांग रद्द करने की थी।
5: हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है।
7: हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है।
6: 50% कैसे एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो।
7: हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं, कुछ एकाध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है।
1: And switching tracks to getting you more news, it's the BJP versus the TMC face-off that's intensified in West Bengal after an attack that took place on the convoy of Mamata Banerjee. This was during her visit to North 24 Palganas. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with stones and also shoes as well as bottles. The former chief minister and TMC supremo, Mamata Banerjee, claims that she could have died in the attack if not for the windshield. But it is, of course, West Bengal's current chief minister, Suvindu Adhikari, who has blamed Mamata Banerjee, accusing her of not informing the police about that visit of hers. But he added that adequate security was, however, provided.
8: चैनल हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने में। हमको इतना गाड़ी को अटक किया, अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता, ऐसा पुलिस के सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
9: पुलिस क्या कर रहे हैं? इतना
8: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
10: ढुके जयसन जे রকা পে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে তৃণমূলের সম্পদ, আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই, আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই। রকা পে ছিল সেই অবস্থায়, পিটিয়ে মেরেছেন, অসুস্থ, এর বিচার চাই, এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে। মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না, তার বাড়ির লোক বলছে। আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে। পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম, যেটা তো ওনার উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে। না, আমাদের নির্দেশ আছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন, বয়সও হয়েছে, ওনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ওনার সম্মান রাখা উচিত। সে কাজ পুলিশ করেছে, পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি। তো ওনাকে বলবো, আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো, এই কাজগুলো করবেন। আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায়, আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায়, আপনি নিশ্চয়ই করুন। কিন্তু আপনি অহেতুক এখন উন্নয়নের সময় এই সময় আপনি দয়া করে কোন জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
9: আসল ভয়টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তৃণমূল কংগ্রেসকে, সেই কারণে এই খুনের চেষ্টা আমরা তীব্র নিন্দা করছি। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আগামীকাল 3টে থেকে 4টে দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে 3টে থেকে 4টের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ হবে।
11: আমারা দু এমপি দোলা সেন আর কল্যাণ ব্যানার্জিকে লেকে উহা পর গিয়া জব যা রে তে 1 ঘন্টা পুলিশ রোক দিয়া। ইসি বিচ মে বিজেপি কে গুন্ডা ইকট্ঠা হো গে আর মমতা ব্যানার্জিকে গাড়ি কে উপর বড়া বড়া পত্থর ইটা আর কিচড় ফেঁকা গিয়া। আগর গাড়ি কা খিড়কি বন্ধ নাই রহতা, উইন্ডো বন্ধ নাই রহতা, তো মমতা ব্যানার্জি কো আর দূসরে যে থে কল্যাণ ব্যানার্জি ও দোলা সেন ও ঘায়ল হয়ে যেত।
1: And switching tracks now to the monsoon session of the parliament that's set for a stormy final week. In fact, just a few days to go, with the government preparing to discuss the FCRA bill, while the opposition is planning to raise several contentious issues. The Lok Sabha Business Advisory Committee will be meeting today at 1 o'clock this afternoon. The proposed FCRA bill expected to figure in that crucial meeting. Official details on the government's legislative plan are likely to emerge after that meeting takes place. The India bloc, meanwhile, is set to meet at 10 o'clock this morning in the parliament to chalk out a strategy for the final week of the session. The opposition will also hold a protest, and that's going to be taking place at 10:30 a.m. while the Congress has issued a whip to its MPs ahead of the key parliamentary business.
12: We oppose it as of now, as it stands now, we oppose it because it is strangling the NGOs who are doing good work and also killing the minority institutions who is doing great service. So, and the opposition should be taken into confidence before bringing in anything, and the government do not take any such proactive measures to take opposition into confidence regarding this bill or any other.
13: I mean, if FCRA is to come, this is something which my party will support. In my opinion, FCRA is a bill which came, the some regulation for foreign NGOs which receive foreign funding in India. This has been around since 1976. 2010 was when the UPA government brought an amendment in. And from time to time, every government, based on the prevalent situation in the world, based on the prevalent situation in India, based on the fact that there are many NGOs registered in the country, has to take and has to amend. So I don't think that anyone should politicize this. I don't think this has anything to do with religion. This has nothing to do with politicization.
1: And switching tracks to break news coming in, and this is in regard to the Delhi court that has acquitted Brij Bhushan, and that is the NDTV sources now, you know, who have managed to access the court order details. The court basically says that the allegations against the wrestlers, you know, the wrestlers' allegations were planted, the allegations were false, they were fabricated, and the court has gone ahead and said this was a conspiracy that was politically motivated, and that is what the court has said. And that is, you know, the allegations that were made collectively at the instance of a female and a male wrestler, along with the coaches, the wrestling training center in Rohtak. That is what the Delhi court has gone ahead and said, that those were politically motivated, they were false, they were fabricated. Now, a major controversy over that Air India flight between Phuket and Delhi that encountered severe turbulence left passengers and crew members injured. All in all, 17 of them, 13 passengers and 4 crew members were hospitalized. Now, the pilot's initial report, the screening has shown that there was a dope test which has come out positive, with you know, the Civil Aviation Ministry that's termed the turbulence an incident that's serious, as the investigation really continues into the matter. Air India, however, said that the pilots underwent a post-flight screening test as per applicable protocols, and that's the norm. The airline says that the test results have not been shared with them, and reiterated that it cannot conduct a regular drug testing of ACE. You know, this is very normal when they, you know, in such a situation that a drug test is always taken. In fact, the first one, only of one of the two pilots, has come out positive. The airlines has also said that it will continue to cooperate with the authorities in the ongoing investigation. And 4 days ago, we do know that that flight from Phuket to Delhi was cruising normally when suddenly the aircraft plunged around 300 feet. It suddenly dropped over Odisha and passengers and crew were thrown around. Several people were injured and the flight eventually landed safely in the national capital. But what happened in those terrifying moments is now under investigation. The turbulent story has now taken a dramatic new turn with one of the pilots failing that dope test. Now there is going to be a second, perhaps even a third test, and here are the details you need to know as to the protocols that are followed by the airlines.
14: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हजार फीट नीचे गई या क्या हुआ.
15: This is the Air India Phuket to Delhi flight at the center of a growing aviation controversy. On August 4, the aircraft encountered severe turbulence during its journey to Delhi. The aircraft suddenly lost approximately 300 feet altitude. For passengers inside the cabin, it was a terrifying few minutes. Several passengers and crew members were injured, with some crew members suffering serious injuries.
16: It was a very chaotic situation. I could see everyone was bruised, bleeding, or with a broken arm or a leg or something like that. It was the worst moments of my life. I've never encountered something like or anything like this. And I pray to God no one ever has to be in this situation ever.
14: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हजार फीट नीचे गई या क्या हुआ. मैं एकदम से ऊपर जाके लगा, फिर नीचे आया. पता नहीं वजह समझ ही नहीं आई हमें, ना बताया गया कि क्या वजह.
17: एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया. उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई.
15: द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली इन दिल्ली, बट द इंसिडेंट वाज सीरियस इनफ फॉर एविएशन अथॉरिटीज टू लॉन्च अ प्रोब. द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, व्हाइल द DGCA हैज आल्सो स्टेप्ड इन. Both pilots were taken off flying duties pending the investigation, and then came another twist. As a part of mandatory post-flight procedures, the pilots underwent screening for psychoactive substances. The initial screening of the captain was reported as not negative. That does not mean the captain has failed a confirmed drug test. The DGCA says that the sample requires confirmatory testing. So what does not negative actually mean? It means the initial screening has raised a flag, but it is not by itself the final answer. The sample has to undergo further analysis before authorities can establish whether a prohibited psychoactive substance was actually present. And that is why investigators are now waiting for the confirmatory result. For passengers, the immediate concern is obvious. When they step in onto an aircraft, they expect the crew operating it to be fully fit and the systems designed to protect them to work exactly as they should. That is why the pilot screening the issue has attracted so much attention. A flight that began as a journey from Phuket to Delhi has now triggered questions over turbulence, cockpit safety and pilot fitness. The confirmatory test will determine whether that red flag turns into a finding. Bureau Report, NDTV.
1: Switching tracks to breaking news coming in, and Israel has hit several locations in the southern part of Lebanon. We're going to get you the details, but first, we're slipping into a short break.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is TOK.
0: हो सकता है दुश्मन को।
2: Good morning, you're watching NETV 24/7. I'm Divya Vadla. We have a whole lot lined up for you, including Trump, who started the Iran war over nukes, says he will give it up for the Strait of Hormuz. We're going to get you details first, the headlines. Jharkhand students remain firm on the demand for a Central Bureau of Investigation probe into the recruitment exam irregularities, a request that the government has refused to grant. In response to the failed negotiations, the students have announced a march to the Vidhan Sabha. That's going to be taking place today. Do remember there's a deadline of the 10th of August, and that's going to be taking place at 11 o'clock this morning. Tensions flared in West Bengal after former Chief Minister Mamata Banerjee's convoy was attacked by protesters while she was on her way to meet the family of party worker whose death in police custody has become the center of a political confrontation. And it is the Lok Sabha Business Advisory Committee that will be meeting today at 1 p.m. with the proposed FCRA bill expected to figure in the meeting. Official details as far as the government's legislative plan is concerned, it's likely to emerge after that very crucial meeting. It's Karnataka's Chief Minister D.K. Shivakumar who held a lengthy 1.5 hour meeting with Mallikarjun Kharge here in Delhi in order to discuss ministerial aspirations and growing dissent amongst legislators following recent cabinet adjustments. Tamil Nadu Chief Minister proposes a special assembly resolution mandating that the state song must be sung first at all public events, universities and government offices across the state. He will move a resolution in the assembly that's going to take place today. Let's begin the bulletin with news coming in from Jharkhand, and that's the student protest that's entered D17 with talks between students and government that is failing to break the deadlock. Students are set to march towards the Vidhan Sabha. That's going to be taking place today at 11 o'clock this morning. And they plan to surround the assembly, get out the assembly, and the protesters remain very firm as far as that demand is concerned for a CBI probe. Do remember that the government is offering an ED probe into the matter. They're also seeking the cancellation of exams amid the ongoing agitation. The government of Jharkhand says it held a very positive conversation with students that they will now decide whether to withdraw the protest. The government has, of course, they have proposed at the moment an ED probe into the matter, a fast-track court and charge sheets within a time frame of 90 days in the exam irregularity cases. But this is not going down too well with the students. In fact, they're not very happy with round three of conversations.
3: Har cheez, har samasya ka samadhan. संवाद से होता है, लाठी गोली डंटा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंटों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
4: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
5: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सरकार के कैपेसिटी में है, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाएं।
4: चिंतित नहीं है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
5: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना, प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशंस हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रही हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
4: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
5: नहीं, अब वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।

हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है डीडीपीएल के द्वारा, तो डीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी सीजल की परीक्षा का सर का कहना है कि

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
5: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
7: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
6: आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
7: आपकी फैमिली है
6: और
7: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: सिनेमा घर तक अलाउड।
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
8: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
4: कुछ इससे भी अनोखा।
3: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
3: मसाला। द गिफ्ट सिटी इन गुजरात स्टैंड्स एट द हार्ट ऑफ इंडियाज ग्लोबल एंबिशन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन टू कनेक्ट इंडियाज ग्रोथ विद ग्लोबल कैपिटल। How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
4: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल।

0: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: The Gift City in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। फायर

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried

0: Commission. Their position is that there can be no compromise without a CBI probe. The government, meanwhile, says it's offering action and a time-bound investigation. The students, though, are asking for an investigation by an agency they believe will be independent. So the government, as I mentioned, has proposed an ED probe, a fast-track court, charge sheets within 90 days in the exam irregularity cases. Here are the reactions you need to listen to.
1: In the many camps that exist right now, one, of course, is also this tent where Devendranath Mehto has now been sitting on a fast until death for 15 days. And take a look at this tent. You know, under the tricolour, he's been lying here for over a fortnight. It's been raining incessantly, and very often this tent is not enough to be able to even block the rain. But the fast continues, and the central demand for a CBI investigation also continues. Devendranath ji, 15 दिन हो गए हैं
2: रिजल्ट का जो उम्मीद था वो रिजल्ट सेटिस्फाइड लाइक नहीं आया है बात अगर हम सभी छात्र संतुष्ट हो जाते तो छात्र का काम कभी नहीं है आंदोलन करना प्रोटेस्ट करना घेराव करना मार्च करना छात्र का काम है पढ़ना एग्जाम देना रिजल्ट लेना और अपना फ्यूचर
1: आपको लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए
2: बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई के जांच के साथ साथ जो जांच रिपोर्ट है उसको ट्रायल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए नहीं तो यहां 25-30 साल पहले जेपीएससी पर 11-11 सीबीआई जांच अलग अलग परीक्षाओं पर हो चुकी है लेकिन आज तक उसको ट्रायल में कोर्ट में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई है अभी झारखंड राज्य के अंदर जितने भी सचिव लेवल के पदाधिकारी हैं सभी सीबीआई जांच पर आरोपित हैं बाय नेम धांधली करके लोग नौकरी लिया है लेकिन सभी बेल से नौकरी कर रहे हैं सजा नहीं हो रही है लोग पर तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिस्टम पे बदलाव आ जाए
1: As the time for the march by those who are demanding justice in Ranchi draws close, more attention is now being focused on this stadium where it's been close to 3 weeks. That right over here, there has been one steady group of students, a total of four of them who are sitting on a bhookh hartal. They have been sitting on Anshan. Two of them have had to be hospitalized. But now greater focus on Ranchi. And you've got more people from across the state. A little bit of what you had seen at Jantar Mantar. A little bit of social media awareness as news from Jharkhand spreads across the country. आप यहाँ पर कह रहे हैं सीट बेचना है तो ईएमआई ऑप्शन के साथ बेचना ताकि हम भी खरीद पाए नाउ व्हाट्स बीन हैपनिंग इज दैट पीपल अक्रॉस द कंट्री मस्ट अंडरस्टैंड हियर इट इज नॉट सो मच द इशू ऑफ अ पेपर लीक व्हाट इज बीइंग अलेज्ड इज दैट जॉब्स आर बीइंग सोल्ड एंड अ रेट लिस्ट हैज बीन सेट आउट ये किस तरीके की रेट लिस्ट की आप बात कर रहे हैं अपना नाम बताइए
3: आयुष पांडे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीट बेचना ही है अमीर लोग जो खरीद रहे हैं तो गरीब के लिए भी कुछ लाना चाहिए इसलिए ईएमआई ऑप्शन आना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी खरीद पाए
1: वो कह रहे हैं कि भाई हम सीआईडी का तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करा ही रहे हैं लोगों को हमने जेल में भी डाला है तो प्रॉब्लम क्या
4: पर देखिए इससे कुछ हो नहीं रहा ना क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है मतलब उसका यही मतलब है कि ऊपर से ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है नीचे से नहीं है तो आप नीचे के एक दो को डाल दोगे बाकी ऊपर के सारे लोग बच जाएंगे तो ये फिर से रिपीट ही होगा और कुछ नहीं होगा
1: सिंगल डिमांड इज अविलंब नियुक्ति दो गिव अस आवर अपॉइंटमेंट्स वी आर गोइंग टू सिट ऑन an anishchitkalin bhook hartal which is an indefinite hunger strike and they basically are saying that there were these jobs the examinations that were done for the public service commission was not done in a transparent fashion and which is why these jobs have been given away to people who paid money
5: जिस नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को हम अपूर्ण मानते हुए कैंसिल करते हैं मतलब जिस भर्ती प्रक्रिया में आप नियुक्ति पूरा नहीं हुआ है नियुक्ति पत्र मतलब अपॉइंटमेंट लेटर हमने नहीं दिया इसलिए उसको हम इनकम्प्लीट मानते हुए हम कैंसिल करते हैं और ऐसे करके उन्होंने कैंसिल कर दिया उसके बाद हम लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में हम लोगों ने 2021 में केस किया और हाईकोर्ट में केस करने के बाद 4 साल केस लड़े और 2024 में हम लोगों ने केस जीता मैडम और केस जीतने के बाद जब हम लोग फिर जेएसएससी के पास गए कि अब तो हम लोग केस जीत करके आए हैं तो आप हम लोग को नियुक्ति दीजिए लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है सरकार सोई हुई है बहरी है जो भी बोल
1: अगर कोर्ट से आपको ऑर्डर मिल गया है तो फिर क्यों नहीं नियुक्ति मिल
5: मैडम इसमें पूरा खेल घोटाला वाला है समझ लीजिए क्योंकि ये वैकेंसी पूरा तरह से पारदर्शिता थी
6: हर चीज हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखने का भी काम, दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
7: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
8: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सरकार के कैपेसिटी में, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाए।
7: इतनी है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
8: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है, लेकिन आंदोलन हो एजिटेशंस हो तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रहे हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा, हो सकता है इसके पीछे बड़ी
7: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
8: नहीं, अब वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।
9: हमारी मांग है कि चूंकि यह परीक्षा प्रक्रिया दूषित है DDPL के द्वारा, तो DDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ JSSC CGL की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज्स के उसमें जो है कमिटी में हम लोग इसकी पूरी जाँच विद इन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं, तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग CBI की है, हम लोग CBI जांच पे हम
10: रद्द करने की मांग थी।
9: हाँ यस सर,
10: आपकी मांग रद्द करने की थी।
9: हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए जिस पे सहमति नहीं बन पाई है, यही हमारा जो है अंतिम है।
11: हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है।
10: 50% कैसे एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो।
11: हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा DDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने CID और ED का जाँच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं, कुछ एकाध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है।
0: ऑलराइट, लेट्स स्विच ट्रैक्स नाउ। अ सीरियस टर्बुलेंस इंसिडेंट ऑन एन एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम फुकेट टू दिल्ली हैज नाउ टेकन अ न्यू टर्न विद पैसेंजर्स एंड क्रू. They were injured seriously. You remember those visuals we played out after the aircraft had encountered severe turbulence. The Civil Aviation Ministry, as we speak, has called the incident serious and an investigation is underway. But Air India says the pilot underwent a post-flight screening test as per the applicable protocols. And the airline says the test results have not been shared with it and reiterated that it conducts regular drug testing of its crew as well. The airlines also said it will continue to cooperate with the authorities in this ongoing investigation. So we now need clarity on two things. What caused that severe turbulence on that flight? And whether there's any evidence whatsoever that the pilot was impaired. Just 4 days ago, an Air India flight from Phuket to Delhi was cruising normally when just suddenly the aircraft plunged around 300 feet. Passengers and crew were thrown around. Several people were injured as well. The flight eventually landed safely in Delhi, but what happened in those few terrifying moments is now under investigation. And now the turbulent story has taken a dramatic new turn as well. Take a look at the new details.
12: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 1000 फीट नीचे गई या क्या हुआ।
13: This is the Air India Phuket to Delhi flight at the center of a growing aviation controversy. On August 4, the aircraft encountered severe turbulence during its journey to Delhi. The aircraft suddenly lost approximately 300 feet altitude. For passengers inside the cabin, it was terrifying few minutes. Several passengers and crew members were injured, with some crew members suffering serious injuries.
14: It was a very chaotic situation. I could see everyone was bruised, bleeding, or with a broken arm or a leg or something like that. It was the worst moments of my life. I've never encountered something like or anything like this. And I pray to God no one ever has to be in this situation ever.
12: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 1000 फीट नीचे गई या क्या हुआ। मैं एकदम से ऊपर जाके लगा, फिर नीचे आया। पता नहीं वजह समझ ही नहीं आई हमें, ना बताया गया कि क्या वजह था।
15: एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया। उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई।
13: द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली इन दिल्ली, बट द इंसिडेंट वाज सीरियस इनफ फॉर एविएशन अथॉरिटीज टू लॉन्च अ प्रोब। The Aircraft Accident Investigation Bureau is investigating the incident, while the DGCA has also stepped in. Both pilots were taken off flying duties pending the investigation, and then came another twist. As a part of mandatory post-flight procedures, the pilots underwent screening for psychoactive substances. The initial screening of the captain was reported as not negative. That does not mean the captain has failed a confirmed drug test. The DGCA says that the sample requires confirmatory testing. So what does not negative actually mean? It means the initial screening has raised a flag, but it is not by itself the final answer. The sample has to undergo further analysis before authorities can establish whether a prohibited psychoactive substance was actually present. And that is why investigators are now waiting for the confirmatory result. For passengers, the immediate concern is obvious. When they step in onto an aircraft, they expect the crew operating it to be fully fit and the systems designed to protect them to work exactly as they should. That is why the pilot screening the issue has attracted so much attention. A flight that began as a journey from Phuket to Delhi has now triggered questions over turbulence, cockpit safety, and pilot fitness. The confirmatory test will determine whether that red flag turns into a finding. Bureau report, NDTV.
0: All right, in other news, you know, after the controversy over Tamil Nadu State's song being placed third at the Sundaran University convocation, the Vijay government is now set to table a resolution in the assembly. The resolution seeks to ensure that the state song is sung first at every event across the state. Tamil Nadu MPs have also written to the governor now, seeking clear guidelines and demanding that the state song precede all events. Another key issue could dominate the assembly today, which is the delimitation row, you must note. The Vijay government is expected to pass an anti-delimitation resolution following the recent all-party MPs meeting chaired by the chief minister himself.
16: Protocol in Tamil Nadu is that all government functions start with Tamil Thai Vaazhthu. We want that protocol to be adhered to. While we respect the national anthem and Vande Matharam, the national song, the precedence must be given to Tamil Thai Vaazhthu in all government functions. That is how it has always been done. And we have reiterated that and requested the governor to follow that protocol.
0: right. Meanwhile, let's get you the latest update.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आतुर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: already stepped down, and 19 people have been arrested in connection with the case. But the students are still refusing to withdraw their agitation. Students are set to march towards the Vidhan Sabha today. The protesters remain firm on their demand for a CBI probe and are also seeking the cancellation of exams amid the ongoing agitation. Basically, their position is that there can be no compromise without a CBI probe. The government says it's offering action and a time-bound investigation as well, but the students are asking for an investigation by an agency they believe will be independent. The government, as I mentioned, has proposed an ED probe, a fast-track court and charge sheets within 90 days in the exam irregularity cases. Before we get a lowdown, listen in to these crucial reactions.
1: एक मेरा अपील है कि इस प्रोटेस्ट में ना कोई राजनीतिक ना कोई धार्मिक झंडा लेकर के आए, ना ही कोई अश्लील ना ही कोई धार्मिक और उपद्रवी नारा लगाए, तिरंगा झंडा लेकर के आए और छात्र का जो डिमांड है उसी संबंधित नारा लेकर के आए और उसी को लगाए। अगर और विधानसभा घेराव पहुंचने में जो ब्रैकेटिंग लगाई गई है नुकीले तार वाला, इससे हम लोग बहुत गुस्सा में हैं।
2: We are parked at the protest site here in Ranchi, and if you can just, I will just show you behind me. The students here in large number, they have already started. They had announced the Jharkhand Vidhan Sabha Gherao program was what was announced earlier, and these students from the protest site, they have now hired autos and they are moving to the old Vidhan Sabha. They will all gather there, and from there they would be marching towards the new Vidhan Sabha. So today it's a big day, a big challenge for the state government actually, and the Jharkhand administration, Jharkhand government, to ensure that this protest passes off peacefully, because we are seeing large number of students actually since morning getting onto the autos, rickshaws, getting onto the buses and moving towards the old Vidhan Sabha where they're all gathered there. ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
3: अभी पुराने विधानसभा जा रहे हैं।
2: किस लिए जा रहे हैं?
3: अभी वहाँ से हम लोग नए विधानसभा के लिए घेराव करेंगे।
2: ये आप लोगों ने अपना अपना ऑटो ले लिया है?
3: अपना ऑटो लिया है।
4: हाँ, हम लोग का सारा का एक साथ जा रहा है, कोई अपना अपना ऑटो नहीं है, सबका एक साथ समूह जा रहा है।
3: हाँ।
2: So these students actually, they are moving towards the old Vidhan Sabha. From there, they would be marching and gherawing the new Vidhan Sabha, which is around 2 kilometers from the old Vidhan Sabha.
5: हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंटा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है, जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है, देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ। किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा, और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।
2: आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया मैम, लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्योंकि कल फिर एजिटेशन होगा स्टूडेंट्स का?
6: नहीं देखिए, एजिटेशन हो इससे हमारा इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्योंकि सरकार तरफ से प्रयास हो रहे हैं, उनके मैक्सिमम बातों को मान लिया गया जो सर के कैपेसिटी में, जिन बातों में जुडिशरी इन्वॉल्व है वहाँ पर हमें हमने उन तथ्यों को भी छात्रों के सामने बहुत साफ रखा है। मैं फिर से अभी आप लोगों के माध्यम से छात्रों से यही कहना चाहती हूँ कि एजिटेशन मोड में ही रहने से बेहतर है कि आप जो बातें हैं उनको समझें और संवाद के माध्यम से समाधान पाएं।
2: चिंतित नहीं है, कल घेराव की बात कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स।
6: इसको देखिए, ये तो लोकतंत्र में चलता है, धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, वो इशू नहीं है। लेकिन आंदोलन हो, एजिटेशन हो, तब जब सरकार आपकी बात ना सुन रही हो, चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो, आपके समाधान के प्रयास ना कर रहे हो, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इसके पीछे बड़ी
2: ये कम्प्लीटली डेडलॉक सिचुएशन है।
6: नहीं, अब वहाँ से बच्चे यही बोल करके गए हैं कि वो अपने साथ के जो छात्र साथी हैं उनसे बात करके फिर सरकार से बात करेंगे, और हम लोग भी उनको इनवाइट कर रहे हैं।
0: My colleague Padmaja Joshi has been tracking all the finer developments for us on Ground Zero. She joins us live this morning with the clarity we need. Padmaja, students continue to assert that the CBI probe has become the non-negotiable issue. Tell us, what is the government's argument against a CBI investigation currently?
7: Actually, there is none. What they are saying is that we already have a CID investigation which is underway, and if anything untoward is found in that, we are willing to have the financial transactions being probed by the ED. But something very nice here, very different what's happening, Parmeshwar, I want to point out, there are locals who come here. Now, this is the month of Savan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha Gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
8: Mera naam Suman Kumari hai, aur main Ranchi se hoon, aur aaj Sombar ka din hai, maine Saban pe fasting rakha hai. Aaj hamare liye, in JPSC ke bachcho ke liye, bahut bada din hai. Aaj main subah uthte saath Bhole Baba ke paas puja karte hi, apne bhaiyon ko, apne behno ko, के तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
7: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
8: भाई लोग जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना जरूरी था।
7: लगाइए, आप बताइए, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं, क्या आज के दिन का महत्व है? यहाँ पर लोकल्स आकर के इस तरीके से तिलक लगा रहे हैं, क्या आज के दिन का?
9: हिंदी और इंग्लिश?
7: हिंदी में ही बोलिए।
9: नहीं, बिल्कुल, जो है देखिए, यहाँ के जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। और आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल, हमने किसी को बुलाया नहीं, खुद आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई साहब, हमारे भाई जो आज आंदोलन के लिए, एक लड़ाई के लिए जा रहे हैं, एक तरह का ये लड़ाई है, तो एक तरह का तिलक लगा कर वो आगे आह्वान कर रहे हैं कि चलिए आप जाइए और सरकार को उस झुकाइए और अपना हक और अधिकार है उसको आप प्राप्त कीजिए। जो इसके लिए जो है ये अपना,
7: मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपने यहाँ पे अब कुछ वॉलंटियर्स को अपना टी शर्ट भी दे रखा है, क्या कोशिश क्या है? क्योंकि आज मार्च को लेकर के काफ़ी लोगों को ये भी एक आशंका है कि कहीं कुछ वहाँ पर अनटूवर्ड ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए।
9: एक्चुअली हम लोग के पास इनपुट है कि कुछ लोग या कुछ पार्टी के लोग जो कि सरकार समर्थित लोग हैं, उस भीड़ में उपद्रव कर सकते हैं, तो उस भीड़ में घुसने के बाद वो दिक्कत ना करें, इसके लिए वॉलेंटियर्स का हमने 500 वॉलेंटियर्स को खड़ा किया है, और उस 500 वॉलेंटियर्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने सबका डिटेल लेके रखा है।
7: अच्छा, जो तो वहाँ पे आप बारकोड स्कैन करा के उनको वॉलेंटियर?
9: बिल्कुल, अगर कोई ऐसे भी कोई वॉलेंटियर का टी शर्ट पहन के और उपद्रव करेगा तो वो आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि हमारा वॉलेंटियर, ऑथेंटिक वॉलेंटियर कौन है, और इस वजह से तरह से हम लोग अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक बिना उपद्रव के करने की तैयारी कर रहे
7: हैं। लुक एट दिस, हियर्स दिस यंग मैन, ही इज गॉट दिस वॉलेंटियर वाली इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। सो a few, about 500 of these t-shirts, it's quite, you know, and it's a very small scale. So what you had seen in other parts of the country, literally these men are going there in these autos and tempos, they are getting into these autos and they are going towards the Vidhan Sabha, hoping that they are finally going to get the government to agree to all of their demands. Aap jaldi se apna naam bataiye.
10: Mera naam Jitendra Kumar hai aur main Kodarma district se hoon.
7: क्यों आए हैं जितेंद्र?
10: देखिए, हम सभी छात्राओं की जो मांग है, अभी तक झारखंड बने हुए 26 साल हो गए और हम सभी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसी को देखते हुए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन का 17वां दिन है और आज हम लोग का विधानसभा घेराव है। और
7: अगर सीबीआई की मांग नहीं मानी सरकार ने, फिर क्या करोगे?
10: देखिए, सीबीआई अभी तो 50% बात को माना गया है और गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि हमारी जो आधी अधूरी मांग है उसको भी माना जाएगा,
11: क्योंकि हमको देश में जो लोग देख रहे हैं बाकी हिस्सों में क्या बोलेंगे?
10: देखिए, देश में सभी लोग जो छात्र छात्राएं देख रहे हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हम सभी छात्र अपने हक के लिए कभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए पीछे ना रहें। हम अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानते हैं और हम इस छात्र

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाह मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा, सबका
5: राजा आतुर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: big Tamil Pride push in Tamil Nadu as Chief Minister Vijay moved special assembly resolution mandating that the state song must be sung first at all public events, universities and government offices across the state. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar holds a 1.5 hour long meeting with AICC President Mallikarjun Kharge, discusses ministerial aspirants and growing disgruntled.
1: वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
2: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूं तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद

0: हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
1: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे।
0: पक्का?
2: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया।
0: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
0: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
4: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
0: यानी मान के चलते हैं।
4: हाँ सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
5: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं?
5: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे, और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
0: अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबिन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
6: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उसी दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है, तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
0: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना, कि मैं कारगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
7: वो पाकिस्तान की बात चल रही है, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे, और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था, तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट।

0: वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
2: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
1: आप चिंता मत कीजिए।
2: पर
1: आप जाए तो आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
2: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
3: कॉमन गेम्स में मेडल सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुशी जी मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
1: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
4: जी सर। बहुत
1: कैसा बना स्टेडियम?
4: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
1: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी
4: जी सर 2008।
1: उज्जैन जाते थे कि नहीं?
4: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
1: अच्छा महाकाल के बाद भी गई?
4: जी सर।
1: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार?
4: जी सर।
1: महीना तो अभी है,
4: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
1: ठीक है।
4: साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी 2018 में, जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
6: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला था, बर्थडे था तो आज सर की
5: बहुत बधाई। वाह।
6: एक ही
5: मेरे सर।

0: Prabhakar, if you can hear me, what is the situation right now?
1: Is not being made by the Raj. See, this is the Ranchi police vehicle, and interestingly, the announcement being made here is not by the Ranchi police, but by the students. They are using the police megaphone to make some announcement.
2: तरीके से करते आए हुए अशांति वो तरीके से ही करेंगे तो आपसे निवेदन है आपसे निवेदन है कि इतना घबराना नहीं है
3: चल जाओ ऊपर
2: हेलो देखिए आप सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं कि अभी हमारे कोर कमेटी के मेंबर बहुत से लोग नहीं आए हैं तो किसपा आप लोग साथ में प्रोटेस्ट में चलेंगे तो कृपया उन्हें आने का वेट करें उसके बाद साथ में इस प्रोटेस्ट में शामिल हो ठीक है और शांतिपूर्ण तरीके से ये हुड़दंग करने से कोई फायदा नहीं है सर ठीक है हम लोग शांति प्रे ही करते हैं हमें
1: So this is very, very well organized, and this guy actually, what he's talking is very sensible. He's

0: ministers are marching towards the new Vidhan Sabha. And remember, this is one of the group. There are several other groups who are trying to march in from various other directions. So these students, this is one group, which happens to be the main group where the students have gathered outside the old Vidhan Sabha, and now they are gathering here, waiting for their colleagues to join them, and then they will be marching ahead, Padmaja, towards the new Vidhan Sabha.
1: In fact, look at the symbolism. One protester has a rose in his hand. Other protesters, in fact, most of them would have the tricolor. Even on the stage, you will always see the tricolor. No party insignia, no party symbolism, no political parties are allowed to share this particular stage. And which is why, remember, even at the spot where the students sat on Dharna over the last 1 month, there have been several camps now. When there were some political parties like ISA, like the left, who tried to muscle in, they were told this is not the stage for your political sloganeering. There is no political communal color that we want to this agitation, because it's the easiest way to discredit us. We've got rightful demands, we have got legitimate concerns, and the easiest way is to discredit us, to paint us as political opportunists, and that is something that these students have studiously avoided, which is why now you have multiple tents, multiple little camps. The CJP will sit somewhere else, the ISA has set up another tent, you've got Devendranath Mehto sitting elsewhere. In fact, that is what Mawa Manji of the JMM is alleging now afresh, saying that this is only a BJP front. Listen in.
2: मैं नहीं कर रहे हैं वो कल जब छात्रों के साथ प्रतिनिधिगण का की बातचीत हुई वार्ता हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस समय छात्र भी खड़े थे और माननीय मंत्रीगण भी खड़े थे मंत्री जी ने खुद कहा कि 98% मांगे मान ली गई है छात्रों ने भी बताया कि क्या क्या मांगे मान ली गई है और उसके बाद अभी छात्र जो कह रहे हैं कि नहीं 2% मांगे अभी तक नहीं मानी गई उसके बारे में मैं बता दूं कि 2% मांग इस बात की है कि एक CGPL या कुछ ऐसा एग्ज़ाम है जो कि रद्द करने की मांग कर रहे हैं मैं आपको बताऊं कि वो एग्ज़ाम उसका रिजल्ट आउट हुआ था माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर और उसमें उसके बाद बहुत सारे युवा अभी नौकरी पे सालों से नौकरी पे हैं उनके घर में परिवार है बच्चे हैं वो बच्चों का स्कूल का फीस भरना है बुजुर्गों का ट्रीटमेंट करना है अगर सरकार अपनी तरफ से एक तो उनके हाथ में है ही नहीं उसको रद्द करने
3: का छात्र जो विधानसभा का
2: और अगर फिर वो भी उनके साथ भी अन्याय होगा और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो छात्रों को पीछे से धकेल
3: रही हैं लेकिन छात्र विधानसभा का मार्च करने को उतारे वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो लोग
2: सीबीआई जांच देखिए भाजपा के कार्यकाल में फर्स्ट एंड सेकेंड जेपीएससी के समय बड़ी मात्रा में छात्रों के साथ धांधली हुई थी जेपीएससी का घेरा हुआ था बहुत सारे ऐसे भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के परिवार के लोग नौकरी में लगे हुए थे जो अभी तक नौकरी कर रहे हैं सीबीआई जांच भी हुई लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ छात्रों के साथ लेकिन अभी जो सीआईडी जांच हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप रिटायर्ड जस्टिस को बैठा
3: दीजिए छात्रों का जो मार्च हो रहा है उसमें बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है
2: बिल्कुल बीजेपी और कई पार्टियां जो है ना वो छात्रों को ये उनका विरोध प्रदर्शन को रोकने ही नहीं दे रही है नहीं तो छात्रों का मांगे तो लगभग पूरी हो चुकी है जो भी मांगे उन्होंने रखी थी लगभग पूरी हो चुकी है भाजपा या दूसरी पार्टी के लोग उनको पीछे से धकेल रहे हैं कि नहीं इसको कंटिन्यू करो मुझे ऐसा लगता है लेकिन मैं छात्रों से यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग भरोसा रखें माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं भविष्य में कभी आपके साथ अन्याय तो होगा ही नहीं बल्कि आपके सुनहरे भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कल के कार्यक्रम में उन्होंने लगातार छात्रों के हित में ही भाषण दिया था धन्यवाद
4: लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रही है हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे अचानक नियुक्ति का हो एक्साइज विभाग में सिपाही का नियुक्ति हो यूजीसी के फ्यूचर की नियुक्ति हो चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए
1: There's news just coming in. The ED has registered an ECIR, which is basically the ED's version of an FIR, a first information report. So you've got an economic offences initial report, which has been registered by the ED in the alleged JPSC examination irregularities case. This case relates to suspected irregularities in the JPSC examination process, and further investigation by the Enforcement Directorate is underway. So the ED has also now entered the scene. Remember, a central investigation by the CBI was what was being demanded all of this while. But before we take a break, very quick 10 seconds, I want to tell you just how bad things are. Imagine, here is somebody who was sitting on dharna against JPSC irregularities 10 years ago. Even today, he's carrying around a poster saying that when he sat on dharna, Hemant Soren, who was the chief minister 10 years ago, had broken his fast. This gentleman's fast. Kya naam hai aap?
5: Safi Imam. लेकिन मेरा नाम इमाम सफी है, मीडिया हमें सफी इमाम नाम दिया क्योंकि मैंने
1: तो शफी जी ये बताइए कि 10 साल पहले भी आप धरना कर रहे थे इसी चीज के लिए, 10 साल बाद भी अभी है।
5: आज हमारे बहन लोग भाई लोग यहाँ पर अनशन में हैं और वहाँ भी अनशन है, मेरा ही स्टूडेंट हैं सारे, और जो विधायक जी या तमाम लोग जो यहाँ झारखंड में यदि अनशन के परिपाटी को शुरू करने में भी मैंने प्रयास किया था क्योंकि आज से 15 साल।
1: The chief minister came, told Imam Shafi 10 years ago that we will listen to your demands, you call off your fast. And 10 years later, his sisters have to sit on dharna with the same demand because all of those promises were simply broken. Now think about why these people would have any trust in the government. I'll leave you with that. Quick break, more on the other side.

0: इधर से उधर लोगों को टहला रही। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे अचानक नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही का नियुक्ति हो, यूडीसी के फ्यूचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।
1: हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री और झारखंड से बीजेपी के सांसद है संजय सिंह। कैसे देख रहे हैं सर, छात्रों का प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है, सरकार कह रही कि उसके 98% मांग मान ली गई है, लेकिन बीजेपी हवा दे रही है।
2: अरे सरकार तो क्या झूठ बोलने वाली मशीन है। अब देखो बैठक का दौर, जो छात्र संगठन धरने पर भी नहीं थे, कोई डिमांड भी नहीं थी, उनको बुला के वार्ता कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप भी अंग्रेजों का फार्मूला अपना लियो, डिवाइड एंड रूल चलने वाला नहीं है। इसीलिए लाखों छात्र आज रांची में विधानसभा घेरने के लिए कुछ कर चुके हैं।
3: Quick update from Ranchi, where the students have reached the third barricade. They are saying keep it peaceful, but the government must listen today. We'll continue to be live from Ranchi, getting you the very latest. A quick break, back in a minute.

0: celebrities and guaranteed eyeballs.
1: Where's the hook?
0: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
1: Bro, where's the hook?
0: Cross-platform, digital first, virality.
1: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
0: That's it. That's what we're looking for.
1: The best campaigns.
0: The hottest trends.
1: The smartest brand moves on our new show.
0: But wait, what do we call it?
1: The Hook.
2: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
3: Now watching NDTV 24/7.
4: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
2: When stories have impact.
5: Padmasad Joshi, managing editor and prime-time anchor.
2: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
4: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding, and I'm pretty certain.
6: Breaking updates, NCP, SP, MPs have started their meeting with Prime Minister Modi in the national capital. This is a meeting that has been led by MP Supriya Sule. She's reached to meet Prime Minister Modi along with a set of her MPs, meeting at Prime Minister's office in Parliament House. Several issues are being discussed as we speak. Let's get in some reactions.
7: आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या फिर कई सारी ऐसी जो पार्टीज हैं वो ये कहना चाह रहे हैं इस मुलाकात का कुछ और मतलब भी निकाला जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप और उन लोगों की जो स्टेटमेंट है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
8: इन्हों भी समझना चाहिए कि हम उसके अंदर ही पूरा हंगामा मचाते हैं, जो भी अपोजिशन के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, तो अपोजिशन वाले को भी समझना चाहिए कि ऐसा एलिगेशन करना, अगर ये प्राइम मिनिस्टर है, हम यहाँ लोग हैं, हमारा पार्टी का ताकत यहाँ है, तो हम मिलना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा ऐसा है। अभी कोई इनका भी जो भी अपोजिशन वाले हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूट में मराठवाड़ा के अंदर उनका भी आता है, तो इनको ज़रूरत नहीं, क्या पानी नहीं है हमारे इधर, पानी नहीं है तो पानी के लिए अगर कुछ अलग सा निधि हमें यहाँ से मिल सकता है तो कोशिश करना चाहिए, और ऐसा फॉर्मली भेंट है, ऐसा कुछ दूसरा रीजन नहीं है और पॉलिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है।
9: मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर मोदी जी को शरद पवार जी के पार्टी के सांसद मिल रहे हैं तो मुझे लगता है उनको लगता है कि और प्रगति हमारे महाराष्ट्र की होनी चाहिए, तो उसके लिए मिलना कोई बुरी बात तो नहीं है। कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है अभी, और मुझे लगता है हर कयास अच्छा ही होगा महाराष्ट्र के लिए। अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर जाकर मोदी जी को मिलते हैं, विनंती करते हैं, और जो आप लोग सोच रहे हैं अगर वो हो जाता है तो महाराष्ट्र की और उनके क्षेत्र की नसीब होगी।
6: तेजश्री ऑन दिस, तेजश्री, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग बिटवीन एनसीपी एसपी लीडर्स लेड बाय सुप्रिया सुले एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। सेवरल इश्यूज वी बिलीव विल बी डिस्कस्ड एंड महाराष्ट्र इश्यूज कुड टेक डोमिनेंस इन दिस मीटिंग। टेक अस थ्रू द डिटेल्स।
7: Well, yes, absolutely. 8 NCP, SP, MPs, the delegation being led by Supriya Sule, they are going to meet Prime Minister Narendra Modi today. However, all MPs have been, you know, reiterating the same stance, so as to this meeting is nothing political and the meeting is all about the crisis that Maharashtra is facing as of now as far as the drought situation in several areas of Maharashtra is concerned. They also want to discuss the issues regarding farmers' suicide. They also, in fact, will be discussing the issues about urbanization in several areas of the Maharashtra and also on the funds that are being allocated to the states of Maharashtra. These are all the discussions according to the MPs we spoke to. They will be discussing all these issues. However, there have been a lot of speculations in the political corridors as far as this meeting is concerned, because remember that we also saw pictures coming in earlier about Sharad Pawar meeting Prime Minister Narendra Modi as well, and now Supriya Sule meeting Prime Minister Narendra Modi. However, there are many MPs actually have also been stating that there are statements coming in from the opposition MPs as well as far as the meeting is concerned.

0: You're just coming in after meeting with the Prime Minister Narendra Modi. NCP, SP faction MPs have sought a Bharat Ratna for Maharashtra icons. MPs of the Sharad Pawar-led NCP faction met with the Prime Minister Modi in Parliament as part of a delegation that had sought an appointment to raise issues concerning Maharashtra. After the meeting, the party's MPs demanded that the Bharat Ratna be conferred on four eminent personalities from Maharashtra. The leaders propose India's highest civilian honour for four of them, including Jyotirao Phule, Savitribai Phule, as well as Annabhau Sathe and Tukadoji Maharaj.
1: आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं या फिर कई सारी ऐसी जो पार्टीज़ हैं वो ये कहना चाह रहे हैं इस मुलाकात का कुछ और मतलब भी निकाला जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप और उन लोगों की जो स्टेटमेंट है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
2: इन्हों भी समझना चाहिए कि हम उसके अंदर ही पूरा हंगामा मचाते हैं, जो भी अपोजिशन के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, तो अपोजिशन वाले को भी समझना चाहिए कि ऐसा एलिगेशन करना, अगर ये प्राइम मिनिस्टर है, हम यहाँ लोग हैं, हमारा पार्टी का ताकत यहाँ है, तो हम मिलना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसा ऐसा है। अभी कोई इनका भी जो भी अपोजिशन वाले हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूट में मराठवाड़ा के अंदर उनका भी आता है, तो इनको ज़रूरत नहीं, क्या पानी नहीं है हमारे इधर, पानी नहीं है तो पानी के लिए अगर कुछ अलग सा निधि हमें यहाँ से मिल सकता है तो कोशिश करना चाहिए, और ऐसा फॉर्मली भेंट है, ऐसा कुछ दूसरा रीजन नहीं है और पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं है।
3: लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर मोदी जी को शरद पवार जी के पार्टी के सांसद मिल रहे हैं तो मुझे लगता है उनको लगता है कि और प्रगति हमारे महाराष्ट्र की होनी चाहिए, तो उसके लिए मिलना कोई बुरी बात तो नहीं है। कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है अभी, और मुझे लगता है हर कयास अच्छा ही होगा महाराष्ट्र के लिए। अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती है।

0: moment from now, we will cut across to Ranchi and bring you a live report from the ground there while the protesters also make their way to the State Assembly. You see Mahatta there, who's been on a hunger strike. He has joined the protesters, the students on the spot there. He's also been on a fast for a while now. Remember, thousands of job aspirants are protesting alleged irregularities in various recruitment examinations in Jharkhand, and they began their march to the State Assembly this morning. You have Devendra Nath Mahato, the GLKM leader, who has been on a fast for 9 days over the issue. He joined the march in an ambulance despite losing more than 10 kgs. He was seen carrying a portrait of the former Chief Minister Shibu Sorin while he was in the car. He's moved out of that car now and he's joined his people on the ground. You also have strict and massive security around the area. Protesters have broken two barricades, is what we were told. And the situation remains tense, but what our reporters on the ground have also said that this has been, at least so far, a peaceful march by the students. You also had student representatives on the ground taking to loudspeakers and appealing to the protesters on the ground to keep this as a peaceful march. The march, which coincided with the 51st birthday of the Chief Minister Hemant Soren, began from outside the old assembly complex in Dhurwa, and the demonstrators aimed to reach the new Vidhan Sabha building. Besides imposing prohibitory orders, heavy security has been deployed on the entire stretch, around 4 kilometers long, with senior officers keeping a close watch. Like I said, you have Mahato, who's been on a fast for 9 days now. He was taken in an ambulance to join that march despite losing the weight, despite being feeble at this point physically. He's there with his people taking the march forward. Padmaja Joshi will be joining us in a moment from now, but those are the visuals we're getting you from the ground. The students continue to march to the assembly, and you have BJP leaders who have been detained as well. Why have they been detained? Because they had surrounded the Chief Minister's residence. They were protesting against the Chief Minister, and after which they were detained. Padmaja Joshi now joining me live. Padmaja, just take us through what's happening around you. We believe that some of the barricades were broken and the protesters had gone through them, but this march has been peaceful as of now, is what we're being told. You have student representatives also.
1: और मैं सब नहीं चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई मसीहा हूँ, मैं एक साधारण लड़का हूँ, मांड भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ, और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया, ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है, सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है, सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है, यह सबसे जरूरी बात है। मैं सभी छात्र को धन्यवाद देता हूं, चाहे झारखंड से हो या देश भर के हो। तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूं, जो पीड़ित छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उसके आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन संयम बना के रखे, अनुशासन बना के रखे, सब कोई धैर्यता के साथ बना के रखे। ये मेरा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग का ये मांग पूरी नहीं हो जाती है। आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा गिफ्ट छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिसे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश हो, यह शांति है तो इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा लग रहा है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे तानाशाही, निरंकुश, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। नहीं नहीं, अनशन नहीं तोड़ेंगे। आज देखिए, मैं अपना जान को जोखिम में डाल के आया हूँ, क्योंकि ये धूप है, चक्कर आ सकता है, भीड़ है, भगदड़ हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकती है, कभी भी छात्र हमको अपना पैर तले दबा सकते हैं। उसके बावजूद मैं इस सबको स्वीकार करते हुए आया हूँ। जब तक ये हेमंत सोरेन की निरंकुश सरकार नहीं सुनती है।

0: at a protest venue. What is your response to that?
1: Defense nahi hai, nothing. Purely the youth agitation, student agitation, aur tabhi hazaron chhatra pure Jharkhand se aaj yahan Ranchi mein hai, jabki pure Ranchi ko katile taron se bandha gaya hai, lekin youth pure pahunch chuke hain aur march कर रहे हैं विधानसभा की ओर. एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, ईडी जांच, सरकार को तुरंत ही स्टेप लेके सीबीआई इंक्वायरी के लिए करना चाहिए.
0: They're speaking to us. Thank you so much for joining me on the phone line here on Breaking Ground. I'm now going to get you some voices from the ground. Our reporter Prabhakar was speaking to students while that march continues. Listen into what they had to say.
2: As far as security for today's protest is concerned, but all those arrangements, all those deployments are holding no good, and they are, the students are able to breach the barricades. The good thing is that so far it has been very peaceful. It has been very peaceful, no scuffle between the cops and the students. So even the cops, even the administration is showing restraint. The students, we are seeing, they're making announcement, urging their co-protesters to ensure that no violence should happen. They should not indulge in any kind of violent activity, and it should be a completely 100% peaceful protest. And even the cops are letting them breach the barricades, but they're not using force on them. We don't know what happens ahead when they reach the third and fourth embankment. There are total six barricades which have been erected in between the old Vidhan Sabha and the new Vidhan Sabha. We are marching along with the students, giving you live visuals from Ranchi. And this, see, the numbers would have been many, much, much more, but we saw yesterday when the students from various other districts, they were trying to come to Ranchi to be part of this protest. They were stopped midway by the administration, be it from Hazaribagh or Ramgarh. We saw the buses being stopped, the trains being searched, the auto rickshaws being searched, and they were all stopped midway. So that's the reason why you are not seeing the requisite number. The numbers could have been much, much higher. ये क्या लेके जा रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर.
3: बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बस रोक दिए गए हैं.
2: एग्जैक्टली वही हम बता रहे हैं कि ये नंबर और बहुत ज़्यादा होता अगर बसों को नहीं रोका गया होता या ट्रेन को.
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: आशीष.
4: यस सर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टूडेंट आ रहे थे तो सारे के बस रोक दिए गए. बसेस को रोके गए और उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा. लोग पैदल आने को मजबूर हो रहे हैं. जो
5: बसों को रोक के इंक्वायरी की जा रही है, स्टूडेंटों से रोक दिया जा रहा है. इससे आम जन भी परेशान है स्टूडेंट्स के साथ साथ. नहीं तो ये जो जन सैलाब देख रहे हैं ये और भी बड़ा होता.
2: सो एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल दैट द स्टूडेंट्स दे हैड मार्च्ड टुवर्ड्स रांची. दे वर ऑन बोर्ड द बसेस ट्रेन्स बट सिंस यस्टरडे दे हैव ऑल बीन स्टॉप्ड. The buses are being searched, the trains are being searched, and they are actually stopped midway. Now, the third barricade is where these protesters have reached now.
0: We also have Mr. Arjun Munda joining me live on the phone line, former Jharkhand Chief Minister. Mr. Munda, I want to understand from you, what are your party's demands when it comes to the protests that we're seeing on our screens? हमें ये भी पता है कि छात्रों ने कहा है हमें कोई political interference नहीं चाहिए इस protest में.
1: देखिए ये विशुद्ध रूप से छात्रों और छात्रों के भविष्य का सवाल है और छात्रों के भविष्य पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए. और इसलिए हम उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के वहाँ फोटोग्राफी करें, बल्कि हम मॉरल सपोर्ट के साथ ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और जो गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब यह साबित हो चुका है कि एक ऑर्गेनाइज गैंग होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम राज्य के युवा स्टूडेंट्स के साथ रहा था, खिलाड़ी सभी मेधावी छात्रों के साथ हो रहा था, तो इस पर

0: निष्पक्ष जांच कराते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ न हो, उसके भविष्य के साथ अनदेखी नहीं हो, खिलवाड़ नहीं हो और इस तरह का गेंद फिर ना उभर सके। तो इससे राज्य सरकार को इस मामले में छात्रों की बात माननी चाहिए और छात्र जो मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जांच के राज्य सरकार को रिकमेंड कर देना चाहिए।
1: आपके लिए जब आप चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, उस टाइम पे भी तो ये लीक्स होते थे, एग्जाम लीक्स, तो क्या कारण है कि कोई भी गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है?
0: कभी सूचना नहीं हुई, लेकिन कुछ गड़बड़ी की बात जरूर आती थी और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती थी और आज जिस तरीके से तो एक गेंद बन गया है जो आप एग्जाम में कुछ भी लिखे इसके बावजूद भी आपको नंबर मिलेगा। आपको ये तो पूरा सुनियोजित है, किसी को आप ज्यादा कम दे रहे हैं ये तो अलग बात है कि ठीक है एक मामला पैसा भी हुआ है होता है या ऐसे मामले के बारे में लोगों के पास में बहुत सारी जानकारियां रही है, लेकिन अभी जो बात यहाँ पर सतह पर दिख रही है कि एक गेंद चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और वो नीलाम हो रहे पदों की, तो ये जो ऑक्शन सिस्टम था ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति झारखंड के लिए, झारखंड के मेधा छात्रों के लिए, और इस तरह की घटनाओं को रोकने का एकमात्र उपाय है कि इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को दंड मिले।
1: Alright.
0: और जब दंड मिलेगा तो इस तरह की घटनाएं रुकेगी।
1: Alright, that's Arjun Munda, former Chief Minister of Jharkhand. Remember, viewers, this is not an issue that only has come out in the open or has been exposed during the regime, the current regime. This is an issue, pan India, pan states, that is now being exposed yet again by students, this time in the students of Jharkhand. I have Padmaja Joshi live with me from the ground. Padmaja, just take us through what's happening around you. We believe you're at the protest site. Barricades have been broken. There have been appeals by student representatives to ensure that this march remains peaceful. Over to you.
2: Yeah, so, you know, additional barricades have now been put up over here. So several of the approach roads, you've got forces of the reserve forces. So what I want to quickly explain to our viewers that you've got the Jharkhand Jaguars here, you've got the police here, you've got the reserve forces which have been brought in. And there were a number of people, you know, you heard the protesters there saying that those who are trying to come to the protest site are being stopped on the way. Aap kidhar jane ki, aap wahan pe Vidhan Sabha jane ki koshish kar rahe the?
3: Mera shop hai, shop pe jane.
2: Yahan pe rok kyun rahi hai?
3: पता नहीं, आगे में बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हीं को लेकर के इधर पे को
2: व्हाट इज बीइंग डन ओवर हियर इज दैट यू ऑलरेडी सी देयर इज अ वाटर कैनन दैट हैज बीन पुट ओवर हियर, ऑल द रोड्स नाउ सिस्टमैटिकली बीइंग बैरिकेडेड एनी काइंड ऑफ मूवमेंट बिकॉज नाउ एज द नंबर ऑफ पीपल ग्रोइंग, आई जस्ट वांट टू शो यू दिस साइड एज वेल, एज द नंबर ऑफ पीपल इज ग्रोइंग एट द प्रोटेस्ट साइड वेदिका, यू ऑलरेडी हैड दीज कॉन्सर्टिना वायर्स, इवन इफ समबडी ट्राइज टू जंप अबव दीज बैरिकेड्स, you see that group of vehicles there, they were trying to proceed towards the protest site, and see additional barricades now there with the wires, the concertina wires, the barbed wires are being put up over here. You've got these jaguars which are basically the commandos, the Jharkhand Jaguars are the commandos here along with the police, along with the reserve forces, the IRB, and if anyone tries to even move in the direction, even if they try to jump over the barricade, it is not going to be possible because you've got one level of barricades, then you have got these wires, then you've got another level of barricades, and beyond that you have got these commandos who have been brought in of the Jharkhand Jaguars, and all the people, including some students here who were trying to get past. I see some women over there, they were trying to get past, all of them have been stopped and all of them are being forced to turn back. यहाँ पर ये barricading, ये लोगों को जाना allowed नहीं है यहाँ से, ये तो ring road है ना, यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? Excuse me, यहाँ से ये ring road से क्यों नहीं जाने दे रहे? ये तो सड़क खुली है ना, क्यों नहीं जाने दे रहे यहाँ से? पर यहाँ पे तो जो लोग protest site जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यहाँ पर prohibitory orders लगे हैं क्या? ये सारे रस्ते क्यों रोक दिए गए? Okay, so nobody is willing to speak, as you can see. But we've seen this on every road leading up to the Vidhan Sabha now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal and Sandy.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
8: रियली?
7: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
9: Launch control 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: और आज उस सड़क पर उतर गए। अगस्त ऐसे भी क्रांति का महीना है और आज विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे हैं, तो जिस तरह सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा होती है और विधानसभा में अपनी बात को जनप्रतिनिधि के माध्यम से रखने, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो किस तरह उनके कटीले तार दर के रोकने का काम कर रही है दमनकारी नीति का। और मुझे अभी जानकारी मिली कि एक दिल्ली के कोई टीवी पत्रकार को भी वो नाश्ता कर रहे थे, घर से उनको गिरफ्तारी कर ली गई। इस तरह दमनकारी नीति सरकार छोड़कर अविलंब झारखंड के छात्रों से वार्ता करे और उनके दो डिमांड के पूरे मामले को सीबीआई से जांच।
1: मिस्टर दास, आप बोल रहे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीआईडी की जांच में क्या प्रॉब्लम है आपके अनुसार, क्या समस्या है सीआईडी जांच में?
0: देखिए, सीआईडी की जांच में जो हमारे झारखंड के छात्र है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मामला एक मामला नहीं है, एक एग्जाम नहीं है, 10 एग्जाम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस परीक्षा जैसी सीडीएल को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी, उनके पदाधिकारी कर्मचारी पूरे परिवार नौकरी ले रहे हैं। तो मेरी मांग ये है कि अगर सरकार की सीबीआई को नहीं देने के पीछे कहीं ना कहीं झारखंड के छात्र को लगता है संदेह प्रकट होता है, अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है तो पूरे मामले को सीबीआई देने में क्या दिक्कत है?
1: आखिरी सवाल मिस्टर दास, ये जो छात्र हमसे संपर्क में है, हमने उनसे बात किया है, वो सब बोल रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं एग्जाम्स में वो आज की समस्या नहीं है, बहुत सालों से है, तो आप क्या कहेंगे? आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं झारखंड के, कि ये इशू कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है, इसका कोई समस्या का हल कोई क्यों नहीं निकाल पा रहा है अभी तक?
0: मैं आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ और राज्य की जनता को, राज्य की जनता जानती भी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2019 डबल इंजन की सरकार मेरी सरकार बनी, तो हमने पारदर्शी ढंग से निष्पक्ष
1: जी
0: एजेंसी अच्छी रखी और 1,37,000।
1: मिस्टर दास, आई एम सॉरी, आई विल हैव टू इंटरप्ट यू देयर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, बिकॉज वी जस्ट गॉट सम लाइव विजुअल्स कमिंग इन ऑफ अ लाठी चार्ज एट द साइट वेयर द प्रोटेस्टर्स आर एट। पद्मजा जॉइनिंग मी लाइव। पद्मजा, जस्ट टेक अस थ्रू व्हाट यू आर सीइंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट यू आर हियरिंग ऑन आवर स्क्रीन। वी कैन सी एंड वी जस्ट सॉ सम शॉट्स ऑफ प्रोटेस्टर्स बीइंग लाठी चार्ज, दिस इज परहैप्स एन अटेम्प्ट टू डिस्पर्स देम फ्रॉम द स्पॉट।
2: He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second.
3: भैया आपका नाम?
4: जी, मेरा नाम कुश महतो है और मैं आज मेरा छठा दिन है हंगर स्ट्राइक का और लगातार जो है कि छात्रों के साथ।
3: क्या है मांग बताओ अपनी, भैया मांग बताओ।
4: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे।
2: So you heard being led away in an ambulance there, Vedika, after the lathi charge and the water cannon that has happened. This young man is still saying, clutching a copy of the constitution, he says that we want these 6 different examinations to be cancelled. A lathi charge being conducted over there, the protesters being pushed back. There you see right over there, people, the students who were trying to come to the front now, and there again at the back. All right, so you've got the cops here conducting a lathi charge here, right here. One cop unfortunately has been injured. This is very, very, very disturbing turn of events, and it is really not something that this protest needed. One cop of the Jharkhand police, we're breaking right now on NDTV, has been injured, and I'll take you back to that site where this injury has taken place. A couple of barricades here, you see, have been overturned by a few people. Remember in the morning, when we'd spoken to the organizers, they had said that a few unruly elements may try and infiltrate this agitation. It's gone on for an hour and a half right now. And we've seen already, Vedika, 2 people being led away. One, a protester who's been taken away in an ambulance. He was on a drip, and he says while being led away that we want all of our demands to be met, for a CBI investigation to take place, and for the 6 exams that have been held by the TDPL over the last several years, their results to be cancelled, and a proper bahali, a proper appointment process being done, because they say that these jobs have been sold. This is really the point of the face-off. And I want to point out something very quickly over here. You've got 2 of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now, they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. So you see a lot of abandoned slippers which have been thrown at the cops over here. But after that, you see the organizers getting on top and asking people to settle down. Don't engage in violence. Don't engage with the police. Don't let things get out of hand. So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense and the barricades were being broken. But now, the organizers have come and tried to take control of what the situation is like over here. One policeman injured, which we can confirm to you, because he was led away right in front of us. But so far, no stone pelting that is being seen. Yes, there were people within this crowd which threw slippers in the direction of the police. And even now, you see a huge crowd. There you see people who have come from across Jharkhand. From across Jharkhand, people have come to support this protest. And now the police is warning everyone to step back and not to engage in violence, because this could just be that point where things go out of hand. Very quickly to point to this gentleman here. He's taken a loud hailer and he's telling everyone to settle down. Anyone who is engaging in violence should be identified, segregated, and acted against. So this one gentleman got on to the, we see at least one guy here arguing with the police. But he also is going to now be taken down by the protesting students there. Right, so this one person over here sitting on top of the barricade essentially is saying, Vedika, that I've been hit by a lathi thrice. What did we do to deserve this treatment? Why are we being treated like terrorists? Why is it that our access to the Vidhan Sabha is being halted in this fashion? So there you see one guy who's there engaging with the police, but largely everyone now being pushed back by the organizers and being told, do not engage in violence. One guy who's gotten on top of the barricades, but even then, right now, largely things remain quiet and remain in control. It's a huge number who have now turned up. And what is most important in this crowd is to ensure, because let's be very clear, we've covered multiple protests, whether it be at Jantar Mantar or at Ram Leela Maidan, or during the Nirbhaya protest, or during Baba Ramdev's time against black money. And when a mob acts up, or some people in a crowd act up, there is no controlling it. And which is the attempt right now? If you see the people who are standing on top of the barricades, they are saying, do not let things get out of hand. At this point, if you start pelting stones at the police, it's only going to go downhill from there. Look at all around us. Right from the barricades to the sides of the road, there are people everywhere right now. And these are local crowds, people who have marched so far from the old Vidhan Sabha building trying to get to the new Vidhan Sabha. They have been lathi charged, they have faced a water cannon, and right now they are standing behind this set of barricades, still holding up the JPSC poster and sloganeering. I want to quickly talk to this one gentleman here. भैया आपका नाम क्या?
5: मेरा नाम संजय महतो और हजारीबाग से आए हुए हैं, हम जेपीएससी के छात्र हैं।
2: आपको लाठी लगी?
5: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा तक इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है।
2: अरे आप कहाँ?
5: हम नहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए।
2: पर आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे।
5: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को, आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं या ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुंचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही सर माथा।
2: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
5: खून लगा हुआ देख लीजिए आप,
2: क्या आपके आपके ये? Alright, so he's showing, he's got a blood stained cap here.
5: पूरा पूरा देखिए, ये ब्लर देखिए, मेरा शर्ट देखिए, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे और इस तरह से अगर खनी छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हमें सोरे, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते, बताइए हम लोग क्या करें?
2: आपका नाम फिर से बताइए।
5: मेरा नाम संजय मातो, वो हम हजारीबाग से हैं।
2: आप खुद जो है एक आदिवासी समुदाय से?
5: नहीं नहीं, हम कुरु मातो समुदाय से हैं।
2: आप मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम सारी मांगे मान रहे हैं?
5: वो निरंकुश सरकार है, वो कहाँ बात मान रही है, हम लोग शांतिपूर्ण चार पांच बार हम लोग वो वार्ता किए लेकिन हम शहीद हो जाएंगे लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, अब रुकने वाले नहीं।
2: Alright, so you've got at least one person here who says that he has been lathi charged and he is bleeding. You saw his blood soaked cap over there. And again, it's two sides of the story. The students here again have taken up the tricolor in their hand and they are saying, Vedika, that we were advancing in a peaceful fashion and we were lathi charged at that point. This gentleman you just heard shows evidence of how he was lathi charged. You've seen one person being led away earlier in the ambulance when he was on drip, and he also says that the lathi charge started suddenly and he went completely breathless in the melee that followed. If I can just step up for a second and show you what's happening right now. Okay, so you've got one of the protesters who has taken up a loudhailer and he's telling everyone to step back. And the rest of the people who are over here, let me quickly try and speak. If you can still hear me, let me quickly try and speak to one of the young men over here. आपका नाम?
1: यस
6: चंडी तिवारी मैम, नाम है मेरा
2: चंडी। बताइए क्या हुआ?
6: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और सब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीत रहे बोले, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
7: हम लोग पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं,
6: हम लोग को लाठी चार्ज किया गया, यह सरकार को शर्म नहीं आ रहा
7: है?
6: जिस तरह से झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस द्वारा हमारे पे लाठियां चार्ज की गई, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? ऐसे तो आतंकवादी और देशद्रोहियों के साथ सरकार को बोलना चाहते हैं, वो कितना भी बल प्रयोग कर रहे हैं, हमारा आत्मविश्वास, हमारा धर्म सब प्रबल होगा और मजबूत होगा, आप लाठी चार्ज कीजिए।
2: पर आपने कहा था कि यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, ये क्यों?
6: हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पुलिस पर कोई पता है, हम लोग ना पुलिस को गाली दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, फिर भी ये पुलिस क्या काम कर रहा है ये सोचे अपने आप में। बहुत सर
2: मीडिया आप क्या कह रहे हैं, पुलिस को क्यों कह रहे हैं?
6: नहीं भाई, अगर आप पर लाठी चार्ज करेंगे क्या करेंगे?
8: एक लड़का
6: भी कुछ है, हम लोग को जो पीटा गया है आप देखें, पीसफुल है, पीसफुल है, पीसफुल हम
2: लोग। चंडी आप कह रहे हो कब शुरू, कब हुआ ये, आप पत्थर फेंक रहे हैं वहाँ से?
6: हम लोग शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे मैम, हम लोग ने कोई ऐसा चीज नहीं किया जिससे यह शांति भंग हो। पुलिस वाले ने पहले चार्ज किया और हम लोग को दबाव बनाया गया कि ये स्टूडेंट कुछ उद्धार करे, पुलिस का दोष है ये, पुलिस चाहता है कि हम लोग कुछ गलत करे लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे।
8: हम लोग का सिर्फ एक मांग था कि हम लोग विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च पहुंचने के बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल रही है।
2: आपको लाठी पड़ी
8: जी? को पड़ी
6: मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है, फेंसिंग क्यों लगाए? आप क्यों लगाए? वो बॉर्डर पे लगता है कि देश के अंदर लगता है? तीन लाठी हमको पड़ा है, यहाँ लगा हुआ है, अगर शर्ट खोलेंगे तो आपको दिखेगा। तीन लाठी मारा गया हमको।
8: हम लोग
2: एज वी स्पीक यू सी द पुलिस पुलिंग अवे द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द बैरिकेड्स। This is literally the last point before they can reach the Vidhan Sabha Vedika, and now they are pulled away from the barricades, from the back. If you can just focus over here, the cops there are pulling them away from the barricades, and the allegation is that the protest was marching on while they were progressing peacefully. Suddenly the lathi charge started from nowhere. That is what half a dozen people who are over here who have complained of being lathi charged. The water cannon was deployed before that. And now I just want to point to you again the tricolor that is back up and all the symbolism that we have seen, perhaps we did not see in Delhi, but you have Baba Saheb Ambedkar, you've got the tricolor, you've got Birsa Munda, you've even got Guruji Shibu Soren, who is being commemorated over here through his posters. And most of the people who are over here are saying, we are people of this land, we fought for Jal Jangal Zameen. When it came to statehood, we were here fighting, and now why are we being demonized as some kind of villains? So you can hear, I don't know if you can hear this, but there are
1: chants
2: of Bharat Mata Ki Jai again from the crowd. There are chants going up again, and the tricolor are up. I think what is being done right now, Vedika, is that this is an attempt to try and settle things down. I just would request Ashwini to focus on that. This one man there standing on somebody's shoulder with Bharat ka Samvidhan. He's holding up the Constitution of India and they're saying we are here for Bharat ka Samvidhan. So right from the tricolor to the Indian Constitution to a picture of Bhagat Singh, the message is very clear that they are here to ask for the rights and to allow the voice that has been suppressed for many, many decades. And like we've been saying, this is not about a symbolic or an ideological protest, Vedika. This is about fighting for your livelihood. The people that you will meet over here, some of them that we've been speaking to, they live in one room, five of them. For 10 years, they have lived in one room in Ranchi to prepare for their entrance examinations. They have, many of them, single parents. Most of them, they keep saying, hum kisan ke bachche hain, hum mazdoor ke bachche hain. They earn about 15 to 20,000 rupees per month. And from that, their parents send them 5,000 rupees. Many of them did not even say they are participating in an agitation because they came away in the hope that one day they would be able to lift their family out of poverty. They would be able to help their family do better and get a government job. That was their ticket to a better life. So if you have a young woman, she said, don't marry me off right now. I want to get a government job and I'll ensure my younger brothers and sisters also do better in life. And that is why when that is denied to them, this is what you see happening. Some young people here again have managed to cross over with the tricolor. Let's try and speak to them. Aap kidhar?
9: Hum Lalpur, Palamu.
2: Kyun aaye ho yahan?
9: Yahan pe JSSC CGL radd hona chahiye. Jharkhand mein aaj tak mein 25 saal ho gaya. झारखंड अलग राज्य बने हुए लेकिन आज तक कोई फेयर एग्जाम नहीं हुआ।
2: नाम क्या है?
9: मेरा नीरज कुमार।
2: नीरज
9: नीरज
2: नीरज नीरज क्यों जेएसएससी क्यों जरूरी है?
9: जेएसएससी में एडमिशन कि युवाओं को अगर कोई गरीब आदमी है, कोई मीडियम फैमिली है, नौकरी के अलावा हम लोग 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
3: आपने एग्जाम दिया है, आपने बारे में
9: जेएसएससी सीजिल दिए हैं, वो भी दिए हैं, जेपीएससी पीटी भी दिए, जेपीएससी बैकलॉग भी दिए हैं,
3: क्यों ये नौकरी आपके लिए क्यों जरूरी है?
9: हमारे घर के आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए, हमारे घर को आगे बढ़ाने के लिए एक नौकरी जरूरी है, हमारे अपने पैर पर खड़ा होना जरूरी है, जो कि अगर ऐसे धन नहीं होगा तो ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगा। झारखंड में आज तक मैम कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फेयर एग्जाम हुआ है, और झारखंड में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला जेएससी सीजीएल में हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला।
3: अगर नहीं कैंसिल हुआ तो क्या करो?
9: ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक कैंसिल नहीं होगा।
10: अगर नहीं कैंसिल हुआ, हम लोगों ने सेंटर में मैम जब नीट पेपर लीक हुआ तो हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, हमने सर मैम यहाँ पे हेमंत सोरेन से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस मांग पूरा कर दें, आपको इस्तीफा नहीं चाहिए। और ये मैम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी के सर फट रहे हैं मैम, किसी के पैर टूट रहे हैं मैम, ये बच्चे फिर इलाज कहाँ से कराएंगे? पढ़ने को पैसा नहीं है मैम, ये लोग इलाज कहाँ से कराएंगे? एक आप एग्जाम लेते हैं, उस पेपर लीक करवाते हैं, ऊपर से आपको सब पता है कि करवा कौन रहा है, उसके बावजूद भी मैम आप उसको सजा नहीं दिला रहे हैं। 14 दिन की कस्टडी में, 14 दिन की कस्टडी में,
11: हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, और अगर आज सुधार नहीं हुआ तो आने वाले विगत 10 वर्षों में झारखंड के महत्वपूर्ण पदों पे, बड़े बड़े अधिकारियों के पदों पे, बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ झारखंड के बाहरी लोग दिखेंगे या फिर सिर्फ पैसे वाले दिखेंगे।
3: क्या हुआ यहाँ पे? लाठी कैसे चली? लाठी कैसे?
9: लाठी मैम बच्चे लोग बैरिकेड से आगे बढ़े, पुलिस प्रशासन बेवजह बच्चों पे लाठी चार्ज किया है, बेवजह बच्चों के द्वारा कुछ नहीं किया है।
12: ऐसा बैरिकेडेड नहीं देखे मैम, ऐसा बैरिकेडेड हमेशा बॉर्डर में रहता है, यहाँ पे क्या हम लोग घुसपैठी है मैडम? इस तरह से बैरिकेडेड लगाया गया है स्टूडेंट के लिए?
3: आपको लगी क्या?
12: बहुत सारे छात्रों का हाथ कट गया है मैडम, इसका जिम्मेदार कौन है मैडम? ब्लड देखिए, ब्लड मेरे ब्लड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लड देखिए यहाँ पे लगा हुआ है मैडम, इसका कौन जिम्मेदार है मैडम? इस तरह से कौन
3: आपको कैसे चोट, कैसे खून?
12: बैरिकेडेड में धक्का दिया गया है, इस तरह से बैरिकेडेड कौन लगाता है मैम? यहाँ बॉर्डर है क्या? हम लोग चोर हैं, घुसपैठी हैं क्या मैडम?
10: राहुल गांधी बच्चों की बात करते हैं, उनकी यहाँ सरकार उनके साथ गठबंधन की है मैम, राहुल गांधी क्यों नहीं यहाँ के बारे में बोल रहे हैं मैम? झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? वो मुख्यमंत्री के घर के पास आके क्यों नहीं सब इस्तीफा मांग रहे हैं? जाकर के मोदी से इस्तीफा मांग रहे थे कि मोदी जी इस्तीफा दो, उनके घर पे गए, आज उनका यहाँ सरकार है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं?
11: इस तरह से
10: उनसे सवाल कीजिए,
11: जिस तरह से पूरा देश ने
10: इसलिए मीडिया में काम कर रहे हैं, सवाल कीजिए
13: एक आवाज आएगा कि यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो,
10: मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगने लगे तो हेमंत सरकार को इस्तीफा देना होगा, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं, इसको दिलवा कर रहे हैं, नौकरी आप बेचोगे। डिमांड हम लोग करते हैं कि सच्चाई बताओ, तुम बताते नहीं हो तो हम लोग मांग किससे करेंगे? हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतना कटीला तार लगाया गया जो कि मतलब चाकू से भी ज्यादा धारदार है, मतलब हम क्या देश टप रहे हैं कि हम एक उग्रवादी हैं, हम एक छात्र हैं और छात्रों से ऐसा बर्बरता नहीं करना चाहिए। माता फट गया, 3-3, 4-4 छात्रों का, एक एम्बुलेंस आया, एक एम्बुलेंस में 4 छात्र जा पाएगा? एक तो हम लोग वहां से पैदल लेके यहां तक आए हैं, एम्बुलेंस का फिर भी व्यवस्था नहीं हुआ, आप बताइए ऐसा प्रोटेस्ट मतलब ऐसा व्यवस्था किस काम का? सारा तो आप सीट बेच दे रहे हैं तो भी आप एम्बुलेंस।
2: ओके, सो यू गॉट सम ब्रेक थ्रू हैपनिंग ओवर हियर, एवरीवन हैज बीन टोल्ड टू काम डाउन आफ्टर टेकिंग क्वाइट a bit of time, Vedika, you finally have some semblance. Again, some people got onto the barricade and they have finally managed to convince everyone who was there close to the barricades, who was trying to push through. They have been convinced and you've got about 6 students who have gotten onto the barricades here and are telling everyone to settle down. There you see, the tricolor has gone up again, and after a few tense moments, the national anthem is being sung. Slogan earring. And in the middle of it all, now I want you to see what this crowd is. The tricolor has gone up. Impromptu, there was a singing of the national anthem and a man here.
5: मैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था मैम, मुझे आनंद सोरेन जी का जन्मदिन है, उसके बदले में हम लोग को मिठाई मिल रहा है मैम। हम लोग बोले थे हम लोग को समोसा दीजिए, बोल रहा नहीं तुम लोग का लाठी देंगे। हम लोग को जीने दीजिए, बोला नहीं मारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पे हम लोग को लाठी दिया गया मैम। मैं बरी विधान समाज से आया हूँ, मेरा नाम सरस रंजन है। समाज
2: नाम क्या है?
5: सरस रंजन।
2: बताइए आपके पूरी शर्ट क्या हुआ?
5: पूरा अंदर में पूरा मार के खून निकाल दिया मैम। देखिए हाथ, देखिए 10 लाठी मारा है।
2: 10 लाठी क्यों?
5: क्योंकि अपने मांग को हम लोग लखनऊ आए थे शांतिपूर्ण तरीके से।
2: घूम के दिखाइए कहाँ लाठी मारा है आपको। आपके हाथ पे लाठी पड़ी है। So this man claims that he was walking down the street, he was trying to march, been hit with 10 lathis and he is showing us wounds where he has bled out in his hands. There are blood stains on his shirt, you can see on his trouser where he has been hit by a lathi. Perhaps he has fallen also during the water cannoning. क्या करोगे अब इसके आगे?
5: हम लोग मैम नए शांति चाहते हैं और जितने भी जेपीएससी हुए मैम रद्द, हम लोग चाहते हैं रद्द, मतलब रद्द, तभी हम लोग यहाँ जाएंगे, अन्यथा हम लोग की जान चली जाएगी, तब पे भी नहीं छोड़ेंगे सरकार को हम लोग।
2: ये बताइए सरकार कह रही है आप सुझाव ईमेल पे
5: तो आप ईमेल जीमेल नहीं चलेगा, रद्द मतलब रद्द चलेगा। ईमेल से बहुत हो गया मैम, हम मेल तेल नहीं, अब सीधे अपने से हम लोग मेल ले लेंगे।
2: आंदोलन यहीं पे खत्म हो जाए,
5: अगर शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी एग्जाम हुई हैं और जितने भी एग्जाम जेपीएससी लिए है सब रद्द, मतलब हम लोग यहाँ स्वयं चले जाएंगे। ना मैं खराब आदमी, समाज के लिए ही मरूंगा हमेशा। मगर मैम रद्द मतलब रद्द, और माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं कहना चाहता हूँ और कल्पना मैम को जन्मदिन का, आप बच्चों लोग को अच्छी मिठाई दी है, इसके लिए थैंक यू सो मच।
2: घर पे लोग देखेंगे कहेंगे क्या कर रहे हो आप, कुछ और नौकरी धंधा ढूंढ लो।
5: बोलेंगे कि गए थे हेमंत सोरेन के जन्मदिन बुलाए थे खाना खिलाने घर पे, और लाइन के मारे दम तक मिठाई खिलाए हम लोग को।
2: हियरिंग ऑल ऑफ दीज वॉइसेज, देर इज हर्ट बट देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ एंगर। नाउ द क्रिटिकल थिंग फ्रॉम हियर विल बी व्हाट डू यू डू नेक्स्ट, वेयर डू दीज पीपल गो नेक्स्ट इफ दे आर गोइंग टू बी स्टॉप एट द बैरिकेड। Will they all go back or will they insist on moving forward? So far, they've been here at one spot for close to an hour. How long can this standoff continue? मैंने बात की हूँ मैंने। They have been held up, they've been pushed back at this spot. I don't know if you can see, but there is a bus which is now being a riot control. I think another water cannon is being brought out by the police. So another vehicle is now being rolled out by the cops over in an effort to try to move the crowd. Because remember, this is a road which is also very important. It is critical for the communication here. It leads right up to the Vidhan Sabha. But it's Vidhan Sabha alone. You also have the entire MLA's quarters, the MLA's residences, which are there. For all our viewers who are joining us right now, a quick reminder of what has happened so far. It is the one day where all the students decided to march towards the Vidhan Sabha. From the old Vidhan Sabha, where they gathered towards the new Vidhan Sabha, this was the route of the march, and this is what happened. They were stopped at that barricade where you see all the tricolors on the other side. And on this side, you've got the riot control police, you've got the Jharkhand Jaguar, you've got the reserve battalion of the police. And for a while, when this standoff took place, there were slippers which have been thrown from that side in the direction of the police. So you will see plenty of footwear strewn around here, which was thrown in the direction of the police. There were about half a dozen people here. who have said, the protesters who have been injured, they say that they were lathi charged, and a few of them that we spoke to earlier

0: Yeah, I think so. This is the last week of the monsoon session. In last 3 weeks, the entire monsoon session was washed out. Who is responsible? Who is accountable? You have been elected. You have been elected. You are fortunate, lucky. You only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर।
1: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन, I want to move that the bill this way to improve the efficiency,
0: मेरी रिक्वेस्ट है,
1: ensure independence,
0: नीचे करिए,
1: ट्रांसपेरेंसी,
0: ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे
1: सर,
0: बिल्कुल नहीं ठीक
1: सर।
0: माननीय मंत्री जी,
1: with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of the servings of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in the related enactment and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है। ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है और बाद में एक सोन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इससे देश आज़ादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नमेंट्स में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी की मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके, ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई, चुनौतियां। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 से ही ट्रिब्यूनल के नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फाइनेंस एक्ट 2017 द्वारा समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर कर उनकी संख्या 26 से घटाकर 19 की गई, 19। इसके उपरांत ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 एवं ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, किंतु इनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन एवं जुडिशियल इंडिपेंडेंट संबंधी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रोजर मैथ्यू 2019 तथा मद्रास बार एसोसिएशन 2020 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए एक स्वतंत्र नेशनल ट्रिब्यूनल

0: conducted, and they've also demanded strict action against those who are found guilty in exam irregularities. Already, the board has all resigned, and action has also been taken against the JPSC chairman, L. Kyangte. He has now been arrested. Let's just take a look at this earlier report sent to us by Padmaja from the ground there.
1: One cop, unfortunately, has been injured. This is very, very, very disturbing turn of events, and it is really not something that this protest needed. A couple of barricades here, you see, have been overturned by a few people. There was a lathi charge just a while ago, and one of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand.
2: मांग हम लोग का JPSC SSC में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे.
1: You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. आपको लाठी लगी?
3: लाठी पूरा पैर से माथा तक माथा तोड़ दिया बड़ा देखिए इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है. हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए. बताइए हमें सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते. बताइए हम लोग क्या करें?
4: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है. लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा. सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और सब ड्यूटी अपना निभाओ. हम लोग जीतने वाले हैं, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग.
5: ये मैम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी का सर फट रहा है मैम, किसी के पैर टूट रहे हैं मैम. ये बच्चे फिर इलाज कहाँ से कराएंगे? पढ़ने को पैसा नहीं है मैम, ये लोग इलाज कहाँ से कराएंगे? एक आप एग्जाम लेते हैं, उस पेपर लीक करवाते हैं, ऊपर से आपको सब पता है कि करवा कौन रहा है, उसके बावजूद भी मैम आप उसको सजा नहीं दिला रहे हैं.
6: एक आवाज आएगा कि यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो.
7: मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे तो हेमंत सरकार को इस्तीफा देना होगा. अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं, इसको दिलवा कर रहे हैं. नौकरी आप बेचोगे? डिमांड हम लोग करते हैं कि सच्चाई बताओ, तुम बताते नहीं हो तो हम लोग मांग किससे करेंगे?
1: लाठी चार्ज जस्ट अ वाइल अगो एंड वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स हु वाज सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक इज नाउ बीइंग टेकन अवे इन एन एम्बुलेंस. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second. भैया आपका नाम?
8: जी मेरा नाम कुश महतो है और मैं आज मेरा छठा दिन है हंगर स्ट्राइक का और लगातार जो है कि छात्रों के साथ.
1: मांग बताओ अपनी भैया, मांग बताओ.
2: मांग हम लोग का JPSC SSC में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा. जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे.
9: खाने का दर्द है, ना खाने का तकलीफ है, उससे बहुत बड़ा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है. यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है. जी बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल अनशन जारी रहेगा.
10: पूर्ण तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से उनका निदान करेंगे. जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, कंस्टिना वाइट से भी लगी हुई है और जहां तक है कि जहां एनॉयंस होगा उनको समझाया जाएगा. हम लोग भी पीसफुल उनका मूवमेंट को चाहते हैं कि ठीक है उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से रखें लेकिन पीसफुली तरीके से रखें ताकि कहीं से कोई अनॉयंस नहीं होगा ना हो और उनकी सुविधा के लिए या वो जो भी उनकी डिमांड है वो रखें अपने गवर्नमेंट का अपने पास लेकिन पीसफुल तरीके से करें और जहां अगर कुछ होगा तो फिर हम लोग उनको समझाएंगे.
11: आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी धरने की, कोई आवश्यकता नहीं थी प्रदर्शन की. आप तो पहले दिन अपने बच्चों को बुलाना चाहिए था, आपको खुद जाना चाहिए था. क्या 15 दिन बीत गए, 16 दिन हो गए, अब बैठक दौर, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, ये उलझाने का एक तरीका है। लेकिन छात्रों को सलूट करेंगे, उनकी डिमांड है सीबीआई जांच, ईडी से जांच, और जेएसएससी और जेपीएससी के जो परीक्षाएं हुई उनको रद्द करो।
12: देखिए पिछले 14-15 दिन से छात्र धरना पर भी यार भूख हड़ताल और सरकार वार्ता के नाम पर बच्चों को सिर्फ टहला रहे, तो हम सब लोगों ने तय किया कि भाई आज हम सब विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी कि हम सब लोग मुख्यमंत्री से जाकर के आवास में ही मिले और उनसे फिर हम सब लोग बात करें।
13: बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है, सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा, आंदोलन है आंदोलन है, उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर है वही जेएमएम के कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना, आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप।
0: All right, so you heard a series of comments on the agitation that's taking place for the moment. Things seem to have settled down. Let's listen into what Chief Minister Hemant Soren had said over the students' protest.
14: गोली बंदूक वाटर किरण का प्रयोग करती है, लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन
15: आगे देख के, आगे देख के, आगे
14: खबरदार भाई, कोई नहीं भागेगा, एक कदम नहीं भागेगा। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे।
16: सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा?
14: अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे।
16: 98% वो कह रहे हैं
14: सर, अगर अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन जन आंदोलन में बदल गया, कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता।
17: सर अगर नहीं जाने दिया तो क्या कीजिएगा सर, अगला कॉल क्या होगा?
18: तो तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और ये पत्थर ना फेंकें, पुलिस के ऊपर हमला ना करें, ये हमारी अभी भी आप लोगों से कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट है, आप लोगों के थ्री स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।
19: अभी तक दोनों राउंड की जो थोड़ा सा भी जो आप कह रहे हैं फोर्स यूज हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं?
18: उसमें पहले राउंड में हमारे 3 पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे, जो बैरियर जो तोड़ के जब भीड़ आगे बढ़ी और उसमें भीड़ पूरा एकदम लगभग 100-150 लोग जो है पूरा उनके ऊपर चढ़ने का वो प्रयास करने लग गए थे, तुरंत उनको पीछे हटाने के लिए कि भीड़ हमारे पुलिसमैन के ऊपर से उनको चोट ना लग जाए, उनको हटाने के लिए पहले यूज किया गया था। अभी सारा बैरिकेडिंग तोड़ने के पश्चात फिर भी हमारी पुलिस डटी हुई है, और फिर अगर मतलब उसके बाद थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया गया था, पत्थर चलाए गए थे, उसके बाद थोड़ा अपने दोबारा जो अपना हमारा जो स्थान है वो रिटेन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन एज रांची सिटी एसपी मैं अभी भी अपील करूंगा कि प्लीज प्रोटेस्ट को पीसफुल रखिए, प्लीज शांत रहिए और कोई भी वायलेंस मत करिए।
19: प्रोटेस्टर्स कितने इंजर्ड हुए?
18: प्रोटेस्टर्स जहां तक हमें सुनने में आ रहे हैं 4 से 5 प्रोटेस्टर्स को माइनर इंजरी हुई है, उनको जो है प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। धन्यवाद।
19: हमारी सुबह बातचीत हुई थी, आपने कहा।
0: All right, so earlier we heard Devendranath Mahato. He's one of the students who's been on a hunger strike for 9 days, and he is also part of the Vidhan Sabha Gherao March today that is taken up.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: state. The protesting students, as we said, have been agitating for 17 days. This is over alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission examination, as well as other examinations in the state where they've claimed there is corruption and have demanded a CBI probe into the matter. Remember, it is the CID that is currently probing this alleged corruption. Now, thousands of students gathered outside the Jharkhand Assembly. They were marching from where they've been protesting for the last many days towards the Jharkhand Assembly, but the police used force to disperse the crowd. Barricading had also been put up ahead of this march, and several protesters as well as the police were injured in the clash. Some three protesters as well as some of the police were injured. The protesters also throwing footwear at the police over the barricades, and a lathi charge, as we said, took place. It was a mild lathi charge, is how our reporters on the ground have described it. Water cannons were used and tear gas as well. Visuals also came in of many of the police personnel being injured as the students breached the barricade and have managed to reach near the assembly gates now. So there is a standoff of sorts with the students on one side. They're just less than a kilometer from the assembly, while the security and police are on the other side. With the protests intensifying, security has been tightened. The premises have been heavily fortified.
1: हर स्टेप पर सरकार छात्र को रोकने का प्रयास कर रही है. पहले तो 2400 जिलों में ब्रैकेटिंग लगा दिया गया, लोगों को बस में भी आने नहीं दिया गया, आम आवाम को निजी काम में भी आने नहीं दिया जा रहा है. फिर भी यहाँ पहुंचे छात्र, तो अब यहाँ पहुंचने के बाद या पहले वाटर किनन का प्रयोग किया गया, टीयर गैस का प्रयोग किया जा रहा है, लाठी का चार्ज किया जा रहा है. तो ये सरकार इतना डर गई है, सरकार डर गई है. आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तोहफा में छात्र पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको उन पर जो है कि आंसू गोला बरसाया जा रहा है. छात्र डरेंगे नहीं.
2: तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है. ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया. कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता.
3: वन कॉप अनफॉर्चुनेटली हैज बीन इंजर्ड. दिस इज वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, एंड इट इज रियली नॉट समथिंग दैट दिस प्रोटेस्ट नीडेड. अ कपल ऑफ बैरिकेड्स हियर यू सी हैव बीन ओवरटर्न्ड by a few people. There was a lathi charge just a while ago, and one of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand.
4: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे, और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा. जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे.
3: You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady

0: करना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का, लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते। बताइए हम लोग क्या करें?
1: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम, करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते, इन लोग हट जाओ यार, और सब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीतना है बोले, आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
2: और ये मैम बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी का सर फट रहा है मैम, किसी के पैर टूट रहे हैं मैम, ये बच्चे फिर इलाज कहाँ से कराएंगे? पढ़ने को पैसा नहीं है मैम, ये लोग इलाज कहाँ से कराएंगे? एक आप एग्जाम लेते हैं, उस पेपर लीक करवाते हैं, ऊपर से आपको सब पता है कि करवा कौन रहा है, उसके बावजूद भी मैम आप उसको सजा नहीं दिला रहे हैं।
3: एक आवाज आएगा कि यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो,
4: इस्तीफा मांगने लगे तो हेमंत सरकार को इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं, इसको दिलवा कर रहेंगे। नौकरी आप बेचोगे, डिमांड हम लोग करते हैं कि सच्चाई बताओ, तुम बताते नहीं हो तो हम लोग मांग किससे करेंगे?
5: Party charge just a while ago, and one of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second. भैया आपका नाम?
6: जी मेरा नाम कुश महतो है और मैं आज मेरा छठा दिन है हंगर स्ट्राइक का और लगातार जो है कि छात्रों के साथ
5: मांग बताओ अपनी भैया मांग बताओ।
6: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे।
7: And as this agitation rages in Ranchi, now Congress leader Rahul Gandhi is facing questions from the BJP about his absence from this stir. Remember, Rahul Gandhi had spoken out in favor of protesting students in Jantar Mantar, but the BJP is now questioning him over this particular agitation. He did release a social media message on the protests about solidarity with the students, the BJP targeting him over the Ranchi agitation, while students have taken to the streets there demanding action on their concerns. Rahul Gandhi was in Prayagraj on the 8th of August. The BJP is now questioning why the Congress leader has not joined the protesting students in Jharkhand, also targeting Rahul Gandhi over his absence.

0: यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है।
1: प्योरली द यूथ एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन, और तभी हजारों छात्र पूरे झारखंड से आज यहां रांची में है, जबकि पूरे रांची को कटीले तारों से बांधा गया है, लेकिन यूथ पूरे पहुंच चुके हैं और मार्च कर रहे हैं विधानसभा की ओर। एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, ईडी जांच, सरकार को तुरंत ही स्टेप लेके सीबीआई इंक्वायरी के लिए करना चाहिए।
2: Alright, let's now focus on Parliament. Remember, just 4 days are left of this monsoon session, and now the government has said that Home Minister Amit Shah is ready to address Parliament over the students' protests at Jantar Mantar and the police action against those students. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the centre is ready for a discussion over issues concerning the students, and Union Home Minister Amit Shah is willing to respond. But Rijiju also said the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said the opposition must listen to Home Minister Shah's response in Parliament and participate in the discussion. Remember, there has been an impasse in Parliament.
3: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
4: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय धरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
2: All right, so the government there reaching out to the opposition. As we said, there has been an impasse in Parliament. Now, today in the Business Advisory Committee meeting, pained by the deadlock in the House, Lok Sabha Speaker Om Birla made an emotional appeal to the floor leaders. He said, let the voice of the people be heard. He said, hold question hour, discuss the key bills. Because remember, bills have been passed without any discussion. Very key, important bills have been passed in this session without any discussion because of the opposition sloganeering, the opposition insisting that Home Minister Amit Shah address the House questioning his absence. Now, the Speaker said that emphasizing the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions, Om Birla said he appealed to all the parties to extend their cooperation in ensuring smooth and orderly conduct of the proceedings so that issues concerning people can be discussed in a comprehensive and productive manner. So the Speaker making this appeal to all the leaders of the parties in Parliament, asking that let the House function, let there be debate, let there be discussion, because this is very important in a democratic setup. The people's issues cannot be left waiting in the corridors. They must be reflected, debated and resolved on the floor of this House, is what the Speaker has said. And with a personal appeal as well, he said, for democracy, for the people, please cooperate. Well, let's go across to NDTV's Aishwarya, who's been tracking all these developments. And Aishwarya, a very emotional appeal there being made by the Speaker Om Birla, where he's talking about how there's a need for debate and discussion in the House. And this comes as during this monsoon session, we've seen some very important bills being passed amid the chaos.
5: Well, that's right. Once again, it is Lok Sabha Speaker Om Birla who had made that emotional appeal. Since day one of the monsoon session of Parliament, we are witnessing ruckus and chaos inside the House.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: वेट सिर्फ आपके साथ खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: As the national anthem, for the first time in history, Vande Mataram will be sung from the ramparts of Red Fort this Independence Day.
1: As per the MHA circular, the six stanzas in 6 minutes 10 seconds would be sung at Red Fort this Independence Day as well. Remember, this is the 150th year of the creation of Vande Mataram by Bankim Chattopadhyay, and the Government of India is celebrating that. What we are given to understand that this time at the Red Fort, when the Prime Minister would come to unfurl the national flag, before the national flag unfurling, you will hear Vande Mataram, the 3 minute 10 second recitation of the six paras as per the MHA norm. That is what Minister of Defence have confirmed now. And also what we're given to understand that Indian Air Force helicopter would be carrying a banner 50 years, celebrating the 150 years of Vande Mataram as well on 15th of August.
0: Right. Right, absolutely, Rishabh. It's going to be historic first this Independence Day when Vande Mataram will be sung along the ramparts of Red Fort. Thanks very much. In other news, Commonwealth Games heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalist and applauded their grit, dedication and standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. Here's a snippet of that interaction.
2: मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
3: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
3: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
5: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे
3: पक्का
6: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
3: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
7: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
3: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
8: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
3: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
3: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
9: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
10: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला, मेरा बर्थडे था तो आज सर की
9: बहुत बधाई। वाह। ब्रावो यार।
10: ये ओनली एक ही सर
9: मेरे साथ देखा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: Jaipal Singh Munda Stadium, it's really far. It's about 15, 16 kilometers far, the Vidhan Sabha. So these students traveled a lot of distance to, in fact, even reach there and, you know, start this protest. Let me very quickly go across at this moment to Manoj Yadav. He is one of the student leaders who has been, in fact, very active as far as this protest is concerned. We also have Aditya Sharma, Rahul, who is also a student. Kinza Rahman is also a student. And Rhea Pandey is joining me as well. Thank you to all of you for being with us at this moment. I just want to understand, and let me start by asking you, Manoj, filhal, halat kya hai? Abhi sarkar keh rahi hai, hum baatcheet kar rahe hain. Wo keh rahe hain ki dekhiye, humne inki bahut sari maange maan li hain, kuch maangon par abhi baatcheet chal rahi hai. आज का जो अभी ये प्रोटेस्ट मार्च आपने निकाला, उसके बाद आगे क्या?
1: देखिए, सबसे पहले बात है कि सरकार लीपापोती कर रही है, लीपापोती कर रही है। मैं स्पष्ट में बता देना चाहता हूं, हमने कहा कि आप जब जान रहे हैं, सरकार जान रही है कि जो है जेपीएससी में धांधली हुई है, सरकार जान रही है कि जो है जेएसएससी में जो अभय तिवारी है तमाम सीटों को बेचने का काम किया। जब सब आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है? और आपको सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? हमारा स्पष्ट मांग है कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई है जेपीएससी में, वो तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए।
0: मनोज, तो सरकार से जो अभी तक बातचीत हुई है, दो तीन दौर की, मैं बस आपसे समझना चाहता हूं, दो तीन दौर की जो बातचीत हुई है, उसमें क्या बातें वो मानने को तैयार हैं और किन बातों पर सरकार अभी अड़ी हुई है, नहीं मान रही है?
1: देखिए, सरकार यह भी सिर्फ और सिर्फ वह 14वीं जेपीएससी को रद्द करने के लिए रेगुलर, और दो जेपीएससी है जो बैकलॉग है उसको रद्द करने की बात करती है और बोलती सीआईडी से जांच कराएंगे। जब इनका सीआईडी पहले जांच किया सीजीएल का, इन्होंने क्लीन चिट दे दिया, और जब अभी जो है यही वह सीआईडी जांच करके अभय तिवारी को पकड़ के ला रहे हैं और बोल रहे हैं सीजीएल में जो है अभय तिवारी, उनका भाई, उनकी पत्नी, उनकी साली, उनकी सरहद, उनकी मम्मी, उसकर पापा, उसकर सासों पास कर गई, सब पास कर गया, 10 को आदमी पास कर गया। आप कैसे इस पर विश्वास करें?
0: ओके,
1: आप पहले बोल रहे थे कि आपका कुछ गड़बड़ी नहीं है और आप जो ज्वाइन करवा दिए।
0: ओके, आप मेरे साथ बने रहिए। रिया, लेट मी कम टू यू एट दिस मोमेंट। यू नो द स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आई वाज देयर एंड द ग्रीवियंसेस, द स्टोरीज दैट यू हियर आर एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, दोज़ हू हैव गिवन मोर देन अ डेकेड ऑफ देयर लाइफ ट्राइंग टू इन फैक्ट सिक्योर दैट जॉब। At this moment, do you feel the government says that, listen, we are talking, we are still trying, we are talking, there are more than 19 people who have been arrested today, the JPSC chairperson, former chairperson, has also been arrested. Do you feel the government is doing things in its right earnest, or do you feel that it is, they're just buying time, they are hoping that this will die down?
2: Hi NDTV and the entire team. I am really not happy with the course of action that the government has taken, because what we are seeing is there is a deliberate delay. Why do we let these protests take a form where there is tear gas shelling, where people have to be beaten up, where students have to be beaten up? What image are we sending to the geopolitical global stage also? The whole world looks at us with a very shining and bright demographic dividend. But when these images go out in the international arena, countries are genuinely going to be concerned for the students of India. And institutions are made to think on the very fact that in a democracy, it is the institutions which are to act as vent for social outrage, for political outrage, for people outrage. But when these institutions are corrupt, when they are taking time to respond, when they are itself torturing citizens of the country, where else do we go? It's like there is Kua and Khai situation that's going on at this moment, and it's very disturbing as a student.
0: Okay. Rijul, let me bring you in at this moment. When you hear these this kind of narrative which is going on that, oh, look at how the protest at Jantar Mantar was, what is happening in Ranchi. A lot of people trying to, in fact, see it in different light. My limited point on this is that, how they are doing it, who are these people? They are young people. The important thing is the anger and the frustration

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.

0: टीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज टीओके।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: step in. And eventually, this lathi charge had to be done. But from the side of the protesters, we've been trying to reach out to the student leaders. They are continuously saying that come what may, no kind of violence should be seen from the side of the students. They should not get into any kind of spat with the police. Anything that happens should be done peacefully. In fact, a section of people even came back. Mind you, it has also been raining quite a bit. Late in the evening, in the afternoon when the march was happening, it was relatively sunny. But in the evening, it began to rain really heavily. And despite all of that, these people have continued to sit outside the Vidhan Sabha, and eventually that use of force had to be done. So first, there was a lathi charge.
1: Padmaja, may I request you to just stay on with me? We are just playing at this moment the visuals when the police, in fact, just about 10 minutes back, decided that they are going to now use force and push these protesters away from the very premises, the gate number one, as you were talking about, where the protesters were. Let's just listen in to what happened when this entire police action began.
2: जब हम वीडियो बना रहे थे तब थैंक यू
1: Right, so these are some protesters you're seeing some more reactions coming in from the students, those who are leaving at this moment, being forced by the police to leave that ground. Listen in.
3: अंदर में बैठे थे हम सभी शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे हम लोग का पीछे आगे पूरा लाठीचार्ज किया गया शाम के आड़े में ये तानाशाही सरकार है ये हम सभी गरीब बच्चों का सब काफी अन्याय कर रहे
4: लाठीचार्ज जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज जिन्होंने इसको अनाउंस किया था इस घेराव को उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे हालांकि काफी 80 से 90% प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे बट 15 से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंगी करी जिनके द्वारा पुलिस पर पत्थर मारे गए जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी गई है उनके द्वारा हालांकि जो बाकी लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ऐसा उनके चक्कर में जो है पुलिस को कुछ माइनर लाठीचार्ज करना पड़ा है स्टूडेंट्स को माइनर इंजरीज हैं 4 से 5 स्टूडेंट को इंजरी हुई होंगी वो भी जितना रिस्ट्रेंट हो सकता था वो पुलिस के द्वारा रिस्ट्रेंट करते हुए जो है काम जो है किया गया है
3: सरकार के पास सरकार के द्वारा कोई आउटपुट नहीं है उल्टा प्रशासन के द्वारा हम लोग को यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं हमारे साथी को मारने का काम कर रहे हैं ये कहाँ का लोकतंत्र है ए हेमंत सोरेन आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा ये हम कमिटमेंट करने आया हुआ अरे क्या किया हमने भ्रष्टाचार को उजागर करने को आपको सीबीआई का जांच का मांग करिए हमने पेपर लीक को उजागर करने के लिए मांग किया हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया अब लाठी से बात कीजिएगा यह नहीं चलेगा यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी
5: महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया ना लाठी बरसाया ना और जेंट्स पुलिस शर्म लगना चाहिए महिला पुलिस रहता तो अलग बात थी जेंट्स पुलिस जबकि हम लोग शांति से बैठे हुए थे देवेंद्र महतो के साथ अनशन में बैठे हुए थे लेकिन ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया कपड़ा फाड़ा गया है महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है ये पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगा
1: Some very angry voices coming in there from the protesters, those who were outside the Vidhan Sabha in Ranchi. In fact, one of them, the one that you saw just before the last, in fact, person speaking is Ravindra. He is part of the delegation. He's also the student leader who has been, in fact, one of the key figure in this entire protest. He has been in the talks with the government as a part of the delegation for 3 rounds. And I spoke to him a couple of days back when Rahul Gandhi, when he called up the protesters, he was the one who received that call from Rahul Gandhi and spoke to Rahul Gandhi as well. These visuals are coming in live at this moment where the police is using some sort of force, and beating up some protesters while they are trying to chase them away from the Vidhan Sabha, from the Jaipal Singh Mudda Stadium in Ranchi. The Vidhan Sabha is quite a distance, ladies and gentlemen. And throughout the day, and Padmaja, my colleague, was there. She reported throughout the day as the protest built and then there was tear gas shelling, water cannon and some injuries as well. Padmaja, throughout the day, the police kept saying that we have shown a lot of restraint. We heard one of the police officers

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: I am Iskandar.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter. The stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal of Saturday.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
7: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
8: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
9: हरियाणा।
8: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
9: डेढ़ महीने पे।
8: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
9: तीन साल।
8: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
9: बहुत।
8: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
9: श्रीनगर तक अलाउड।
8: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
7: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
10: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the biggest story of the day, the buck stops here. And today the buck will stop at the door of the Hemant Soren government in Jharkhand. The day saw students who were protesting against irregularities that have taken place in entrance exams. They are saying that there has been a large-scale irregularity. Jobs have been sold day much to the Vidhan Sabha with a huge face-off where there was lathi charge, tear gas shelling was done. There was even students who said that they had been beaten completely unprovoked. And now the question being asked is, despite all the action that has been taken, yes, you had the chief of the JPSC who was arrested today. Yes, you've got the entire commission being dissolved after the resignation of three members. And yes, the chief minister has said that we are willing to have any further investigation. A preliminary FIR or an ECIR has also been filed by the enforcement directorate. But the main question, the distance between Jantar Mantar and Jharkhand. If a lathi charge by the police was bad in Delhi, how can it be acceptable in Ranchi? Joining us today from the stadium where for close to 3 weeks now, students have been sitting on dharna demanding their rights. Joining us is Alok Dubey, who is a leader of the Congress in Jharkhand. We also have Ashok Barak, who is a leader of the BJP. And we have an audience of students. The students, the supporters that they have got over here, people who have appeared for the JPSC, who have problems, who have complaints with the entire examination system. Let's begin by asking Alok Dubey ji. लोग तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने आज तो ट्वीट करके ये भी कह दिया कि जो रांची में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर ये कंडेम करके क्या होगा? आप तो सरकार में ना है यहाँ पे
11: मैडम। एक तो सबसे पहले आप बिल्कुल रॉन्ग बोल रही हैं, छात्रों को यहाँ आंदोलन करने का पूरी आज़ादी है। आज 17 दिन हो गए संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल दिया है झारखंड की सरकार ने, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ के बच्चों ने कि हमें संस्कार भी मालूम है और हमें राजनीति को समझना है और बच्चों की समस्याओं को। अगर लाठी चार्ज की बात होती तो बच्चे विधानसभा कैंपस के 100 मीटर अंदर तक पहुंच गए थे। ये संवेदनशीलता है प्रशासन की कि
10: लाठीचार्ज तो 100 मीटर से पहले ही,
11: 6 ब्रैकेटिंग तोड़ने के बावजूद, और यहाँ तक कि आंदोलनकारी बच्चों का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उपद्रवी लोग घुस गए थे जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की।
10: यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर विधानसभा में मौजूद थे। कौन कौन थे विधानसभा में वहाँ पर? क्या वहाँ पे उपद्रवी थे जो कि घुस गए थे?
2: नहीं, हम लोग वहाँ नहीं थे।
3: ये चला है और लाठी चार्ज भी हुआ है वहाँ पर, हम गए थे।
2: गिरा है, गोला मारी है,
10: नहीं, एक सेकेंड, वहाँ पर

0: कि संवेदनशीलता दिखाई गई है, वो पूछ रहे हैं कि आपने शुरू से ही जब तीसरा बैरिकेड टूटा लाठियां क्यों मारनी शुरू कर दी।
1: 6 ब्रैकेटिंग टूटा और संवेदनशीलता की इस बड़ा उदाहरण नहीं है कि एक हवा में टीयर गैस छोड़ना, एक पैलेट गन से टारगेट करके छोड़ना, देयर इज ए बिग डिफरेंस।
0: और वो हालात तो ये भी सही है,
1: मंतर में जो हुआ था वहां बच्चियों के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें डंटा मारा गया था, और यहां पर जो बच्चे बच्चियां आंदोलन आगे करके गेट तोड़ते चले गए, यहां के जिला प्रशासन ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन एक वो कार्रवाई नहीं थी, वो बताया गया कि आपको एक सेंसिटिव जगह है विधानसभा जहां 100 मीटर की दूरी पर आप पहुंच रहे हैं।
0: ये सेंसिटिव तो संसद भी है ना, सेंसिटिव तो पार्लियामेंट भी है,
1: बिल्कुल है।
0: तो पार्लियामेंट में जब मार्च जा रहा था तो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे थे आप?
1: हम तो बोल रहे हैं कि हमने जो रोकने की कोशिश की है, हमने बच्चों के साथ कोई अमानवीय और बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की है। यह 17 दिनों का उदाहरण है।
0: अच्छा, कोई अमानवीय बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जब बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर पहुंच गए तभी पुलिस ने।
2: देखिए, आज जिस प्रकार से झारखंड में जो घटनाएं हुई है, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। एक तरह से डेमोक्रेसी को कुचला गया है इस सरकार के द्वारा में। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज युवा शक्ति, छात्र शक्ति, जब अपने हक हुकुम को लेकर, अपने न्याय मांगने को लेकर, जब हजारों लाखों की तादाद में वो भी जेन्युइन मांग को लेकर विधानसभा मार्च करते हैं, और भी पूरी की पूरी शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने जेन्युइन मांग, वो मांग क्या थी कि जेपीएससी जेसएससी में जो
0: देखिए फोटो दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोटो लेकर के आए हैं, क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए।
2: एक भी झंडा आज का कोई कार्यक्रम में, पूरे नेशनल टेलीविजन में एक भी झंडा नहीं था। ये पुराना फेक एडिट करके बनाया गया है, और मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस अलग अलग स्टेट में इनके सिद्धांत और इनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। आज राहुल गांधी जी से यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो 16 दिनों से छात्र यहाँ अनशन कर रहे, वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी तुम कब आओगे। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए जंतर मंतर का मंतर जयपाल सिंह मुंडा आते आते हो जाता है छू मंतर। ये डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और जितने विपक्षी लोगों को, देश के छात्र देख रहे हैं कि किस तरह से आज
0: बताइए आप कह रहे हैं पत्थर चल।
1: देखिए, यहाँ सब काम राहुल गांधी को नहीं करना है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के बच्चों को जिन्होंने शालीनता, सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन किया, और उस शांतिपूर्वक आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी परेशान करना चाहते थे।
0: एक सेकंड, हाँ बात रखिए, एक तो रास्ते में मत आइए, रुकिए। आप गए थे वहाँ पर मार्च में गए थे, आप अपनी बात रखिए, आप वहाँ पर मार्च करते हुए गए थे, क्या आपके ऊपर वाटर कैनन हुआ?
3: देखिए, ये वाटर कैनन आंसू गैस चलाया गया है, ठीक है, मेरा आग में भी अभी मतलब लहर रहा है। हम यही ये चीज मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का न्याय की बात हो, न कि आरोप और प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप के लिए ये मंच नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का हर मुद्दे पे न्याय होना चाहिए। जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे मतलब सीट बेचा गया हो, चाहे पूरा एकदम भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सबका न्याय होना चाहिए। बस
0: देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नाराज हैं, जो लड़के हैं नाराज हो रहे हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि छात्रों की बात होनी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए। आप किधर से आए?
4: मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी के साइड से आया नहीं।
0: अरे किसी जगह से आए होंगे,
4: ये रांची में ही रहता हूँ।
0: आपका जो आज मार्च हुआ था उसमें लगता है कि कुछ हासिल हुआ?
4: हासिल ये हुआ कि छात्र जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे, है ना, वो उन्होंने मतलब जो आज शांतिपूर्ण चीजों को करा, ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ठीक है लाठीचार्ज हुआ, चीजें हुई, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा कि यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट एक दूसरे से वहाँ क्या हुआ, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लग रहा ना मेरे को।
0: शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था पर उसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, क्यों
4: लाठी चार्ज हुआ, मैं मानता हूँ वो गलत हुआ, बट आप यहाँ पे आकर के ये चीज जो कर रहे हो, ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा।
0: आई आगे चल के, लेट्स गो बैक एंड वॉच।
5: कौन नहीं बैठा?
0: जो आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि जो यहाँ पर हुआ झारखंड में वो गलत हुआ। वो कह रहे हैं कि बल

0: देखिए छात्रों की भावना है, यहाँ जितने छात्र हैं सबकी भावनाएं है कि छात्र हित की बात होनी चाहिए। हम शुद्ध 100% 24 कैरेट गोल्ड के साथ हम बोलेंगे कि छात्र हित की यहाँ चर्चा होनी चाहिए। हम भी इनकी बात से सहमत है। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस अभय तिवारी जो 10 से 13 परीक्षा पास करता है, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी TDPL के माध्यम से जो 13-13 एग्जाम कराता है, अपने पत्नी अपने भाई और अपने साला को परीक्षा में पास कराता है, नौकरी लगाता है और खुद रैंक 2 लाकर यहाँ अधिकारी बन बैठता है, तो छात्र की मांग वही है कि जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा, आदिवासी बुलवासी का बच्चा, जब गांव देहात से माड़ भात साग रोटी खाकर, जब जमीन गिरवी रखकर पढ़ता है लिखता है, जब एग्जाम लिखता है, तो अभय तिवारी जैसे लोग सीट को खरीद के वो आदिवासी बुलवासी वो किसान गरीब का बेटा का सपना को चकनाचूर करने का काम करता है। तो छात्र की मांग यही है कि TDPL को रद्द करें, JPSC JSSC 2019 से लेकर
1: जब आप कूद जाते हैं ना बीच में,
0: पूरी रद्द करें और CBI जांच की मांग होनी चाहिए।
1: जब आप बीच में कूद जाते हैं तो लोगों को डर लगता है कि उसका राजनीतिकरण हो जाए।
0: कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा है, हम छात्र हित के लिए हैं, थे और भविष्य में भी रहेंगे।
2: 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आज उनका बयान आपके TV पर सुन रहा था। 5 साल में जो मुख्यमंत्री एक JPSC एग्जाम नहीं कर पाता है वो नैतिकता की बात करता है? अगर JPSC को बर्बाद करने का किसी को श्रेय जाता है तो 2 मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया JPSC में, संथाल परगना के 20 में 16 लोगों को भर्ती करवाया इन दोनों ने, लेकिन हम उसको जस्टिफाई ये नहीं करते हैं कि अगर सरकार ने किया तो हम भी यही करेंगे।
1: तो आलोक जी आप ऐसा कीजिए ना,
3: सरकार कहते हैं इसको वाटर बॉटरी कहते हैं। आपको एक बात बता दूं, बात हमेशा वर्तमान समय की होती है। सत्य बताता हूं, लास्ट 7 ईयर्स में, इन लास्ट 7 ईयर्स 22 पेपर लीक्स हुए मैम, जो आप देही से बचने के लिए इस सरकार में ये हुआ। इस सरकार 7 साल में 22 पेपर लीक हुए, हेमंत सरकार सोरेन की सरकार थी। आज सर आप जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं ना, साफ साफ लग रहा है कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं।
1: एक काम कीजिए, अकाउंटेबिलिटी आप ही की नहीं, हर सरकार की होनी चाहिए। आप CBI का इन्वेस्टिगेशन करा के भाजपा के लोगों को भी जेल में डलवा दो ना, डलवा दो आप उनको।
2: CBI का इन्वेस्टिगेशन 2 JPSC में हुए, वो रिजल्ट अब तक नहीं आए और वो सुप्रीम कोर्ट में है। भारत की सरकार कह दे कि CBI के जो है रिजल्ट जो 2 JPSC के हमारे पास आए हैं, हम उसको जारी कर देते। रह गई CID की बात। CID ने सरकार ने आंदोलन में आने से पहले बच्चों के लिए,
3: बात बच्चों की होनी चाहिए, बात ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, बात अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए। आप हर बार दूसरे लोगों को बीच में लाकर हर बार मुद्दे से भटक
1: बच्चे की बात।
4: I have been a student here. फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ वेरी वेरी डिसेंटली, आप लोग पहले शांत रह लीजिए। अभी मैं वहां से आ रहा हूँ, अभी हम लोग जहाँ पे विधानसभा में गए हुए थे, आई हैव बीन देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। और जब वहाँ पे जो छात्र नेता वहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद 6 बजे जब बारिश होनी शुरू होती है, तब हम वहाँ से लौट रहे हैं। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई हैव बीन विटनेसिंग इट सिंस। प्रॉब्लम ये है ना सर, कि हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार का सहायता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है ना, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कौन है। हमारा क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी से। आखिर JPSC के चेयरमैन किसी सरकार के आदमी नहीं थे, ये अभय तिवारी किसी सरकार के आदमी नहीं है। अगर ये सरकार के आदमी नहीं है तो आज अगर सरकार ये बात बोलती है कि JSSC के जो भी लोग आज रिक्रूट हुए हैं उनको बुरा लगेगा या भला लगेगा, या जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है ये रद्द नहीं हो सकता है, तो ये सरकार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार हमारे साथ खड़े होने चाहिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आप हमारे साथ खड़े हो, एंड यू अगेन क्वेश्चन ऑल दिस ब्यूरोक्रेसी, या कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, कुछ भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए ना, तभी तो हम आपको कल अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं हमारे, आप तो हमारे अगेंस्ट हो रहे हो, आप हमारे पर क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो?
1: बहुत बढ़िया बोला, नाम क्या है?
4: चंदन।
1: चंदन बताइए, चंदन ने सभ्यता से बहुत शालीनता से अपनी बात रखी और वो ये कह रहे हैं, देखिए कई जगह होती अगर राजनीति करनी होती तो कहते फलां इस्तीफा दो, धमाका सरकार गिरा दो। ये कह रहा है सरकार आप हमारे साथ खड़े होकर के, बस हमारी नौकरी एक पारदर्शी तरीके से हमें दिलवाई है। उसमें अगर आप राजनीति करके इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मान लीजिए ना, एक पारदर्शी तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए।
2: दो मिनट का मुझे भी विनम्रता से बोलने की इजाजत दीजिएगा। आंदोलन में जाने से पहले सरकार ने सीआईडी गठित की, चेयरमैन इस्तीफा दिए, आज चेयरमैन सलाखों के पीछे हैं। चार मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, बच्चों के साथ चार मर्तबा राउंड टेबल पर बैठक हुई, सरकार ने कहा 23
1: इन बच्चों के साथ दो बार
2: दूसरों 23-25
1: अब एनएसयूआई के साथ बैठेंगे तो वो बैठक किसी काम की,
2: पहले से सब कुछ जान के बैठे हैं, मुझे बोलने भी दीजिए। 23-25 का बैकलॉग और 2000 ये आपका 14वां जेपीएससी, सरकार ने बोल दिया कि हम इसको खत्म करते हैं। अब रह गया आपका कि जो सीजीएल और जेएसएससी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो मामले चल रहे हैं।
1: छोटा सा सवाल पूछती हूँ, ठीक है, एक सेकंड ये बोलेंगे, हाँ एक सेकंड ये बोलेंगे अभी, इसके बाद मैं एक छोटा सा चीज पूछती हूँ। ये तर्क जो है ना दिल्ली में भी दिए जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, हमने रीनीट करा दिया। वहां पर सैद्धांतिक तौर पर एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो सरकार ने कहा ठीक है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। यहाँ पर एक सैद्धांतिक तौर पर वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई का जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, जो बीजेपी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए, जो आपकी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए।
2: बहुत अच्छा,
1: ये उनकी मांग
2: है। बहुत अच्छा सवाल किया मैंने आपने मैडम, वो सरकार काउंटेबल नहीं है जो बच्चों की बात नहीं सुन रही है, जो सरकार बच्चों की बात सुनने को तैयार है, जो सरकार बच्चों के लिए काम करने को तैयार है, जो सरकार मंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पूरी जेपीएससी भंग कर दी गई, सलाखों के पीछे चले गए।
1: यहीं पे आप पलट गए ना अभी, अच्छी खासी, एक सेकंड ये बोला,
4: इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे ये जो तीन टीयर्स हैं वो डिवाइड होती है, इसमें बहुत सही तरीके से डिवीजन है, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिवीजन है। हमारा प्रॉब्लम लेजिस्लेचर से है ही नहीं, हम चाहते हैं लेजिस्लेचर हमारे साथ आए ताकि हम एग्जीक्यूटिव्स को उनके अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकें। हम कहीं पे भी लेजिस्लेचर को ना ला रहे हैं, ना उनसे किसी भी तरीके से हम ना उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनसे जवाब चाहते हैं।
1: आप मुझे बस इतना बताइए, अभी अगर जांच होगी तो ये दूर तक जाएगी, तब मत बोलिएगा कि बीजेपी के खिलाफ विछंड क्यों हो रहा है। आप ये खड़े होने के लिए तैयार हैं छात्रों के साथ कि फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो आपकी सरकार में हुआ है उसकी भी जांच हो, जो इनकी सरकार में हुआ है उसकी भी।
0: देखिए, इसमें कोई बोलने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक झारखंडी हूं और मैं ट्राइबल आदिवासी झारखंडी हूँ, और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस चीज़ से प्रभावित मेरा परिवार के लोग भी है। तो हम एक बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, एक झारखंडी होने के नाते और एक झारखंडी युवा होने के नाते, युवा भावनाओं के अनुरूप ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। आज क्यों आज लाखों की तादाद में छात्र मार्च निकाले, क्योंकि वार्ता तो सरकार से हो रही थी। सरकार से जब वार्ता हो रही थी तो टेबल पर कौन सा ऐसा मामला कर फंसा कि जिसको लेकर आज छात्र बारिश में भींगे भींगे लाठी खाए, टीआरएस के घास छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर उनको आतंकवादी गुराजी से मारा गया। इसलिए क्योंकि झारखंड में जितने भी पेपर हुई है सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है।
1: ठीक है, और एक चीज जो है, एक पैमाना वैसा ही होना चाहिए, लाठी अगर कोई उपद्रवी हो तो उसके ऊपर आप करें तो एक सेकंड ये मैं इनसे पूछ लेती हूँ। आप अभ्यर्थी हैं?
5: मैं अभ्यर्थी से त्रस्त हूँ, मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, मैं 2-3 बार एसएससी का एग्जाम दे चुकी हूँ जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। मैं उस चीज़ से मैं आज छात्र को देख रही हूँ, तो कुछ समय पहले था जब मैं भी इस चीज़ से गुजरती थी, वो दर्द मुझे हुआ, तो आज मैं छात्रों के साथ आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम कर रही हूं।
1: आपको आपको ऐसा लगा था कि आज आपको मार्च डालने दिया जाएगा, या फिर जो लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में आप क्या कहें?
5: सबसे पहली बात कि अगर ये दो राउंड की बात हुई है, अगर ये फर्स्ट राउंड में ही हमारी बातें मांग पूरी हो जाती तो हमें आज विधानसभा घेराव करने का जरूरत नहीं पड़ता। पर सरकार ये मांग चाहती नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये दिन पर दिन टाइम लेते जा रही है।
6: तो देखिए मैम, पहले तो बात ये है कि जो सरकार है, आप ऐसे सोचिए, सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, या फिर ना हम सरकार के दुश्मन हैं। सरकार को हम ही ने चुन के लाया था, हमें इन पे पूरा भरोसा ही टूट गया है। एक भी, जैसे 26 साल हो गए झारखंड को, आज़ाद हुए, होने चाहिए 26 जेपीएससी, लेकिन चल कितने रहे 14। आप उसको समझिए,

0: हमारी लड़ाई किस चीज़ से, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। अगर मान लिया आज कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल की बात हो रही है, कर देते हैं, दोबारा क्या गारंटी है कि ये सही से करेंगे? ये भी एक डर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को काम है कि जो सिस्टम के अंदर है उनको पहले साफ करें, और उसके बाद जो चोरी हुई है उसको रद्द करें। बस
1: एज अ वॉइस ऑफ स्टूडेंट, एज अ वॉइस ऑफ यूथ, हमारा यही आवाज़ है कि हम किसी भी पार्टी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हम एक पर्टिकुलर रिफॉर्म लाना चाहते हैं जिसमें हर एक पार्टी, हर एक गवर्नमेंट, हर एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये बात को, अगर उनके पास पावर हमने दिया है तो वो ज़रूर पहुँचाए, और ये चेंजेस जरूर विधानसभा पे भी लाया जाए और चेंजेस भी लाए जाए।
2: मैं आज झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गया है, और झारखंड एक युवा झारखंड है, और इस युवा झारखंड में मैडम 26 साल में 26 जेपीसी होना चाहिए था, लेकिन केवल 8 जेपीसी हुआ है। केवल सिर्फ उसको लेयर में बढ़ा दिया गया है कि एक साथ हमने 3 कर दिया, 4 कर दिया, लेकिन उतना नहीं हो पाया मैम। और इस बीच में मैम जो हम लोगों ने सरकार से वार्ता बार बार करा, तो सरकार ने हमारे कुछ मतलब जेन्युइन मांग को भी फुलफिल नहीं करा।
3: पर अब आज के बाद क्या होगा? अब आज तो जो अगर
2: मांग है मैम कि TDPL कंपनी के द्वारा जितने भी
3: एग्जाम तो है आपकी, ठीक, आपका नाम क्या है? हाँ, क्योंकि अब जब आपने मार्च निकाला, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने इसको भंग कर दिया है, तीनों मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। मार्च में जहाँ तक सवाल था, आप मार्च आपको रोक दिया गया, अब आगे क्या करो
2: मैम? अभी आमरण अनशन चल ही रहा है, हमारे अनशन में बैठे दो बहने, दो भाई बैठे हुए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा ना, कोई आमरण से उठेगा नहीं।
3: बताइए दुबे जी, आप
4: ये तो 10 साल से, जितना साल से हो रहा है धांधली, या तो सीट बिकना या तो एग्जाम रद्द होना, ये तो पिछले हमेशा से यही हो रहा है ना।
3: अब अगर आप इनकी बात सुनेंगे, एक सेकेंड, अब आपने सारी आवाजें सुनी, इन्होंने कहा है कि आप भले से ही इनका मार्च रोक लेंगे, अनशन पे तो ये बैठे रहेंगे ना, कभी तो आगे आ करके आपको इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी।
5: मैडम फिर आप बास्ट होके बोल रही हैं। बच्चों को कभी भी आंदोलन करने से नहीं रोका गया है, कभी भी नहीं रोका गया है। बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते।
6: आज अगर आंदोलन से नहीं बच्चों को रोका गया तो आंसू गैस क्यों छोड़ा गया?
5: गलत बात मत करें, नंबर वन। नंबर दूसरा, हमारे पार्टी के द्वारा नहीं आने के बावजूद मैं इन्हीं बच्चों के लिए आया हूँ, और मैं छात्र राजनीति का उपज हूँ। आज भी मेरे शरीर पर कई जगह पुलिस के लाठियों के निशान है, 31 मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर।
3: वही निशान किसी बच्चे के,
5: बच्चों के लिए आया हूँ। और मैं मानता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ।
3: आपको पूरी छूट मिली हुई है यहाँ पर प्रदर्शन?
7: यस मैम,
3: ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की पूरी तरीके।
0: मैम हमारी डिमांड है रिफॉर्म के लिए, ये लोग बात घुमा रहे हैं, बात को आप समझिए मैम, ये बातों को घुमा रहे हैं।
3: आप बताइए,
8: झारखंड बने हुए अभी 25 से 26 साल हो गए, यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ नियमित रूप से एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? हम हेमंत सोरेन जी को यही कहना चाहेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत सोरेन जी, हम विद्यार्थी हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, हम दिसोम गुरु के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी के अनुयायी हैं। आपको समझना होगा यह झारखंड केवल और केवल आपकी जागीर नहीं है। एक और हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं इसको जेपीएससी की एग्जाम में नहीं बैठाऊंगा। इरफान अंसारी जी रिम्स में अपने बेटे को बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसको भेज देते हैं ऐसे ही, और हमें कहते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं।
3: नहीं, पर ये तो कह रहे हैं ना कि आपको पूरा हक है प्रदर्शन करने का, कोई नहीं रोक।
8: मैम प्रदर्शन ये तो यही चाह रहे हैं, मैम कि हम केवल प्रदर्शन करते रहे, यहाँ बैठे रहे, और हेमंत सोरेन जी अपने घर में एसी की हवा खाते रहे, और विद्यार्थी यहाँ धूप में बीए करते रहे और बारिश में भीगते रहे।
3: अब इसका
5: नेताजी से पूछिए कि सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है। यदि इनके मंत्री जी क्या बोलते हैं कि झारखंड में पेपर लीक हुआ ही नहीं, जो भी वैसे मंत्री बोलते हैं जो स्वास्थ्य को पूरे झारखंड को संभाल रहे हैं, वो बोलते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं। अरे भाई सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, जेएसएससी सीजीएल से क्या दिक्कत है? आप रद्द कीजिए, आप जो साफ है तो रद्द कीजिए। सीआईडी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? एक सेकेंड, हो रही है सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है, सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है। बाबूलाल जी अर्जुन मुंडा के समय में जो सीबीआई जांच भेजे गए थे वो अब तक नहीं हुए।
8: अगर इनके अंदर डर नहीं है, इनको अगर लग रहा है, एक्चुअली बात ये नहीं है, सॉरी आराम से मेरा क्या, अगर सीआईडी देखिए ये बात, ये
7: एक सेकंड
8: चोरी छोटी हो या बड़ी ये मायने नहीं रखती, चोरी चोरी होती है। मेरा कहना ये है, अगर आप सीआईडी के लिए हामी भर रहे हैं तो आप सीबीआई के लिए भी हामी भरिए। क्या आपको इसमें असंकोच क्यों है? कहीं आपके घर में खुद का ये खोटा होगा, आपके घर का खुद का सिक्का खोटा होगा, यही इशू होगा।
3: ये बच्चा दो सवाल पूछना चाहता है हमारे, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, दो सवाल है, आराम
5: से सर, आराम से आप सुनिएगा, मेरा दो तीन क्वेश्चन है बस। अभी जेपीएससी का बात नहीं हो रहा है, खाली जेपीएससी एसएससी या बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति, कहीं पे भी आप चले जाओ, गांव में, मैं गांव से गवर्नमेंट स्कूल से आता हूं, गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति झारखंड में आप जाके देख लो।
3: सवाल क्या है आपका?
5: सवाल ये है कि वहां पे भी चोरी हो रहा, बच्चों का साइकिल और अंडा और ये मार रहे हो, और जेपीएससी में पेपर और सीट का घोटाला कर रहे हो। आप लोग एक जगह घोटाला नहीं कर रहे हो, और ये हेमंत सरकार नहीं, बीजेपी के टाइम में भी हुआ और हेमंत सरकार के भी टाइम में हो रहा है, और ये सुधार नहीं रहा है। ये
9: वो लोग एक दूसरे पे, अगर सेंट्रल में होगी तो दूसरे ऑपोजिशन को घेरे, जो विपक्ष में पार्टी है उसको बोलेगी, उसके ऊपर थोपेगी। जो अभी
3: देखिए जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर यही लोग जो है ये सही चीज बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिस्टमिक। आप जब यहाँ पे आते हैं, एक बात है कि आपका जो एक पॉलिटिक्स होती है कि उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, आप उनके ऊपर हावी हो गए, अब आप आज चुप है, अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत चंगा है, रांची में कुछ भी नहीं हुआ, ना वाटर कैनन चला, ना लाठी चली, लोग ऐसे ही गिर गए सड़क के ऊपर। यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि आपकी भी जब सरकार थी तब भी प्रॉब्लम्स थी, तब आप चुप क्यों बैठे?
10: देखिए ऐसा नहीं है, जेपीएससी 1 और 2 की जहाँ तक बात है, सीबीआई उसको टेक ओवर की, और सीबीआई ने टेक ओवर किया, चार्जशीट छः साल
3: बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो।
11: देखिए ऐसे वाटर बॉटरी करते रहो, बचाते रहो, पिछले सरकार में क्या हुआ, फिलहाल हम अभी के सिस्टम से लड़ेंगे ना, अभी क्या।
3: ये देखिए ये यहाँ का छात्र है जो पीछे हुए, ये दो नेता खड़े हैं और ये छात्र इन सबके ऊपर खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
10: देखिए मैम, छात्रों की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं का मैं व्यक्तिगत रूप से भी कदर करता हूं, करनी भी चाहिए। पूरा देश ने, पूरा दुनिया रांची पर निगाहें बना के रखा हुआ है कि कैसे छात्रों के प्रति जो सरकार को संवेदनहील होना चाहिए था, वो पूरी की पूरी एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रही है। छात्रों की मांग क्या है? छात्र तो रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं, छात्र यही बात कर रहे हैं, रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं और सिस्टम की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वही तो हम भी बात कर रहे हैं। देखिए बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। देखिए हम कंपेयर नहीं करेंगे, अभी छात्र की भावना है कि सिर्फ यही की बात होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि जब पूरे झारखंड के छात्र बात कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएससी और टीडीपीएल के द्वारा जो 19 से लेकर 26 तक जितने एग्जाम कराए गए उसको रद्द करें और सीबीआई।
3: देखिए एंड आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द पीपल, आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट सेड वेरी सिंपल दैट द डिबेट शुड स्टॉप अबाउट हु इज कल्पेबल, दिस फिंगर पॉइंटिंग वन साइड एंड द अदर। If you want the truth to be out there, हमें डिबेट नहीं चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए, ये बोल। यहाँ पर आवाज आप सुन रहे हैं सीबीआई की, और बार बार जब एक ही मांग लेकर के छात्र वापस आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ करेंगे पर ये नहीं करेंगे, तो क्यों
5: मैडम? अभी
3: वही आके फंस जाओ
5: एकदम। आप लोग, आपने कहा दिल्ली जंतर मंतर का, मैंने सुनो भाई दिल्ली के मीडिया ने जंतर मंतर को कवर नहीं किया, झारखंड को कवर करने के लिए आप लोगों की बहुत चिंता है। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है। आपका बारी आगा, बोलिएगा। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है, उन्होंने कहा XLRI IIM सबके साथ
3: नहीं चाहिए XLRI IIM, जब आदमी CBI CBI रट रहा है।
5: एक इंक्वायरी अभी हमने ईडी तक को दे दिया, ईडी को दे दिया कि ईडी को भी इन्वॉल्व हो जाए, ईडी को भी इन्वॉल्व।
3: यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछूंगी, यहाँ पे कितने लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर कितने लोग CID से संतुष्ट है, अपने हाथ उठाइए। यहाँ पर

0: कितने लोग चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो?
1: कि कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट भी हैं?
0: नहीं तो पूछा नहीं, कितने लोग सीआईडी से संतुष्ट हैं? I'm going to leave it at this because if there is one thing that you've seen in the public mood here, it's absolutely clear that this kind of browbeating and gaslighting is simply not going to work anymore. There's been a singular demand that these students have had right from the beginning, that this rot has gone on for too long, it has gone too deep, and if a complete cleanup is needed, there should be a centralized investigation so that people who were hand in glove with the corruption that has happened all of this while should be brought to book and should be thrown out of the system. That's when there will be actual justice for the students, not just the ones you're hearing right now, not just the ones who took lathis and tear gas today, but also the ones who continue to sit in agitation over there. For the time being, aap sabka bahut bahut dhanyawad yahan aane ke liye. और हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद.
2: थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.
0: Month of Savan, it is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
3: Hamara naam Suman Kumari hai, aur main Ranchi se hu. और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है. आज हमारे लिए, इन जेपीएससी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है. आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को, अपने बहनों को आके तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ.
0: तो क्यों, आपको क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
3: भाई लोग जा नहीं सकते हैं तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना ज़रूरी था.
0: If you just see the cross section of people who are over here, you've on the one hand got among the four people who are sitting on a fast unto death, you've got an Umme Habiba also, and you've got a Savita also, because it is across barriers, across caste, but pretty much the same class that they are fighting against, the class that is trying to get their dues, their rights, and just fight for a simple job. Habiba, pehle ye bataiye, aap kidhar se hain?
4: Ji, main Bokaro se hoon.
0: यहाँ पर आप क्यों इस आंदोलन का हिस्सा बने?
4: क्योंकि मैम, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है. सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं, इनफैक्ट पूरे झारखंड के बच्चे के अधिकारों का हनन किया गया है, दुरुपयोग किया गया है. संविधान हमें अवसर की समानता देती है, इक्वालिटी देती है, लेकिन हमारे अवसर को छीना गया है. आर्टिकल 16 जब हमें अवसर दे रहा है, यहाँ पे अवसर की समानता दे रहा है, जॉब करने, नौकरी करने की समानता दे रहा है, लेकिन ये लोग हमारे नौकरी को खा जा रहे हैं, हमारी अवसर को ये लोग छीन रहे हैं. तो ये सारी विडंबनाएं हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अभ्यर्थियों को मजबूरन यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा. और इतना ही नहीं, धरना प्रदर्शन आज हमारा यहाँ पे 17वां दिन होने को जा रहा है. लेकिन मैं बता दूं कि उतने दिनों से कुछ भी सरकार नहीं सुन रही थी हमारी. जो भी धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, इवन देन वो अनसुनी कर रही थी, और इसलिए हम लोगों को अनशन करना पड़ा. एक मात्र
0: आप यहाँ पर 17 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, घर वालों ने कहा नहीं कि भाई तबीयत बिगड़ जाएगी, लड़की हो वहाँ पर आंदोलन पर बैठी हो?
4: मैम, अनशन का आज हमारा 7वां दिन है, धरना प्रदर्शन का 17वां दिन है. तो मैं बता दूँ कि जब मैं प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, तब घर वालों की फैमिली को नहीं पता थी, मैं और मेरे भैया आए हुए थे कि नहीं लड़ना है इस बार. उसके बाद में फिर मम्मी पापा को पता चल गया, और अनशन जब कर रही थी ये चीज़ नहीं बताई थी. इनफैक्ट उन लोगों को कल पता चली है जी, उससे पहले उन्हें पता चली थी, मेरा एक वीडियो देखे थे वो लोग. डॉक्टर्स आए थे चेकअप करने के लिए, तो बता दिया था कि बेहोश हो गई थी. तो ऐसे चारे मतलब माँ बाप से झूठ बोलना पड़ रहा है इस करप्ट सिस्टम की वजह से. और मम्मी जब जान गई तो बहुत ज़्यादा निराश भी हुई, रो भी रही थी, क्योंकि वो एक पल अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती है. माँ की ममता ऐसी होती है. और पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पे अनशन पे हूँ, भूखी बैठी हुई हूँ, तो उनके दिल को कितनी आहत पहुँचती होगी. और मेरा कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं, क्या वो हमारे गार्जियन नहीं है? हम उन्हें अपना गार्जियन मानते हैं, अभिभावक की तरह मानते हैं, तो क्या उनके दिल को आहत नहीं पहुँच रही अभी तक से कि हमारे यहाँ राज्य के बच्चे भूखे पड़े हुए हैं? वो क्या हमसे आकर के वार्तालाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ रहे वो? हम चाहते हैं कि वो आए और हमसे वार्तालाप करें।
0: आपको लगता है कि सरकार को लग रहा है कि वो तोड़ देंगे, आपका मनोबल तोड़ देंगे, कितने दिन बैठोगे यहाँ पे, उसके बाद सब भूल जाएंगे?
5: ये मैम जो हम लोग ने भूख हड़ताल किया है, इस सर पर कफन बांध कर किया है कि यहाँ से जब तभी हटेंगे जब हम लोग के जीतने से चित होगी, क्योंकि हम लोग किसी का अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।
0: जब आप दिल्ली के जो प्रोटेस्ट थे वो आपने देखे, वो भी देखे मैंने, वहाँ पे भी बहुत लड़कियाँ थी, यहाँ पर कम हैं बट हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी लड़कियाँ हैं। जब आप उसको देखते थे और अपना प्रोटेस्ट देखते हो तो आपको क्या अलग लगता है?
4: जी अलग दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है बिल्कुल गांधीवादी तरीके से संवैधानिक है ना यहाँ पे, और एक चीज़ कि यहाँ पे जो हमने मर्यादा का ख्याल रखा हुआ है, जो एक संविधान भी ये कहता है कि किसी के लिए अभद्र लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ है जो हमारे जिसको हमने सत्ता में बैठाया है, जिन्हें हम अपना गार्जियन बनाया है, तो उनकी भी एक ओहदा है, इज्जत है, तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखा है, मर्यादाओं का ख्याल रखा है, तो बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है।
0: आपके लिए ज़रूरी क्यों था? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जगह जगह पर यहाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया हुआ है, मंच पर किसी प्रकार का राजनीतिक धार्मिक जातिगत वक्तव्य ना दें, मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, व्यवस्था में सुधार के लिए है, किसी को आरोपित ना करें, अब शब्दों का प्रयोग, ये इतना ज़रूरी क्यों था कि जगह जगह पर ऐसे पोस्टर लगाए?
4: जी बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पे इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी मजबूती है संविधान, क्योंकि ये संविधान हमें हक देता है जिससे हमारा हक हनन हुआ और हम उसी हक को लेने आए हैं, तो ये हक ही हमें संविधान देता है, और हक अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने का भी हक हमें संविधान देता है, तो हम पूरी तरह संविधान में दिए गए मतलब उनके जो बताई गई जो बातें हैं संविधान में, जिस तरह से चलने के लिए हमें जो रास्ता बताया गया हम उसी रास्ते पे चल रहे, एकदम बिल्कुल विशुद्ध गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से, तो इसलिए हमने ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है पूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट है।
0: आपके घर में आप पहली हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का कोशिश किया?
6: जी मैम, मैं तो पहली हूँ जो घर से निकल के बाहर पढ़ने का कोशिश की, और यहाँ पे जिस तरह पेपर लीक हो गया उस तरह मैं तो एक भी रिजल्ट नहीं कर पाई, अभी उम्मीद टूटा हुआ लग रहा है अब नहीं निकाल पाऊँगी। जिस तरह पेपर को बेचा जाता है खुलेआम, हम तो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, उस समय 2 साल तो कोरोना हो गया था, उसके बाद फिर इधर वैकेंसियाँ निकलने लगे, जितनी भी वैकेंसियाँ निकली 2021 के बाद सारी की सारी बिक गई, और 2021-22 की वैकेंसी अभी 24-25 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जब तक सीटें बिक नहीं जाती तब तक एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता मैम।
0: पापा आपके क्या करते हैं?
6: मेरे पापा किसान हैं।
0: तो घर में वो नहीं हुआ कि आप घर छोड़ के पढ़ने जा रही हो, सारी बाकी दीदी तो की तो शादी हो गई, आप अकेली नौकरी करने की?
6: मैम घर में हुआ था, मेरा घर तो यहाँ, मैं तो रांची में रहती हूँ, यहाँ टाउन में मेरा घर गांव तरफ है, तो मेरा घर में बोला भी गया था, समाज से भी हमको लड़ना पड़ा उस समय जब निकल रही थी, उस समय बोल रही कि लड़कियाँ यहाँ से भाग गई, और भाई भी बोला था कि तुम यहाँ पे रांची की हो और यहाँ बगल में सामने जाके उधर लॉज में जाके रहोगी, समाज क्या बोलेगा? हम बोले समाज कुछ भी बोले वो हमको ले दे के नहीं चलाता है, स्ट्रगल करना तो मेरा फर्ज है, और मैं इतना दिन से पढ़ी हूँ और ऐसे बिना इतना पढ़ी हो के और घर में बैठी रहूँगी तो मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं तो घर से भी लड़ी थी, समाज से भी लड़ी थी, बहुत स्ट्रगल की थी मैम, तब जाके यहाँ पे पहुँची थी, घर गांव तरफ सब बोल दिया था कि लड़की भाग गई।
0: एंड अगेन एंड अगेन यू नो मेनी पीपल आर सेइंग दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज सीन इन दिल्ली एंड व्हाट इज सीन इन झारखंड, इट्स एन अटेम्प्ट टू डिवाइड। नो, इफ देयर इज एनी वन मैसेज ऑफ यूनिटी यू सी हियर राइट ऑन दिस स्टेज वेयर पीपल फ्रॉम अक्रॉस कम्युनिटीज आर सिटिंग टुगेदर, बट वन थिंग दैट दे हैव इन कॉमन एंड एवरीवेयर ऑन दिस ग्राउंड और इवन अमंग द पीपल हु आर मार्चिंग टुवर्ड्स द विधानसभा, यू विल सी दिस हैपनिंग, अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट दैट हैज बीन स्पेल्ट आउट टू एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट, एंड दिस रियली स्टैंड्स आउट इन दिस प्रोटेस्ट। दे से डोंट गिव इट एनी पोलिटिकल, एनी कम्यूनल और एनी कास्टिस्ट कलर, धार्मिक राजनीतिक जातिगत वक्तव्य नहीं दें, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एजिटेशन दैट यू अडियर टू। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें, This is not about targeting any one individual, asking for any one person's resignation. You just heard the young lady. She said, we know that it is the chief minister who's going to answer our problems. So we request him to fix it, to not be arrogant, to not make it a matter

0: पूरा देखे लिए बॉलर देखे मेरा शर्ट देखे शर्ट से पूरा बांधे हुए थे। और इस तरह से अगर छात्र प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मर जाए, हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन तुम झारखंडी है कि नहीं है, बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या? 26 वर्ष हो गया झारखंड का लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते, बताइए हम लोग क्या करें।
1: आपका नाम?
2: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा।
1: चंडी बताइए क्या हुआ?
2: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम करने दीजिए, उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा। सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते इन लोग हट जाओ यार और सब ड्यूटी अपना निभाओ, हम लोग जीत रहे बोले आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं, इसलिए हट जाइए आप लोग, हट जाइए आप लोग।
3: Is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge. The water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे, फिर क्या हुआ?
4: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम। हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे, हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे। और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग डिसाइड किए हैं बैठने के लिए वहाँ पे बैठ जाइएगा, हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे, उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठी चार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दौरान हमको भी चोट लगी है, दो तीन जगह इधर भी पैर में भी मारा है, पीठ में भी, देखिए यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है, देखिए कट भी गया है। मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से हम लोग छात्र हैं और किसी भी
3: आपको पैर में लाठी मारी है।
4: हाँ ये देखिए पूरा लाल है, ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के जब हम लोग बोल दिए पीसफुल तरीका से तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है?
3: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले।
4: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया है, हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही तो जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही, हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है।
3: Okay, so they've actually, okay, they've got videos over here. Here they're showing somebody who has been hit on the back. Earlier we had met somebody who was being taken away in an ambulance. Here they're showing. All right, so there's this young man who was hit on the back and is lying unconscious on the road, hit by a water cannon.
5: Police ne chala karke lathi, matlab hum log daula karke lathi charge kiye ma'am. इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे।
3: सो दे आर शोइंग एविडेंस, दे आर सेइंग दैट वी वर ट्राइंग टू गेट पीपल टू सेटल डाउन, व्हिच इज व्हेन द लाठी चार्ज स्टार्टेड अनप्रोवोक्ड। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी ओवर हियर विल बी दोज हु आर वॉकिंग अराउंड विद अ ट्राइकलर। इन द डिस्टेंस ऑल्सो द वन इमेज दैट विल स्टैंड आउट इज दैट ऑफ अ ट्राइकलर। व्हाइल वी आर वॉकिंग देयर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ जस्ट हाउ बिग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द पुलिस इज ओवर हियर।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
6: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्मनी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: देश का टायर, जेके टायर। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस, मोदो एलीट।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: threats.
1: War-struck country, a
0: hard
1: country.
0: Questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France, in Italy.
1: At Srinagar.
3: I am Mr. France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: कौन?
5: बच्चे हैं?
6: तीन साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous log jam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दे, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा है. पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं.
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए.

0: बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेपन ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
1: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी, जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के ले आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को सदन को बाधित कर रहे हैं और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: नाउ मिस्टर अमित शाह सडनली सेइंग दैट ही इज रेडी टू स्पीक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज फैंटेसी कॉन्वर्सेशंस और डिडंट ऑथराइज द शूटिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन। फर्स्ट ही शुड मेक दैट अबंडेंटली क्लियर। After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
3: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
4: So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
3: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
5: यहाँ पे हाउस नहीं चलने दे रहे, आज चार बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, एफ सी आर ए हो, डिलिमिटेशन।

0: हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है।
1: Main thing is to look at the text, see how they modified it, and then we'll decide what needs to be done. I think our principle at the moment is very clear. What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
2: For this FCRA issues, with one voice, I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities, and whatever the leader said in the beginning still continues.
3: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया। अगर 10 साल में 1,00,000 करोड़ आया होगा एफसीआरए में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं। तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है।
4: And now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the state assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
5: பேசنا வர்ற ஓசை மட்டும் இல்ல, திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ் ஒரு மொழி மட்டும் இல்ல, அது நம்ம உயிர், அது நம்ம உணர்வு. நம்மள பெத்த தாய அம்மானு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ள தோணும்ல, அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படிதாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ்மொழி இப்படி சொல்கிறதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறோம். 70 பற்றி இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லேயும் கல்வி நிறுவனங்கள்லேயும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாகவே இருக்குது, அதுக்கான அரசாணையும் இருக்குது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால் தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது.
4: Right, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
6: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked, en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know, that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal. Trinamool Congress, including Trinamool Chief and the former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has alleged it was a planned assassination attempt on her. However, Chief Minister of West Bengal day after this, this very shocking incident unfolded in North Chobbish Parana, himself visited the same place and also met the family, reassured all kind of stalked action against the perpetrators with regard to the alleged custodial death of a TMC worker, and said that there was no involvement of Bharatiya Janata Party worker as per the attack on Mamata Banerjee's vehicle is concerned. What we know, an elaborate security arrangement has been done over here following this incident, but it is simmering the politics in Bengal as very shockingly Mamata Banerjee, for the first time while she stepped out of Kolkata, her vehicle came under attack on Sunday. With camera person Ruth Tripathi, this is Riktik for NDTV.
7: चेरी बेल वो है मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटक किया अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता हम लोग सब मर जाता ऐसा पुलिस के सामने में हुआ हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा
8: पुलिस क्या कर रहा है इतना
7: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है
9: ढुके जयचंद जी রকাপে মেরে দিয়েছে বিজেপি মেরে দিয়েছে তৃণমূলের সম্পদ আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই লকআপে ছিল সেই অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছেন অসুস্থ বিচার চাই এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না তার বাড়ির লোক বলছে আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম যেটা তো উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে আমাদের নির্দেশ আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন বয়সও হয়েছে উনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং উনার সম্মান রাখা উচিত সে কাজ পুলিশ করেছে পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি তো উনাকে বলবো আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো এই কাজগুলো করবেন আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায় আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায় আপনি নিশ্চয়ই করুন আপনি অহেতু এখন উন্নয়নের সময় এই সময় আপনি দয়া করে কোনো জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
4: If you're planning your next travel by Air India, this story will be of umpteen importance to you. Well, the probe into Air India turbulence incident involving the flight AI2379 is widening, with both Indian and the French air accident investigation bodies now set to join the probe. Airbus, remember, will also support the turbulence investigation, providing technical assistance by sending a team of specialists. It was earlier Air India which had written to Airbus flagging the issues reported by the pilots during the flight. The airline in a statement had said that the investigation is being conducted under the Accident Investigation Bureau and that it will extend full cooperation in the probe. Meanwhile, questions remain over the pilots' medical test. The Civil Aviation Ministry said yesterday that the pilots were tested as per prescribed norms. The result of the pilot in command requires a retest with the sample sent to a laboratory for confirmation. For now, the investigation is widening on multiple fronts, from the aircraft's sudden plunge to the turbulence encountered mid-air and now the questions surrounding the pilot's test results. Everything will be cleared once the result of the second test is out. But let's also tell you about what happened 4 days ago. This incident stemmed on August 4 when an Air India flight from Phuket to Delhi was cruising normally. And suddenly, the aircraft plunged about 300 feet. There were passengers, crew that were thrown around. There were several people who were injured. And the flight eventually landed safely in Delhi. But what happened in those few terrifying moments is now under investigation. Here's a detailed report on all that's happened so far.
8: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 1000 फीट नीचे गई या क्या हुआ।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at
1: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
2: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
3: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है

0: तो मुझे निरंतर नाम से नफरत हो गई है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
2: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे।
1: पक्का?
3: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया।
1: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
4: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
5: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव, मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
6: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
7: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
8: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मिला, मेरा बर्थडे था तो आज सर की
7: बहुत बधाई। वाह।
8: ये ओनली 1 kg सर।
9: लगता है।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दे, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा है. पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं.
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए. मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है. गृहमंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है. मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको,
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं. उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है. पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी. जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के ले आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े. देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो. आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं.
4: Now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
0: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills, and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
5: So actually, before I respond to the discussion points, These are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
0: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
1: यहाँ पे हाउस नहीं चलने दे रहे। आज चार बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। FCRA हो, डिलिमिटेशंस हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉशआउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है.
6: Main thing is to look at the text, see how they modified it, and then we'll decide what needs to be done. I think our principle at the moment is very clear. What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
7: For this FCRA issues, with one voice, I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities, and whatever the leader said in the beginning still continues.
8: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा. लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया. अगर 10 साल में 1,00,000 करोड़ आया होगा FCRA में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है उसके, नियम फॉलो करते हैं. तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है.
0: And now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the State Assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
9: பேசன வர ஓசை மட்டுமல்ல, திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, அது நம்ம உயிர், அது நம்ம உணர்வு. நம்மள பெத்த தாய அம்மான்னு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ள தோணும்ல, அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படி தாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ் மொழி இப்படி சொல்றதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறோம். 70 பற்றி இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லையும் கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாகவே இருக்குது. அதுக்கான அரசாணையும் இருக்குது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால் தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது.
0: right, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
10: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know, that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal. Trinamool Congress, including Trinamool Chief and the former Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has alleged it was an planned assassination attempt on her. However, Chief Minister of West Bengal, day after this this very shocking incident unfolded in North Chobbish Parana, himself visited the same place and also met the family, reassured all kind of stalked action against the perpetrators with regard to the alleged custodial death of a TMC worker, and said that there was no involvement of Bharatiya Janata Party worker as per the attack on Mamata Banerjee's vehicle is concerned. What we know, an elaborate security arrangement has been done over here following this incident, but it is simmering the politics in Bengal as, very shockingly, Mamata Banerjee, for the first time while she stepped out of Kolkata, her vehicle came under attack on Sunday. With camera person Anirudh Tripathi, this is Riktik for NDTV.
11: टेडीबेल वो है मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंट्री पोर्शन पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटक किया अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता हम लोग सब मर जाता ऐसा पुलिस का सामने में हुआ हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा
12: पुलिस क्या कर रहा है इतना
11: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है
13: ढुके चैतन्य রকাপে মেরে দিয়েছে বিজেপি মেরে দিয়েছে তৃণমূলের সম্পদ আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই লকআপে ছিল সেই অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছেন আমার সুস্থ হয়ে বিচার চাই এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না তার বাড়ির লোক বলছে আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম যেটা তো ওনার পাওয়া উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে না আমাদের নির্দেশ আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন বয়সও হয়েছে ওনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ওনার সম্মান রাখা উচিত সে কাজ পুলিশ করেছে পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি তো ওনাকে বলবো আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকব এই কাজগুলো করবেন আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায় আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায় আপনি নিশ্চয়ই করুন কিন্তু আপনি অহেতু এখন উন্নয়নের সময় এই সময় আপনি দয়া করে কোনো জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়
0: If you're planning your next travel by Air India, this story will be of umpteen importance to you. Well, the probe into Air India turbulence incident involving the flight AI-2379 is widening, with both Indian and the French Air Accident Investigation bodies now set to join the probe. Airbus, remember, will also support the turbulence investigation, providing technical assistance by sending a team of specialists. It was earlier Air India which had written to Airbus flagging the issues reported by the pilots during the flight. The airline in a statement had said that the investigation is being conducted under the Accident Investigation Bureau and that it will extend full cooperation in the probe. Meanwhile, questions remain over the pilots' medical test. The Civil Aviation Ministry said yesterday that the pilots were tested as per prescribed norms. The result of the pilot in command requires a retest with the sample sent to a laboratory for a confirmation. For now, the investigation is widening on multiple fronts, from the aircraft's sudden plunge to the turbulence encountered mid-air and now the questions surrounding the pilot's test results. Everything will be cleared once the result of the second test is out. But let's also tell you about what happened 4 days ago. This incident stemmed on August 4 when an Air India flight from Phuket to Delhi was cruising normally. And suddenly, the aircraft plunged about 300 feet. There were passengers, crew that were thrown around. There were several people who were injured. And the flight eventually landed safely in Delhi. But what happened in those few terrifying moments is now under investigation. Here's a detailed report on all that's happened so far. This is the Air India Phuket to Delhi flight at the center of a growing aviation controversy. On August 4, the aircraft encountered severe turbulence during its journey to Delhi. The aircraft suddenly lost approximately 300 feet altitude. For passengers inside the cabin, it was a terrifying few minutes. Several passengers and crew members were injured, with some crew members suffering serious injuries.
12: It was a very chaotic situation. I could see everyone was bruised, bleeding, or with a broken arm or a leg or something like that. It was the worst moments of my life. I've never encountered something like or anything like this. And I pray to God no one ever has to be in this situation ever.
14: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हजार फीट नीचे गई या क्या हुआ, मैं एकदम से ऊपर जाके लगा फिर नीचे आया. पता नहीं वजह समझ ही नहीं आई हमें, ना बताया गया कि क्या वजह था.
15: एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया. उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई.
0: द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली इन दिल्ली, बट द इंसिडेंट वाज सीरियस इनफ फॉर एविएशन अथॉरिटीज टू लॉन्च अ प्रोब. द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, व्हाइल द डीजीसीए हैज आल्सो स्टेप्ड इन. Both pilots were taken off flying duties pending the investigation, and then came another twist. As a part of mandatory post-flight procedures, the pilots underwent screening for psychoactive substances. The initial screening of the captain was reported as not negative. That does not mean the captain has failed a confirmed drug test.

0: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
2: मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है, तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
3: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? उस मैप पर नजर जाना, मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद।
4: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
3: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण,

0: जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
1: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे।
0: पक्का?
2: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया।
0: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर।
0: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
4: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
0: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
5: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
0: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: ये लगातार 3 बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
7: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की
6: बहुत बधाई।
7: ब्राव यार, ये ओनली 1 kg सर।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दे, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है।

0: चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा।
1: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के ले आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को सदन को बाधित कर रहे हैं और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: नाउ मिस्टर अमित शाह सडनली सेइंग दैट ही इज रेडी टू स्पीक, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज फैंटेसी कन्वर्सेशंस। वी आर इंटरेस्टेड in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
3: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
4: So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
3: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
5: यहाँ पे house नहीं चलने दे रहे। आज चार bill introduce हो रहा है। FCRA हो, डिलिमिटेशन हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है।

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
1: मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
2: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
4: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई
2: पक्का
5: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
2: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
6: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
2: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
7: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
2: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो हंसी मजाक मस्ती का मूड ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं भीतर से देश का भाव मैं सच बताता हूँ ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया पर दोनों के सर लग गए आपस में तो दोनों के लग गए कट वो फाइट तो मैं जीत गया उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी मिले थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ वहाँ बोलो मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
2: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आप विश्वास कीजिए, आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
8: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
9: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की
8: बहुत बधाई।
9: ये

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: Celebrating excellence across journalism.
1: NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the biggest story of the day, the buck stops here. And today, the buck will stop at the door of the Hemant Soren government in Jharkhand. The day saw students who were protesting against the irregularities that have taken place in entrance exams. They are saying that there has been a large-scale irregularity, jobs have been sold. They marched to the Vidhan Sabha with a huge face-off where there was lathi charge, tear gas shelling was done. There was even students who said that they had been beaten completely unprovoked. And now the question being asked is, despite all the action that has been taken, yes, you had the chief of the JPSC who was arrested today. Yes, you've got the entire commission being dissolved after the resignation of three members. And yes, the chief minister has said that we are willing to have any further investigation. A preliminary FIR or an ECIR has also been filed by the Enforcement Directorate. But the main question, the distance between Jantar Mantar and Jharkhand. If a lathi charge by the police was bad in Delhi, how can it be acceptable in Ranchi? Joining us today from the stadium where for close to 3 weeks now, students have been sitting on dharna demanding their rights. Joining us is Alok Dubey, who is a leader of the Congress in Jharkhand. We also have Ashok Barak, who is a leader of the BJP. And we have an audience of students. The students, the supporters that they have got over here, people who have appeared for the JPSC, who have problems, who have complaints with the entire examination system. Let's begin by asking Alok Dubey ji. लोग तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने आज तो ट्वीट करके ये भी कह दिया कि जो रांची में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पर ये कंडेम करके क्या होगा? आप तो सरकार में ना है यहाँ पे
2: मैडम। एक तो सबसे पहले आप बिल्कुल रॉन्ग बोल रही हैं। छात्रों को यहाँ आंदोलन करने का पूरी आज़ादी है। आज 17 दिन हो गए संवेदनशीलता का एक एग्जाम्पल दिया है झारखंड की सरकार ने, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ के बच्चों ने कि हमें संस्कार भी मालूम है और हमें राजनीति को समझना है और बच्चों की समस्याओं को। अगर लाठी चार्ज की बात होती तो बच्चे विधानसभा कैंपस के 100 मीटर अंदर तक पहुँच गए थे। ये संवेदनशीलता है प्रशासन की कि
1: लाठीचार्ज तो 100 मीटर से पहले ही
2: 6 ब्रैकेटिंग तोड़ने के बावजूद और यहाँ तक कि आंदोलनकारी बच्चों का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उपद्रवी लोग घुस गए थे जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की।
1: यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ पर विधानसभा में मौजूद थे। कौन कौन थे विधानसभा में वहाँ पर? क्या वहाँ पे उपद्रवी थे जो कि घुस गए थे?
3: नहीं, हम लोग वहाँ नहीं थे।
4: ये चला है और लाठी चार्ज भी हुआ है वहाँ पर, हम गए थे।
5: गिरा है, गोलामारी
4: है,
1: नहीं एक सेकेंड, वहाँ पर लाठी चार्ज जो हुआ है आप बताइए क्या संवेदनशीलता थी?
5: नहीं, लाठी चार्ज हुई है, आंसू गैस भी छोड़े गए हैं, मेरे पास वीडियो है, आप बकायदा देख सकते हैं छात्रों के साथ। ये देखिए, आप वीडियो देखिए, क्लियरली आपको सेलिंग देखिए।
1: नहीं नहीं, पर वो हाँ टीयर गैस शेलिंग तो हुई है, पर ये
5: चार्ज का भी मैं आपको वीडियो
1: हाँ, पर वो तो कह रहे हैं क्योंकि कुछ उपद्रवी छात्र थे, कुछ उपद्रवी लोग थे, घुस गए थे।
5: अब कुछ लोगों के कारण सबको तो नहीं पीटा जा सकता ना, अब थे कि नहीं थे ये कौन जानता है।
1: बताइए आलोक जी, आप कह रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाई गई है, वो पूछ रहे हैं कि आपने शुरू से ही जब तीसरा बैरिकेड टूटा लाठियां क्यों मारनी शुरू कर दी?
2: 6 ब्रैकेटिंग टूटा और संवेदनशीलता की इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कि एक हवा में टीयर गैस छोड़ना और एक पैलेट गन से टारगेट करके छोड़ना, देयर इज ए बिग डिफरेंस।
1: वो गलत है तो ये भी सही।
2: मंत्र में जो हुआ था वहाँ बच्चियों के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसमें डंटा मारा गया था, और यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ आंदोलन आगे करके गेट तोड़ते चले गए, यहाँ के जिला प्रशासन ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन एक वो कार्रवाई नहीं थी। वो बताया गया कि आपको एक सेंसिटिव जगह है विधानसभा, जहाँ 100 मीटर की दूरी पर आप पहुँच रहे हैं।
1: ये सेंसिटिव तो संसद भी है ना, सेंसिटिव तो पार्लियामेंट भी है,
2: बिल्कुल है।
1: तो पार्लियामेंट में जब मार्च जा रहा था तो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे थे?
2: हम तो बोल रहे हैं कि हमने जो रोकने की कोशिश की है, हमने बच्चों के साथ कोई अमानवीय और बर्बरतापूर्वक कार्रवाई नहीं की है। ये 17 दिनों का उदाहरण है।
1: अच्छा, कोई अमानवीय बर्बरतापूर्वक कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जब बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर पहुंच गए तभी पुलिस ने रोका।
3: देखिए, आज जिस प्रकार से झारखंड में जो घटनाएं हुई है ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। एक तरह से डेमोक्रेसी को कुचला गया है इस सरकार के द्वारा में। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज युवा शक्ति छात्र शक्ति जब अपने हक हुकुम को लेकर, अपने न्याय मांगने को लेकर, जब हजारों लाखों की तादाद में वो भी जेन्युइन मांग को लेकर विधानसभा मार्च करते हैं, और भी पूरी की पूरी शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने जेन्युइन मांग, वो मांग क्या थी कि जेपीएससी जेएससी में जो
1: देखिए फोटो दिखा रहे हैं, वो अपने व्हाट्सएप पे फोटो लेकर के आए हैं, क्या दिखा रहे हैं?
3: एक भी झंडा आज का कोई कार्यक्रम में पूरे नेशनल टेलीविजन में एक भी झंडा नहीं था। ये पुराना फेक एडिट करके बनाया गया है, और मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेस अलग अलग स्टेट में इनके सिद्धांत और इनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। आज राहुल गांधी जी से यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो 16 दिनों से छात्र यहां अनशन कर रहे, वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी तुम कब आओगे, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए जंतर मंतर का मंतर जयपाल सिंह मुंडा आते आते हो जाता है छू मंतर। ये डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और जितने विपक्षी लोगों को, देश के छात्र देख रहे हैं कि किस तरह से आज
1: बताइए आप कह रहे हैं पत्थर चल।
2: देखिए, यहाँ सब काम राहुल गांधी को नहीं करना है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के बच्चों को जिन्होंने शालीनता, सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन किया, और उस शांतिपूर्वक आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी परेशान करना चाहते थे।
1: एक सेकंड, बात रखिए, एक तो रास्ते में मत आइए, रुकिए। आप गए थे वहाँ पर मार्च में गए थे, आप अपनी बात रखिए, आप वहाँ पर मार्च करते हुए गए थे, क्या आपके ऊपर वाटर कैनन हुआ?
6: देखिए

0: ये वाटर कैनन आंसू गैस चलाया गया है, ठीक है, मेरा आग में भी अभी मतलब लहर रहा है। हम यही ये चीज मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का न्याय की बात हो, न कि आरोप और प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप के लिए ये मंच नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का हर मुद्दे पे न्याय होना चाहिए। जितने भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे मतलब सीट बेचा गया हो, चाहे पूरा एकदम भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सबका न्याय होना चाहिए। बस
1: देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाराज हैं, जो लड़के हैं नाराज हो रहे हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो कि छात्रों की बात होनी चाहिए, छात्रों की बात होनी चाहिए। आप किधर से आए?
2: मैं स्टूडेंट हूँ, मैं किसी के साइड से आया नहीं।
1: अरे किसी जगह से आए होंगे?
2: मैं ये रांची में रहता हूँ।
1: आपका जो आज मार्च हुआ था उसमें लगता है कि कुछ हासिल हुआ?
2: हासिल ये हुआ है कि छात्र जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे थे, है ना, वो उन्होंने मतलब जो आज शांतिपूर्ण चीजों को करा, ये नहीं बोलूंगा कि हाँ ठीक है लाठीचार्ज हुआ चीजें हुई, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा कि यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे बट एक दूसरे से वहाँ क्या हुआ, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लग रहा ना मेरे को।
1: शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था पर उसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, क्यों
2: लाठी चार्ज हुआ मैं मानता हूँ वो गलत हुआ, बट आप यहाँ पे आकर के ये चीज जो कर रहे हो ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रहा।
1: आइए आगे चल के लेट्स गो बैक एंड वॉच।
3: कौन नहीं बैठा?
1: जो आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि जो यहाँ पर हुआ झारखंड में वो गलत हुआ, वो कह रहे हैं कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए।
4: देखिए छात्रों की भावना है, यहाँ जितने छात्र हैं सबकी भावनाएं हैं कि छात्र हित की बात होनी चाहिए। हम शुद्ध 100% 24 कैरेट गोल्ड के साथ हम बोलेंगे कि छात्र हित की यहाँ चर्चा होनी चाहिए। हम भी इनकी बात से सहमत है। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस अभय तिवारी जो 10 से 13 परीक्षा पास करता है, ब्लैकलिस्टेड एजेंसी TDPL के माध्यम से जो 13-13 एग्जाम कराता है, अपने पत्नी अपने भाई और अपने साला को परीक्षा में पास कराता है, नौकरी लगाता है और खुद रैंक 2 लाकर यहाँ अधिकारी बन बैठता है, तो छात्र की मांग वही है कि जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा, आदिवासी बुलवासी का बच्चा, जब गांव देहात से माड़ भात साग रोटी खाकर, जब जमीन गिरवी रखकर पढ़ता है लिखता है, जब एग्जाम लिखता है, तो अभय तिवारी जैसे लोग सीट को खरीद के वो आदिवासी बुलवासी वो किसान गरीब का बेटा का सपना को चकनाचूर करने का काम करता है। तो छात्र की मांग यही है कि TDPL को रद्द करे, JPSC SSC 2019 से लेकर
1: जब आप कूद जाते हैं ना बीच
4: पूरी रद्द करे और CBI जांच की मांग होनी चाहिए।
1: जब आप बीच में कूद जाते हैं तो लोगों को डर लगता है कि उसका राजनीतिकरण हो जाए।
4: कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा है, हम छात्र हित के लिए हैं, थे और भविष्य में भी रहेंगे।
5: 2014 से 2019 के बीच में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आज उनका बयान आपके TV पर सुन रहा था। 5 साल में जो मुख्यमंत्री एक JPSC एग्जाम नहीं कर पाता है वो नैतिकता की बात करता है? अगर JPSC को बर्बाद करने का किसी को श्रेय जाता है तो 2 मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया JPSC में, संथाल परगना के 20 में 16 लोगों को भर्ती करवाया इन दोनों ने, लेकिन हम उसको जस्टिफाई ये नहीं करते हैं कि अगर सरकार ने किया तो हम भी यही करेंगे।
1: तो आलोक जी आप ऐसा कीजिए ना,
6: सरकार कहते हैं इसको वाटर बॉटरी कहते हैं। आपको एक बात बता दूं, बात हमेशा वर्तमान समय की होती है, सत्य बताता हूँ। लास्ट सेवन ईयर्स 22 पेपर लीक हुए मैम, जो आप देही से बचने के लिए इस सरकार में ये हुआ, इस सरकार में 7 साल में 22 पेपर लीक हुए हेमंत सरकार सोरेन की सरकार थी। आज सर आप जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं ना, साफ साफ लग रहा है कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं।
1: एक काम कीजिए, अकाउंटेबिलिटी आप ही की नहीं हर सरकार की होनी चाहिए, आप CBI का इन्वेस्टिगेशन करा के भाजपा के लोगों को भी जेल में डलवा दो ना, डलवा दो आप उनको।
5: CBI का इन्वेस्टिगेशन 2 JPSC में हुए, वो रिजल्ट अब तक नहीं आए और वो सुप्रीम कोर्ट में है। भारत की सरकार कह दे कि CBI के जो है रिजल्ट जो 2 JPSC के हमारे पास आए हैं हम उसको जारी कर देते। रह गई CID की बात, CID ने सरकार ने आंदोलन में आने से पहले बच्चों के लिए,
6: बात बच्चों की होनी चाहिए, बात ट्रांसपेरेंसी की होनी चाहिए, बात अकाउंटेबिलिटी की होनी चाहिए। आप हर बार दूसरे लोगों को बीच में लाकर हर बार मुद्दे से भटक
1: बच्चे की बात
7: आई हैव बीन अ स्टूडेंट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ वेरी

0: वेरी डिसेंटली आप लोग पहले शांत रह ली, ठीक है? आई अभी मैं वहां से आ रहा हूँ, अभी हम लोग जहाँ पे विधानसभा में गए हुए थे, आई हैव बीन देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, और जब वहाँ पे जो छात्र नेता वहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद 6 बजे जब बारिश होनी शुरू होती है तब हम वहाँ से लौट रहे हैं. आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई हैव बीन विटनेसिंग इट सिंस. प्रॉब्लम ये है ना सर कि हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम सरकार का सहायता चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है ना, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कौन है. हमारा क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी से. आखिर जेपीएससी के चेयरमैन किसी सरकार के आदमी नहीं थे, ये अभय तिवारी किसी सरकार के आदमी नहीं है. अगर ये सरकार के आदमी नहीं है तो आज अगर सरकार ये बात बोलती है कि जेएसएससी के जो भी लोग आज रिक्रूट हुए हैं उनको बुरा लगेगा या भला लगेगा, या जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है ये रद्द नहीं हो सकता है, तो ये सरकार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सरकार हमारे साथ खड़े होने चाहिए. हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार आप हमारे साथ खड़े हो, एंड यू अगेन क्वेश्चन ऑल दिस ब्यूरोक्रेसी, या कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, कुछ भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए ना, तभी तो हम आपको कल अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह आइडेंटिफाई करेंगे. आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं हमारे, आप तो हमारे अगेंस्ट हो रहे हो, आप हमारे पर क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो?
1: बहुत बढ़िया बोला. नाम क्या है?
0: चंदन.
1: चंदन बताइए. चंदन ने सभ्यता से बहुत शालीनता से अपनी बात रखी और वो ये कह रहे हैं, देखिए कई जगह होती अगर राजनीति करनी होती तो कहते फलां इस्तीफा दो, धमाका सरकार गिरा दो. ये कह रहा है सरकार आप हमारे साथ खड़े होकर के बस हमारी नौकरी एक पारदर्शी तरीके से हमें दिलवाइए. उसमें अगर आप राजनीति करके इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मान लीजिए ना एक पारदर्शी तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए.
2: 2 मिनट का मुझे भी विनम्रता से बोलने की इजाजत दीजिएगा. आंदोलन में जाने से पहले सरकार ने सीआईडी गठित की, चेयरमैन इस्तीफा दिए, आज चेयरमैन सलाखों के पीछे हैं. 4 मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, बच्चों के साथ 4 मरतबा राउंड टेबल पर बैठक हुई. सरकार ने कहा 23
1: इन बच्चों के साथ दो बार
2: दूसरों 23-25
1: बाकी अब एनएसयूआई के साथ बैठेंगे तो वो बैठक किसी काम की
2: पहले से सब कुछ जान के बैठे हैं. मुझे बोलने भी दीजिए. 23-25 का बैकलॉग और 2000 ये आपका 14वां जेपीएससी, सरकार ने बोल दिया कि हम इसको ख़त्म करते हैं. अब रह गया आपका कि जो सीजीएल और जेएसएससी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वो मामले चल रहे हैं.
1: छोटा सा सवाल पूछती हूँ, ठीक है? एक सेकंड ये बोलेंगे. हाँ एक सेकंड ये बोलेंगे अभी इसके बाद. मैं एक छोटा सा चीज पूछती हूँ. ये तर्क जो है ना दिल्ली में भी दिए जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, हमने रीनीट करा दिया. वहां पर सैद्धांतिक तौर पर एक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो सरकार ने कहा ठीक है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे. यहाँ पर एक सैद्धांतिक तौर पर वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई का जांच करा लीजिए. दूध का दूध पानी का पानी, जो बीजेपी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए, जो आपकी सरकार में धांधली हुई है उसको भी जेल में डालिए.
2: बहुत अच्छा,
1: ये उनकी मांग.
2: बहुत अच्छा सवाल किया मैंने आपने मैडम. वो सरकार काउंटेबल नहीं है जो बच्चों की बात नहीं सुन रही है. जो सरकार बच्चों की बात सुनने को तैयार है, जो सरकार बच्चों के लिए काम करने को तैयार है, जो सरकार मंत्री बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, पूरी जेपीएससी भंग कर दी गई, सलाखों के पीछे चले गए.
1: यहीं पे आप पलट गए ना अभी अच्छी खासी. एक सेकंड ये बोला,
0: इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे ये जो 3 टीयर्स हैं वो डिवाइड होती है. इसमें बहुत सही तरीके से डिवीजन है जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिवीजन है. हमारा प्रॉब्लम लेजिस्लेचर से है ही नहीं. हम चाहते हैं लेजिस्लेचर हमारे साथ आए ताकि हम एग्जीक्यूटिव्स को उनके अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकें. हम कहीं पे भी लेजिस्लेचर को ना ला रहे हैं, ना उनसे किसी भी तरीके से हम ना उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनसे जवाब चाहते हैं.
1: आप मुझे बस इतना बताइए, अभी अगर जांच होगी तो ये दूर तक जाएगी, तब मत बोलिएगा कि बीजेपी के खिलाफ विछंड क्यों हो रहा है. आप ये खड़े होने के लिए तैयार हैं छात्रों के साथ कि फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो आपकी सरकार में हुआ है उसकी भी जांच हो, जो इनकी सरकार में हुआ है उसकी भी.
3: देखिए इसमें कोई बोलने वाली कोई बात नहीं है. मैं एक झारखंडी हूं और मैं ट्राइबल आदिवासी झारखंडी हूँ और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस चीज़ से प्रभावित मेरा परिवार के लोग भी है. तो हम एक बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, एक झारखंडी होने के नाते और एक झारखंडी युवा होने के नाते युवा भावनाओं के अनुरूप ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए. आज क्यों आज लाखों की तादाद में छात्र मार्च निकाले, क्योंकि

0: वार्ता तो सरकार से हो रही थी, सरकार से जब वार्ता हो रही थी तो टेबल पे कौन सा ऐसा मामला कर फंसा कि जिसको लेकर आज छात्र बारिश में भींगे भींगे लाठी खाए, टीआरएस के घास आंसू छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर उनको आतंकवादी गुरुजी सब मारा गया। इसलिए क्योंकि झारखंड में जितने भी पेपर हुई है सभी की सीबीआई जाँच होनी चाहिए और ये सरकार सीबीआई जाँच से भाग रही है।
1: ठीक है, और एक चीज जो है, एक पैमाना वैसा ही होना चाहिए, लाठी अगर कोई उपद्रवी हो तो उसके ऊपर आप करें तो एक सेकंड, ये मैं इनसे पूछ लेती हूँ, आप अभ्यर्थी हैं?
2: मैं अभ्यर्थी से त्रस्त हूँ, मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मैं 2-3 बार एसएससी का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ जिसका आज तक रिजल्ट नहीं आया, मैं उस चीज़ से मैं

0: सबसे पहली बात कि अगर ये दो राउंड की बात हुई है, अगर ये फर्स्ट राउंड में ही हमारी बातें मांग पूरी हो जाती तो हमें आज विधानसभा घेराव करने का जरूरत नहीं पड़ता। पर सरकार ये मांग चाहती नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये दिन पर दिन टाइम लेते जा रही है।
1: तो देखिए मैम, पहले तो बात ये है कि जो सरकार है, आप ऐसे सोचिए, सरकार हमारी दुश्मन नहीं है या फिर ना हम सरकार के दुश्मन हैं। सरकार को हम ही ने चुन के लाया था, हमें इन पे पूरा भरोसा ही टूट गया है। एक भी जैसे 26 साल हो गए झारखंड को आज़ाद हुए, होने चाहिए 26 जेपीएससी, लेकिन चल कितने रहे, 14। आप उसको समझिए, हमारी लड़ाई किस चीज़ से, पूरे सिस्टम से लड़ाई है। अगर मान लिया आज कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल की बात हो रही है, कर देते हैं, दोबारा क्या गारंटी है कि ये सही से करेंगे, ये भी एक डर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को काम है कि जो सिस्टम के अंदर है उनको पहले साफ करें, और उसके बाद जो चोरी हुई है उसको रद्द करें। बस
2: एज अ वॉइस ऑफ स्टूडेंट, एज अ वॉइस ऑफ यूथ, हमारा यही आवाज़ है कि हम किसी भी पार्टी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हम एक पर्टिकुलर रिफॉर्म लाना चाहते हैं जिसमें हर एक पार्टी, हर एक गवर्नमेंट, हर एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये बात को, अगर उनके पास पावर हमने दिया है तो वो जरूर पहुंचाए और ये चेंजेस जरूर विधानसभा पे भी लाया जाए और चेंजेस भी लाए जाए।
3: मैम, आज झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गया है और झारखंड एक युवा झारखंड है, और इस युवा झारखंड में मैडम 26 साल में 26 जेपीसी होना चाहिए था, लेकिन केवल 8 जेपीसी हुआ है। केवल सिर्फ उसको लेयर में बढ़ा दिया गया है कि एक साथ हमने 3 कर दिया, 4 कर दिया, लेकिन उतना नहीं हो पाया मैम। और इस बीच में मैम, जो हम लोगों ने सरकार से वार्ता बार बार करा तो सरकार ने हमारे कुछ मतलब जेन्युइन मांग को भी फुलफिल नहीं करा।
4: पर अब आज के बाद क्या होगा? अब आज तो जो अगर
3: मांग है मैम कि TDPL कंपनी के द्वारा जितने भी
4: एग्जाम तो है आपकी, ठीक, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम गुलाम हुसैन।
4: हाँ, क्योंकि अब जब आपने मार्च निकाला, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने इसको भंग कर दिया है, तीनों मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। मार्च में जहां तक सवाल था, आप मार्च, आपको रोक दिया गया, अब आगे क्या करो?
3: मैम अभी आमरण अनशन चल ही रहा है, हमारे अनशन में बैठे दो बहने, दो भाई बैठे हुए हैं, जब तक मांग पूरा नहीं होगा ना, कोई आमरण से उठेगा नहीं।
4: बताइए दुबे जी, अब
5: ये तो 10 साल से, जितना साल से हो रहा है धांधली, या तो सीट बिकना या तो एग्जाम रद्द होना, ये तो पिछले हमेशा से यही हो रहा है ना।
4: अब अगर आप इनकी बात सुनेंगे, एक सेकेंड, अब आपने सारी आवाजें सुनी, इन्होंने कहा है कि आप भले से ही इनका मार्च रोक लेंगे, अनशन पे तो ये बैठे रहेंगे ना, कभी तो आगे आ करके आपको इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी।
6: मैडम फिर आप बास्ट होके बोल रही हैं। बच्चों को कभी भी आंदोलन करने से नहीं रोका गया है, कभी भी नहीं रोका गया है। बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं।
7: आज अगर आंदोलन से नहीं बच्चों को रोका गया तो आंसू गैस क्यों छोड़ा गया?
6: गलत बात मत करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पार्टी के द्वारा नहीं आने के बावजूद मैं इन्हीं बच्चों के लिए आया हूं, और मैं छात्र राजनीति का उपज हूं। आज भी मेरे शरीर पर कई जगह पुलिस के लाठियों के निशान है, 31 मुकदमे हुए हैं मेरे ऊपर,
4: वही निशान किसी बच्चे के,
6: बच्चों के लिए आया हूं। और मैं मानता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ।
4: आपको पूरी छूट मिली हुई है यहाँ पर प्रदर्शन करने की?
8: यस मैम,
4: ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की पूरी तरीके।
1: मैम हमारी डिमांड है रिफॉर्म के लिए, ये लोग बात घुमा रहे हैं, बात को आप समझिए मैम, ये बातों को घुमा रहे हैं।
4: आप बताइए,
9: झारखंड बने हुए अभी 25 से 26 साल हो गए, यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ नियमित रूप से एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? हम हेमंत सोरेन जी को यही कहना चाहेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत सोरेन जी, हम विद्यार्थी हैं, हम भारत माँ की संतान हैं, हम दिसोम गुरु के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी के अनुयायी हैं। आपको समझना होगा, यह झारखंड केवल और केवल आपकी जागीर नहीं है। एक और हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं इसको जेपीएससी की एग्जाम में नहीं बैठाऊंगा। इरफान अंसारी जी रिम्स में अपने बेटे को बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसको भेज देते हैं ऐसे ही, और हमें कहते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं।
4: नहीं, पर ये तो कह रहे हैं ना कि आपको पूरा हक है प्रदर्शन करने का, कोई नहीं रोक।
9: मैम प्रदर्शन ये तो यही चाह रहे हैं, ये तो यही चाह रहे हैं मैम, कि हम केवल प्रदर्शन करते रहे, यहाँ बैठे रहे, और हेमंत सोरेन जी अपने घर में एसी की हवा खाते रहे, और विद्यार्थी यहाँ धूप में बीए करते रहे और बारिश में भीगते रहे।
4: अब इसका
6: नेताजी से पूछिए कि सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है, जो इनके मंत्री जी क्या बोलते हैं कि झारखंड में पेपर लीक हुआ ही नहीं, जो भी वैसे मंत्री बोलते हैं जो स्वास्थ्य को, पूरे झारखंड को संभाल रहे हैं।

0: पेपर लीक हुआ ही नहीं। अरे भाई सीबीआई जहाँ से क्या दिक्कत है, जे एस एस सी सीजीएल से क्या दिक्कत है, आप रद्द कीजिए, आप जो साफ है तो रद्द कीजिए।
1: सीआईडी जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, एक सेकेंड, हो रही है,
2: मैं
1: हो रही है, नहीं हो रहा है।
2: बच्चों में
1: सीबीआई, सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है, सीबीआई के रिजल्ट को हमने देखा है। बाबूलाल जी अर्जुन मुंडा के समय में जो सीबीआई जांच भेजे गए थे वो अब तक नहीं हुए।
3: अगर इनके अंदर डर नहीं है, इनको अगर लग रहा है, एक्चुअली बात ये नहीं है, सॉरी, चोरी छोटी हो या बड़ी ये मायने नहीं रखती, चोरी चोरी होती है। मेरा कहना ये है, अगर आप सीआईडी के लिए हामी भर रहे हैं तो आप सीबीआई के लिए भी हामी भरिए। क्या आपको इसमें असंकोच क्यों है? कहीं आपके घर में खुद का ये खोटा होगा, आपके घर का खुद का सिक्का खोटा होगा, यही इशू होगा।
4: ये बच्चा दो सवाल पूछना चाहता है हमारे, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, दो सवाल है, आराम
5: से सर, आराम से आप सुनिएगा, मेरा दो तीन क्वेश्चन है बस। अभी जेपीएससी का बात नहीं हो रहा है, खाली जेपीएससी, एसएससी या बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति, कहीं पे भी आप चले जाओ, गांव में, मैं गांव से गवर्नमेंट स्कूल से आता हूं, गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति झारखंड में आप जाके देख लो।
4: सवाल क्या है आप?
5: सवाल ये है कि वहां पे भी चोरी हो रहा, बच्चों का साइकिल और अंडा और ये मार रहे हो, और जेपीएससी में पेपर और सीट का घोटाला कर रहे हो। आप लोग एक जगह घोटाला नहीं कर रहे हो, और ये हेमंत सरकार नहीं, बीजेपी के टाइम में भी हुआ और हेमंत सरकार के भी टाइम में हो रहा है, और ये सुधार नहीं रहा है। ये
6: वो लोग एक दूसरे पे, अगर सेंट्रल में होगी तो दूसरे ऑपोजिशन को घेरे, जो विपक्ष में पार्टी है उसको बोलेगी, उसके ऊपर थोपेगी। जो अभी
4: देखिए जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर यही लोग जो है ये सही चीज बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिस्टमिक। आप जब यहाँ पे आते हैं, एक बात है कि आपका जो एक पॉलिटिक्स होती है कि उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, आप उनके ऊपर हावी हो गए, अब आप आज चुप है, अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत चंगा है, रांची में कुछ भी नहीं हुआ, ना वाटर कैनन चला, ना लाठी चली, लोग ऐसे ही गिर गए सड़क के ऊपर। यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि आपकी भी जब सरकार थी तब भी प्रॉब्लम्स थी, तब आप चुप क्यों बैठे?
7: देखिए ऐसा नहीं है, जेपीएससी 1 और 2 की जहाँ तक बात है, सीबीआई उसको टेक ओवर की, और सीबीआई ने टेक ओवर किया, चार्जशीट 6 साल, चार्जशीट
4: बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो।
2: देखिए ऐसे वाटर बॉटरी करते रहो, बचाते रहो, पिछले सरकार में क्या हुआ, फिलहाल हम अभी के सिस्टम से लड़ेंगे ना, अभी क्या।
4: ये देखिए ये यहाँ का छात्र है जो पीछे हुए, ये दो नेता खड़े हैं और ये छात्र इन सबके ऊपर खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
7: देखिए मैम, छात्रों की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं का मैं व्यक्तिगत रूप से भी कदर करता हूं, करनी भी चाहिए। पूरा देश ने, पूरा दुनिया रांची पर निगाहें बना के रखा हुआ है कि कैसे छात्रों के प्रति जो सरकार को संवेदनहीन होना चाहिए था, वो पूरी की पूरी एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रही है। छात्रों की मांग क्या है? छात्र तो रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं, छात्र यही बात कर रहे हैं, रिफॉर्म जेपीएससी की बात कर रहे हैं और सिस्टम की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वही तो हम भी बात कर रहे हैं। देखिए बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। देखिए हम कंपेयर नहीं करेंगे, अभी छात्र की भावना है कि सिर्फ यही की बात होनी चाहिए, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि जब पूरे झारखंड के छात्र बात कर रहे हैं कि जेपीएससी, जेएससी और टीडीपीएल के द्वारा जो 19 से लेकर 26 तक जितने एग्जाम कराए गए उसको रद्द करें और सीबीआई और सीबीआई और सीबीआई।
4: देखिए एंड आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द पीपल, आई डोंट नो इफ यू हर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स देयर सेड वेरी सिंपल दैट द डिबेट शुड स्टॉप अबाउट हु इज कल्पेबल, दिस फिंगर पॉइंटिंग वन साइड एंड द अदर। If you want the truth to be out there, हमें डिबेट नहीं चाहिए, हमें सीबीआई चाहिए, ये बोल। यहाँ पर आवाज आप सुन रहे हैं सीबीआई की, और बार बार जब एक ही मांग लेकर के छात्र वापस आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ करेंगे पर ये नहीं करेंगे, तो क्यों
1: मैडम? अभी
4: वही आके फंस जाए
1: एकदम। आप लोग, आपने कहा दिल्ली जंतर मंतर का, मैंने सुनो भाई दिल्ली के मीडिया ने जंतर मंतर को कवर नहीं किया, झारखंड को कवर करने के लिए आप लोगों की बहुत चिंता है। सरकार ने रिफॉर्म्स कंपैरिजन, सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है। आपका बारी आगा, बोलिएगा। सरकार ने रिफॉर्म्स की बात कही है। उन्होंने कहा XLRI, IIM सबके साथ
4: नहीं चाहिए। XLRI, IIM जब आदमी CBI, CBI रट रहा है।
1: एक इंक्वायरी, अभी हमने ईडी तक को दे दिया, ईडी को दे दिया कि ईडी को भी इन्वॉल्व हो जाए। ईडी को भी इन्वॉल्व,
4: यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछूंगी, यहाँ पे कितने लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर कितने लोग CID से संतुष्ट है, अपने हाथ उठाए। यहाँ पर कितने लोग चाहते हैं कि CBI की जांच हो?
1: पूछिए कि कितने लोग CID से संतुष्ट भी हैं?
4: नहीं तो पूछा नहीं। कितने लोग CID से संतुष्ट हैं? I'm going to leave it at this because if there is one thing that you've seen in the public mood here, it's absolutely clear that this kind of browbeating and gaslighting is simply not going to work anymore. There's been a singular demand that these students have had right from the beginning, that this rot has gone on for too long, it has gone too deep, and if a complete cleanup is needed, there should be a centralized investigation so that people who were hand in glove with the corruption that has happened all of this while should be brought to book and should be thrown out of the system. That's when there will be actual justice for the students, not just the ones you're hearing right now, not just the ones who took lathis and tear gas today, but also the ones who continue to sit in agitation over there. For the time being, aap sabka bahut bahut dhanyawad yahan aane ke liye aur humse judne ke liye bahut dhanyawad.
8: Thank you ma'am.
4: Now this is the month of Sawan. It is very, very auspicious time, and you've got locals who have come here after going to the temple, and they are putting a tilak with all these people who are now headed out. You know, they are going to the Vidhan Sabha, they are going for a Vidhan Sabha gherao, and they are here, you know, putting that small tilak on the head of all of these young men before they leave this stadium. Ma'am, aapka naam kya hai?
9: Hamara naam Suman Kumari hai, aur main Ranchi se hu. और आज सोमवार का दिन है, मैंने सावन पे फास्टिंग रखा है। आज हमारे लिए, इन JPSC के बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं सुबह उठते साथ भोले बाबा के पास पूजा करते ही अपने भाइयों को, अपने बहनों को आके तिलक दे के उन्हें मैं आंदोलन के लिए भेज रही हूँ।
4: तो क्यों लगा यहाँ आकर के आप तिलक क्यों लगा रही हैं?
9: भाई लोग जा नहीं सकते हैं तो उनके लिए मुझे आना पड़ा, मुझे आना ज़रूरी था।
4: If you just see the cross section of people who are over here, you've on the one hand got among the four people who are sitting on a fast unto death, you've got an Umme Habiba also, and you've got a Savita also, because it is across barriers, across caste, but pretty much the same class that they are fighting against, the class that is trying to get their dues, their rights, and just fight for a simple job. Habiba, pehle ye bataiye, aap kidhar se hain?
10: Ji, main Bokaro se hoon.
4: यहाँ पर आप क्यों इस आंदोलन का हिस्सा बने?
10: क्योंकि मैम, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे जितने अभ्यर्थी हैं, इनफैक्ट पूरे झारखंड के बच्चे के अधिकारों का हनन किया गया है, दुरुपयोग किया गया है। संविधान हमें अवसर की समानता देती है, इक्वालिटी देती है, लेकिन हमारे अवसर को छीना गया है। आर्टिकल 16 जब हमें अवसर दे रहा है, यहाँ पे अवसर की समानता दे रहा है, जॉब करने, नौकरी करने की समानता दे रहा है, लेकिन ये लोग हमारे नौकरी को खा जा रहे हैं, हमारी अवसर को ये लोग छीन रहे हैं। तो ये सारी विडंबनाएं हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अभ्यर्थियों को मजबूरन यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और इतना ही नहीं, धरना प्रदर्शन आज हमारा यहाँ पे 17वां दिन होने को जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि उतने दिनों से कुछ भी सरकार नहीं सुन रही थी हमारी। जो भी धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, इवन देन वो अनसुनी कर रही थी, और इसलिए हम लोगों को अनशन करना पड़ा। एकमात्र
4: आप यहाँ पर 17 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, घर वालों ने कहा नहीं कि भाई तबीयत बिगड़ जाएगी, लड़की हो वहाँ पर आंदोलन पर बैठी हो?
10: मैम, अनशन का आज हमारा 7वां दिन है, धरना प्रदर्शन का 17वां दिन है। तो मैं बता दूँ कि जब मैं प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, तब घर वालों, फैमिली को नहीं पता थी, मैं और मेरे भैया आए हुए थे कि नहीं लड़ना है इस बार। उसके बाद में फिर मम्मी पापा को पता चल गया, और अनशन जब कर रही थी ये चीज़ नहीं बताई थी, इनफैक्ट उन लोगों को कल पता चली है। जी, उससे पहले उन्हें पता चली थी, मेरा एक वीडियो देखे थे

0: लोग डॉक्टर्स आए थे चेकअप करने के लिए, तो बता दिया था कि बेहोश हो गई थी। तो ऐसे चारे मतलब माँ बाप से झूठ बोलना पड़ रहा है इस करप्ट सिस्टम की वजह से। और मम्मी जब जान गई तो बहुत ज़्यादा निराश भी हुई, रो भी रही थी, क्योंकि वो एक पल अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती है। माँ की ममता ऐसी होती है। और पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पे अनशन पे हूँ, भूखी बैठी हुई हूँ, तो उनके दिल को कितनी आहत पहुँचती होगी। और मेरा कहना माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि हम उनके बच्चे नहीं हैं, क्या वो हमारे गार्जियन नहीं है? हम उन्हें अपना गार्जियन मानते हैं, अभिभावक की तरह मानते हैं, तो क्या उनके दिल को आहत नहीं पहुँच रही अभी तक से कि हमारे यहाँ राज्य के बच्चे भूखे पड़े हुए हैं? वो क्या हमसे आकर के वार्तालाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ रहे वो? हम चाहते हैं कि वो आए और हमसे वार्तालाप करें।
1: आपको लगता है कि सरकार को लग रहा है कि वो तोड़ देंगे, आपका मनोबल तोड़ देंगे? कितने दिन बैठोगे यहाँ पे, उसके बाद सब भूल जाएंगे?
2: ये मैम, जो हम लोगों ने भूख हड़ताल किया है, इस सर पर कफन बांध कर किया है कि यहाँ से जब तभी हटेंगे जब हम लोग के जीतने से होगी, क्योंकि हम लोग किसी का अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।
1: जब आप दिल्ली के जो प्रोटेस्ट थे वो आपने देखे, वो भी देखे मैंने, वहाँ पे भी बहुत लड़कियाँ थीं, यहाँ पर कम हैं बट हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भी लड़कियाँ हैं। जब आप उसको देखते थे और अपना प्रोटेस्ट देखते हो तो आपको क्या अलग लगता है?
0: जी, अलग दो चीज़ें हैं। पहली बात तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है बिल्कुल गांधीवादी तरीके से संवैधानिक है ना यहाँ पे। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो हमने मर्यादा का ख्याल रखा हुआ है, जो एक संविधान भी ये कहता है कि किसी के लिए अभद्र लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ है जो हमारे जिसको हमने सत्ता में बैठाया, जिन्हें हमें अपना गार्जियन बनाया है, तो उनकी भी एक ओहदा है, इज्जत है, तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखा है, मर्यादाओं का ख्याल रखा है। तो बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है।
1: आपके लिए ज़रूरी क्यों था? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जगह जगह पर यहाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है, मंच पर किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत वक्तव्य ना दें, मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें, व्यवस्था में सुधार के लिए है, किसी को आरोपित ना करें, अब शब्दों का प्रयोग, ये इतना ज़रूरी क्यों था कि जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगाए?
0: जी बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पे इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी मजबूती है संविधान, क्योंकि ये संविधान हमें हक देता है जिससे हमारा हक का हनन हुआ और हम उसी हक को लेने आए हैं, तो ये हक ही हमें संविधान देता है। और हक अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने का भी हक हमें संविधान देता है। तो हम पूरी तरह संविधान में दिए गए, मतलब उनके जो बताई गई जो बातें हैं संविधान में, जिस तरह से चलने के लिए हमें जो रास्ता बताया गया, हम उसी रास्ते पे चल रहे, एकदम बिल्कुल विशुद्ध गांधीवादी तरीके से और संवैधानिक तरीके से। तो इसलिए हमने ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है पूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट है।
1: आपके घर में आप पहली हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का कोशिश किया?
3: जी मैम, मैं तो पहली हूँ जो घर से निकल के बाहर पढ़ने का कोशिश की, और यहाँ पे जिस तरह पेपर लीक हो गया उस तरह मैं तो एक भी रिजल्ट नहीं कर पाई। अब एक उम्मीद टूटा हुआ लग रहा है अब नहीं निकाल पाऊँगी। जिस तरह पेपर को बेचा जाता है खुलेआम, हम तो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, उस समय 2 साल तो कोरोना हो गया था, उसके बाद फिर इधर वैकेंसियाँ निकलने लगी, जितनी भी वैकेंसियाँ निकली 2021 के बाद सारी की सारी बिक गई। और 2021-22 की वैकेंसी अभी 24-25 में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जब तक सीटें बिक नहीं जाती तब तक एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता मैम।
1: पापा आपके क्या करते हैं?
3: मेरे पापा किसान हैं।
1: तो घर में वो नहीं हुआ कि आप घर छोड़ के पढ़ने जा रही हो? सारी बाकी दीदी तो की तो शादी हो गई, आप अकेली नौकरी करने की?
3: मैम घर में हुआ था, मेरा घर तो यहाँ, मैं तो रांची में रहती हूँ, यहाँ टाउन में, और मेरा घर गांव तरफ है, तो मेरा घर में बोला भी गया था, समाज से भी हमको लड़ना पड़ा उस समय जब निकल रही थी, उस समय बोल रही कि लड़कियाँ यहाँ से भाग गई, और भाई भी बोला था कि तुम यहाँ पे रांची की हो और यहाँ बगल में सामने जाके उधर लॉज में जाके रहोगी, समाज क्या बोलेगा? हम बोले समाज कुछ भी बोले वो हमको ले दे के नहीं चलाता है, स्ट्रगल करना तो मेरा फर्ज है, और मैं इतना दिन से पढ़ी हूँ और ऐसे बिना इतना पढ़ी हो के और घर में बैठी रहूँ तो मुझसे नहीं हो सकता, तो मैं तो घर से भी लड़ी थी, समाज से भी लड़ी थी, बहुत स्ट्रगल की थी मैम, तब जाके यहाँ पे पहुँची थी। घर गांव तरफ सब बोल दिया था कि लड़की भाग गई।
1: एंड अगेन एंड अगेन यू नो मेनी पीपल आर सेइंग दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज सीन इन दिल्ली एंड व्हाट इज सीन इन झारखंड, इट्स एन अटेम्प्ट टू डिवाइड। नो, इफ देयर इज एनी वन मैसेज ऑफ यूनिटी यू सी हियर राइट ऑन दिस स्टेज वेयर पीपल फ्रॉम अक्रॉस कम्युनिटीज आर सिटिंग टुगेदर, बट वन थिंग दैट दे हैव इन कॉमन एंड everywhere on this ground or even among the people who are marching towards the Vidhan Sabha, you will see this happening. A code of conduct that has been spelt out to every single participant. And this really stands out in this protest. They say don't give it any political, any communal or any कास्टिस्ट कलर्स धार्मिक राजनीतिक जातिगत वक्तव्य नहीं दें आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर अपनी बातें रखें बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एजिटेशन दैट यू अडियर टू हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें दिस इज़ नॉट अबाउट टारगेटिंग एनी वन इंडिविजुअल आस्किंग फॉर एनी वन पर्सन रेजिग्नेशन यू जस्ट हर्ड द यंग लेडी शी सेड वी नो दैट इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु इज गोइंग टू आंसर आवर प्रॉब्लम्स सो वी रिक्वेस्ट हिम टू फिक्स इट टू नॉट बी एरोगेंट टू नॉट मेक इट अ मैटर ऑफ ईगो प्लीज़ लिसन टू अस एंड फाइनली अपने वक्तव्य में अब शब्दों का प्रयोग ना करें Nowhere on this platform you will ever have seen anyone being abusive, being abrasive, making any personal slurs. And that really is the fundamental nature because the people who are over here, they also know that they want to be a part of the same system. Tomorrow they are going to be a part of that system. They don't want to demolish that system. They just want to reform it. Imagine. Here is somebody who was sitting on dharna against JPSC irregularities 10 years ago. Even today, he is carrying around a poster saying that when he sat on dharna, Hemant Soren, who was the chief minister 10 years ago, had broken his fast. This gentleman's fast. Kya naam hai aap?
4: Safi Imam. लेकिन मेरा नाम इमाम सफ़ी है मीडिया हमें सफ़ी इमाम नाम दिया क्योंकि मैंने
1: तो शफी जी ये बताइए कि 10 साल पहले भी आप धरना कर रहे थे इसी चीज़ के लिए 10 साल बाद भी अभी है
4: आज हमारे बहन लोग भाई लोग यहाँ पर अनशन में हैं और वहाँ भी अनशन है मेरा ही स्टूडेंट हैं सारे और जो विधायक जी या तमाम लोग जो यहाँ झारखंड में यदि अनशन के परिपाटी को शुरू करने में भी मैंने प्रयास किया था क्योंकि आज से 15 साल
1: The chief minister came, told Imam Shafi 10 years ago that we will listen to your demands, you call off your fast. And 10 years later, his sisters have to sit on dharna with the same demand because all of those promises were simply broken. Now think about why these people would have any trust in the government. You've got, in fact, the very symbols of Jharkhand that have been put up on stage everywhere. You've got tricolor, you've got Shibu Soren. And then you've got a code of conduct. You've got Birsa Munda. So they're saying, we are not here for anarchy. We are anti-corruption. We are not anti-establishment. We are not anti any party. And this is just years and years of what they have been through. JSSC student, ab to naukri pakki hai. Paper leak, itna atmavishwas achha nahi hota. Azad Bharat ka sabse bada niyukti ghotala. माध्यमिक आचार्य 2025 परीक्षा रद्द करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इट्स नॉट जस्ट जेपीएससी और यू नो द एसएससी जेएसएससी एग्जाम्स यू हैव गॉट एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दैट टेक्स प्लेस वेदर इट बी फॉर अ ड्राइवर एट द डिस्ट्रिक्ट जेल वेदर इट बी द माध्यमिक आचार्य विच इज द गवर्नमेंट टीचर्स जॉब एवरी सिंगल एग्जाम दैट टेक्स प्लेस You've got about 20, 30, 140 vacancies. 50,000 people apply for it. They feel we've qualified. They even go for the interviews. And then suddenly it just disappears. They don't know where those jobs went. And that is why they feel when this is so well entrenched, when it is so deep rooted over the decades, how can anything but a full cleanup, a full shake up ensure that there is transparency and there is honesty, there is any possibility in the future?
5: सर ये रास्ता कब खोला जाएगा
6: नहीं नहीं
5: ये रास्ता बंद क्यों कर दिया गया है यहाँ पे तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं है ना तो व्हीकल्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है जहाँ धरना का साइट है वहाँ सर क्या सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी तो लोग जाएंगे कैसे
6: अरे नहीं नहीं नहीं ये सारी सड़कें नहीं है ये ऑप्शनल रास्ता है
5: सर शहर के अंदर तो सारी सड़क बंद थी
6: नहीं नहीं हम
5: ये सड़क भी बंद कर देंगे तो फिर लोग जाएंगे कैसे वहाँ तक All right, so there you see that pretty much is what you see as far as access is concerned. The access to this area has been completely cut off in order to ensure that any more people who are coming from the outside do not make their way even anywhere close to the assembly. And this, by the way, is not an exception. We have seen people who we met in the morning, who were trying to come from places like Bokaro, from Giridih, when they were on buses, they showed us videos and said that the police is just asking the buses to pull over and park on the side. And anyone

0: Anyone who seemingly is headed towards Ranchi was stopped overnight from even entering the city limits, and even within the city, the truth is right there in front of you of how people's access, the movement of people and vehicles is being restricted. One of the protesters who was sitting on a hunger strike is now being taken away in an ambulance. He had come here and he was still carrying his constitution in one hand. Ek second. Bhaiya, aapka naam?
1: जी, मेरा नाम कुश महतो है और मैं आज मेरा छठा दिन है हंगर स्ट्राइक का और लगातार जो है कि छात्रों के साथ
0: क्या है? मांग बताओ अपनी भैया, मांग बताओ।
1: मांग हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी में जो हमारे सीटें को बेची जा रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे और कभी हम लोग इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग और सीट बेचने नहीं देंगे।
0: After the lathi charge and the water cannon that has happened, this young man is still saying, clutching a copy of the constitution, he says that we want these 6 different examinations to be cancelled. A lathi charge being conducted over there, the protesters being pushed back. There you see right over there. People, the students who are trying to come to the front now, and there again, at the back. All right, so you've got the cops here conducting a lathi charge here. Right here. One cop unfortunately has been injured. This is very, very, very disturbing turn of events, and it is really not something that this protest needed. One cop of the Jharkhand police, we're breaking right now on NDTV, has been injured. And I'll take you back to that site where this injury has taken place. A couple of barricades here, you see, have been overturned by a few people. Remember in the morning, when we'd spoken to the organizers, they had said that a few unruly elements may try and infiltrate this agitation. It's gone on for an hour and a half right now. Two people being led away. One, a protester who's been taken away in an ambulance. He was on a drip, and he says while being led away that we want all of our demands to be met, for a CBI investigation to take place, and for the 6 exams that have been held by the TDPL over the last several years, their results to be cancelled, and a proper bahali, a proper appointment process being done, because they say that these jobs have been sold. This is really the point of the face-off. And I want to point out something very quickly over here. You've got two of the organizers who are now on top of a barricade, including a young lady. Now they've got on top. We had some unfortunate scenes where the protester had flung slippers. These slippers and shoes had been flung in the direction of the police. So you see a lot of abandoned slippers which have been thrown at the cops over here. But after that, you see the organizers getting on top and asking people to settle down. Don't engage in violence. Don't engage with the police. Don't let things get out of hand. So finally now, things are under control. For a bit there, it looked like the situation was getting tense.
2: मेरा नाम संजय महतो और हम हजारीबाग से आए हुए हैं। हम जेपीएससी के छात्र हैं।
0: आपको लाठी लगी?
2: लाठी पूरा पैर से माथा तक, माथा तक इतना जोरदार लाठी था कि मेरा सर पूरा फट गया है।
0: आप कहाँ?
2: हम यहीं थे, यहीं पीछे थे और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी और पूरा इतना बेरहम नहीं मारना चाहिए, इतना निरंकुश सरकार नहीं होना चाहिए कि झारखंडी छात्र को लाठी से मतलब मारना चाहिए।
0: पर आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे।
2: ये पीसफुल ही थी, हम लोग कुछ नहीं बोलिए किसी को, आज एक हम लोग हाथ चलाए हैं और ढेला फेंके या किसी तरह से गाली दिए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा जा रहे थे मार्च करते हुए और हम लोग को विधानसभा पहुँचे भी नहीं दिया और हम लोग को मार के यही सारा माथा।
0: ये आपके क्या खून लगा हुआ है?
2: खून लगा हुआ देख लीजिए आप, पूरा
0: कैसे क्या आपके आपके ये ऑलराइट सो ही इज शोइंग ही हैज गॉट अ ब्लड स्टेन कैप हियर
2: पूरा पूरा देखिए ये ब्लर देखिए मेरा शर्ट देखिए शर्ट से पूरा बांधे हुए थे और इस तरह से अगर छात्र अगर प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग मर जाए हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए नौकरी नहीं चाहिए बताइए हेमंत सोरेन तुम झारखंडी है कि नहीं है बाहरियों के दबाव से तुम हम लोग को बर्बाद कर देगा क्या 26 वर्ष हो गया झारखंड का लेकिन आज तक नौकरी नहीं कर पाए यहाँ के व्यवस्था के चलते बताइए हम लोग क्या करें
0: आपका नाम
3: चंडी तिवारी मैम नाम है मेरा
0: चंडी बताइए क्या हुआ
3: जितना जुल्म सरकार कर रहा है मैम करने दीजिए उतना हम लोग को सहने के ताकत मजबूत मिल रहा है लेकिन सरकार को सोचना चाहिए अगर हम न जीते तो झारखंड का भविष्य मर जाएगा सभी पुलिस वालों को बोलते हैं हम न जीते इन लोग हट जाओ यार और जब ड्यूटी अपना निभाओ हम लोग जीत रहे वाले आप लोग भविष्य को अंधकार कर रहे हैं इसलिए हट जाइए आप लोग हट जाइए आप लोग
0: Is that point where there is a face-off right now between the students on one side and the police, which is on the other. A while ago, there was a lathi charge. The water cannon was used. Remember, what had happened this morning was that the organizers of this protest had said that you have to march from the old Vidhan Sabha towards the new Vidhan Sabha, but it should be done in a peaceful fashion. Somewhere along the way, the story changed. The police says that there was aggression on part of the protesters. The marching students say that they were subjected to a lathi charge. One such person is here with me. आप वहाँ से मार्च करते हुए आ रहे थे फिर क्या हुआ
4: हम लोग पीसफुल तरीके से मार्च करते आ रहे थे मैम हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उस मंच से भी अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग पीसफुल तरीके से आंदोलन करेंगे हम लोग शांति मार्च लेकर आ रहे थे और जो एसपी सर से बात हुई थी कि जो आप लोग का जो एरिया है जहां पे हम लोग डिसाइड किए बैठने के लिए वहां पे बैठ जाइएगा हम लोग बैठने के लिए हम बच्चे को समझा रहे थे उसी बीच में इधर से पुलिस की तरफ से पूरा लाठीचार्ज करके जिस तरह से हमको समझाने के दौरान हमको भी चोट लगी है दो तीन जगह इधर भी पैर में भी मारा है पीठ में भी देखिए यहाँ भी चोट लगा है यहाँ भी चोट लगा है देखिए कट भी गया है मैम हम बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से हम लोग छात्र हैं और किसी भी
0: आपको पैर में लाठी मारी है
4: हाँ ये देखिए पूरा लाल है ये आपका सरकार के द्वारा से हम लोग का जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के जब हम लोग बोल दिए पीसफुल तरीका से तो लाठी चार्ज करने की क्या जरूरत है
0: पर वो कह रहे हैं वहाँ से पत्थर चले
4: हम लोग किसी भी प्रकार से पत्थर नहीं चलाया मैम हम लोग जेनुअल छात्र हैं और छात्र में ही जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग छात्र का ही हम लोग किसी भी प्रकार पत्थरबाजी न किसी प्रकार से कोई भी डंटा उंटा से हम लोग मारने की है देखिए
0: Okay, so they've actually, okay, they've got videos over here. Here they're showing somebody who has been hit on the back. Earlier we had met somebody who was being taken away in an ambulance. Here they're showing. All right, so there's this young man who was hit on the back and is lying unconscious on the road, hit by a water cannon.
5: Police ne chala karke lathi, matlab hum log wo daula karke lathi charge kiye, ma'am. इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे
0: सो दे आर शोइंग एविडेंस दे आर सेइंग दैट वी वर ट्राइंग टू गेट पीपल टू सेटल डाउन व्हिच इज व्हेन द लाठी चार्ज स्टार्टेड अनप्रोवोक्ड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी ओवर हियर विल बी दोज हु आर वॉकिंग अराउंड विद अ ट्राइकलर इन द डिस्टेंस ऑल्सो द वन इमेज दैट विल स्टैंड आउट इज दैट ऑफ अ ट्राइकलर व्हाइल वी आर वॉकिंग देयर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ जस्ट हाउ बिग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द पुलिस इज ओवर हियर

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
2: In France, in Italy.
1: At Srinagar.
2: I am Iskandar.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है
5: ब्रेड सिर्फ आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृहमंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको,
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
1: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
2: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
3: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
4: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई
2: पक्का
5: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी

0: तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया।
1: बड़ी शान बढ़ाई आपने,
2: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
3: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे एक केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
4: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
5: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
6: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
7: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की
6: बहुत बधाई।
7: ओनली एक ही
6: सर।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है
6: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
7: तीन साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको,
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के ले आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: Now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak, we're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
0: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills, and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
5: So actually, before I respond to the discussion points, These are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
0: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
1: यहाँ पे house नहीं चलने दे रहे। आज चार bill introduce हो रहा है। एफ सी आर ए हो, डिलिमिटेशंस हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है.
6: Main thing is to look at the text, see how they modified it, and then we'll decide what needs to be done. I think our principle at the moment is very clear. What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
7: For this FCRA issues, with one voice, I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities, and whatever the leader said in the beginning still continues.
8: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा. लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया. अगर 10 साल में 1 लाख करोड़ आया होगा एफसीआरए में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं. तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है.
0: Now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the state assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
9: பேசுன வர்ற ஓசை மட்டுமல்ல, திரும்பவும் சொல்றேன், தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, அது நம்ம உயிர், அது நம்ம உணர்வு. நம்மளை பெத்த தாய அம்மானு சொல்றப்பெல்லாம் பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா

0: உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ள தோணும்ல, அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படிதாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ்மொழி இப்படி சொல்றதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பத்தி புரியும்னு நினைக்கிறோம். எழுபது பத்தி இருந்துச்சு, ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லையும் கல்வி நிறுவனங்கள்லையும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாவே இருக்கு, அதுக்கான அரசாணையும் இருக்கு. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றி கழக அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யவே செய்யாது.
1: Alright, from Tamil Nadu, let's now grow across to Bengal, where the BJP versus TMC face-off has intensified in West Bengal after an attack on Mamata's convoy during the North 24 Parganas visit. She was visiting the family of a victim who TMC claims died in police custody. Mamata Banerjee's convoy was allegedly attacked with shoes, bottles and stones. The former chief minister and TMC supremo claimed that she could have died in the attack if not for the windshield. But West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has blamed Mamata, accusing her of not informing the police about her visit. But he added that the adequate security was provided to her.
2: We are currently at the location where Mamata Banerjee's vehicles were attacked, en route to a family member of Trinamool Congress Party who was allegedly killed in police custody. And what we know, that this particular juncture was the location while Mamata Banerjee's vehicle was stopped by a group of unruly mob. They pelted mud and sleepers. Following that, a lot of politics is unfolding in Bengal. Trinamool Congress, including Trinamool chief and the former chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has alleged it was an planned assassination attempt on her. However, Chief Minister of West Bengal, day after this this very shocking incident unfolded in North Chobbish Parana, himself visited the same place and also met the family, reassured all kind of stalked action against the perpetrators with regard to the alleged custodial death of a TMC worker, and said that there was no involvement of Bharatiya Janata Party worker as per the attack on Mamata Banerjee's vehicle is concerned. What we know, an elaborate security arrangement has been done over here following this incident, but it is simmering the politics in Bengal as very shockingly Mamata Banerjee, for the first time while she stepped out of Kolkata, her vehicle came under attack on Sunday. With camera person Anirudh Tripathi, this is Riktik for NDTV.
3: चेड़ीबेल वो है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
4: पुलिस क्या कर रहा है? इतना
3: पुलिस पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
5: ढुके जयचंद जी রকাপে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে তৃণমূলের সম্পদ, আর বাড়ির লোক বলছে যে আমার তো প্রশাসন পুলিশের উপরে স্যাটিসফাই, আমরা রহস্য উন্মোচন হোক চাই। লকআপে ছিল সেই অবস্থায়, পিটিয়ে মেরেছেন, অসুস্থ হয়ে বিচার চাই, এবং লোকাল সরকার এবং পুলিশই আমাকে বিচার দিতে পারবে। মমতা ব্যানার্জি বিচার দিতে পারবে না, তার বাড়ির লোক বলছে। আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে। পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম, যেটা তো ওনার পাওয়া, উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে। না, আমাদের নির্দেশ আছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 15 বছর ছিলেন, বয়সও হয়েছে, ওনাকে যতটা সম্ভব পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ওনার সম্মান রাখা উচিত। সে কাজ পুলিশ করেছে, পুলিশ কিন্তু খারাপ কিছু করেনি। তো ওনাকে বলবো, আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো, এই কাজগুলো করবেন। আপনার আপনার কাছ থেকে যদি কেউ সাহায্য চায়, আপনার যদি কেউ হস্তক্ষেপ চায়, আপনি নিশ্চয়ই করুন। কিন্তু আপনি অহেতুক এখন উন্নয়নের সময়, এই সময় আপনি দয়া করে কোনো জায়গায় গিয়ে এমন কিছু করবেন না যাতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
1: If you're planning your next travel by Air India, this story will be of umpteen importance to you. Well, the probe into Air India turbulence incident involving the flight AI2379 is widening, with both Indian and the French Air Accident Investigation Bodies now set to join the probe. Airbus, remember, will also support the turbulence investigation, providing technical assistance by sending a team of specialists. It was earlier Air India which had written to Airbus flagging the issues reported by the pilots during the flight. The airline in a statement had said that the investigation is being conducted under the Accident Investigation Bureau and that it will extend full cooperation in the probe. Meanwhile, questions remain over the pilots' medical test. The Civil Aviation Ministry said yesterday that the pilots were tested as per prescribed norms. The result of the pilot in command requires a retest with the sample sent to a laboratory for confirmation. For now, the investigation is widening on multiple fronts, from the aircraft's sudden plunge to the turbulence encountered mid-air and now the questions surrounding the pilot's test results. Everything will be cleared once the result of the second test is out. But let's also tell you about what happened 4 days ago. This incident stemmed on August 4 when an Air India flight from Phuket to Delhi was cruising normally. And suddenly, the aircraft plunged about 300 feet. There were passengers, crew that were thrown around. There were several people who were injured. And the flight eventually landed safely in Delhi. But what happened in those few terrifying moments is now under investigation. Here's a detailed report on all that's happened so far.
4: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हजार फीट नीचे गई या क्या हुआ।
1: This is the Air India Phuket to Delhi flight at the center of a growing aviation controversy. On August 4, the aircraft encountered severe turbulence during its journey to Delhi. The aircraft suddenly lost approximately 300 feet altitude. For passengers inside the cabin, it was a terrifying few minutes. Several passengers and crew members were injured, with some crew members suffering serious injuries.
6: It was a very chaotic situation. I could see everyone was bruised, bleeding, or with a broken arm or a leg or something like that. It was the worst moments of my life. I've never encountered something like or anything like this. And I pray to God no one ever has to be in this situation ever.
4: एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हजार फीट नीचे गई या क्या हुआ। मैं एकदम से ऊपर जाके लगा, फिर नीचे आया। पता नहीं वजह समझ ही नहीं आई हमें, ना बताया गया कि क्या वजह था।
7: एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया। उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई।
1: द एयरक्राफ्ट लैंडेड सेफली इन दिल्ली, बट द इंसिडेंट वाज सीरियस इनफ फॉर एविएशन अथॉरिटीज टू लॉन्च अ प्रोब। द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, व्हाइल द DGCA हैज आल्सो स्टेप्ड इन। Both pilots were taken off flying duties pending the investigation, and then came another twist. As a part of mandatory post-flight procedures, the pilots underwent screening for psychoactive substances. The initial screening of the captain was reported as not negative. That does not mean the captain has failed a confirmed drug test. The DGCA says that the sample requires confirmatory testing. So what does not negative actually mean? It means the initial screening has raised a flag, but it is not by itself the final answer. The sample has to undergo further analysis before authorities can establish whether a prohibited psychoactive substance was actually present. And that is why investigators are now waiting for the confirmatory result. For passengers, the immediate concern is obvious. When they step in onto an aircraft, they expect the crew operating it to be fully fit and the systems designed to protect them to work exactly as they should. That is why the pilots

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of...
6: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalist had with Prime Minister Narendra Modi today.
7: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
8: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
9: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
8: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
10: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे
8: पक्का
11: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया
8: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
12: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ते हैं तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
8: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
13: हम लोगों का तो इतना अच्छा

0: परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
2: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट, वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ, वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
4: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज सर की
3: बहुत बधाई।
4: ओनली एक ही
3: मेडल।

0: Ladies and gentlemen, it's been nearly 2 weeks since the parliament has been functioning, and there has been a continuous logjam in the parliament. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has said that the centre is ready for a discussion over these issues that are concerning the students, and that the Home Minister Amit Shah is willing to respond on the floor of the House as well. Rijiju said that the government has made an offer for a full and detailed discussion, but the opposition must allow the House to function. He said that the opposition must listen to the Home Minister's response in the parliament and then participate in the discussions. Here are some reactions that we got earlier today from the parliament on that topic.
1: अभी तक तो केवल एक मांग थी रोज कि गृहमंत्री जवाब दें, और अगर सरकार कह रही कि गृहमंत्री जवाब दे रहे हैं, चर्चा हो, अब उससे भी भाग रहे हैं, तो इससे साफ है कि विपक्ष इस सदन को जानबूझ करके नहीं चलने दे रहा। पूरा मानसून सेशन जो वॉश आउट हुआ, इनकी सोची समझी रणनीति है, और ये इस सदन को जनता के सवालों या ज्वलंत समस्याओं से माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर जीरो आवर से केवल वंचित नहीं हुए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।
2: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है, और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृहमंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको,
3: राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के ले आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: Now Mr. Amit Shah suddenly saying that he is ready to speak, we're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand.
0: And while the deadlock is continuing in the parliament and there are several key bills in the pipeline, Finance Minister Nirmala Sitharaman today criticized the opposition over disruptions and walkouts in the parliament, accusing the communists of being total cowards and of being unable to face the facts. She alleged that the opposition would continue to keep on delaying the proceedings while defending the government's legislative agenda as comprising of very reformatory bills. Nirmala Sitharaman said that the opposition should take interest in participate in the discussions on the bills, and even expressed disappointment that the opposition members were walking out during debates on what she described as important reforms. Here's what the finance minister had to say in the parliament today.
5: So actually, before I respond to the discussion points, These are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it. So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates.
0: Let's now touch upon another very crucial debate that's raging in the parliament. This is about the government's proposal to send the FCRA bill to a parliamentary committee. This has now become another flashpoint in the ongoing monsoon session. The government has reached out to the opposition over the Foreign Contribution Regulation Act or the FCRA bill amid the ongoing stormy monsoon session of the parliament. Now, according to top opposition sources, the government has proposed sending the FCRA bill to a parliamentary committee for further consideration. However, the opposition has rejected the move and it's demanding that the bill will be withdrawn altogether. The law tightens oversight over the use of foreign contributions and aims to improve transparency in the utilization of these funds. Some political reactions coming in on that story as well.
1: FCRA हो, डीलिमिटेशन हो, महिला आरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है, तो ये तो पूरा मानसून सत्र अगर वॉश आउट हुआ है तो इसके लिए केवल राहुल गांधी जिम्मेदार है, केवल अखिलेश है, विपक्ष जिम्मेदार है.
6: Main thing is to look at the text, see how they modified it, and then we'll decide what needs to be done. I think our principle at the moment is very clear. What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly.
7: For this FCRA issues, with one voice I've asked for either withdrawal of FCRA bill and repeal of Section 15 of 2010 Act. If not, then refer it to the Joint Parliamentary Committee. So therefore, the stand of our leader and DMK party is synchronizing with the demands of a Joint Action Forum on minorities, and whatever the leader said in the beginning still continues.
8: FCRA केवल minorities को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा. लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया. अगर 10 साल में 1 लाख करोड़ आया होगा एफसीआरए में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है उसके, नियम फॉलो करते हैं. तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है.
0: And now let's get to an important story that's making headlines down south. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has moved a resolution in the state assembly over the Tamil state anthem. Vijay has said that the state anthem is a symbol of Tamil identity and asserted that the sanctity of the mother tongue must be protected. He has stressed that Tamil Nadu cannot compromise on its pride and language identity. The Chief Minister also said that the state and its people will stand united in protecting Tamil pride. The DMK has supported the resolution and also suggested that it should be drafted as a law to avoid unnecessary repetition whenever there is a change in the order or arrangement. Here's what the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay said in the assembly today.
9: Pesna varra osai mattum illa thirumbum solren tamil oru moli mattum illa adu nama uyir adu nama unarvu nammala petta thaaya amma nu solrappalla பாசமும் சொந்தமும் நம்மளை அறியாமலே உயிரா உறவா உணர்வா தானா உள்ளுக்குள்ள தோணும்ல, அதே மாதிரி ஏன் இன்னும் ஒரு படி மேலே போயே சொல்லலாம், தமிழ்னு சொன்னாலே எப்படி இருக்கும் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா வேணும். தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ அப்படி தாங்க தாய்மொழியும். அதுலேயும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ் மொழி இப்படி சொல்கிறதே போதும், எல்லாருக்கும் நம்ம தாய்மொழி உணர்வை பற்றி புரியும்னு நினைக்கிறோம். 70 பற்றி இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 1970களில் இருந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லேயும் கல்வி நிறுவனங்கள்லேயும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முதல்ல பாடுறது ஒரு மரபாகவே இருக்குது, அதுக்கான அரசாணையும் இருக்குது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ் நமது உயிர் மூச்சு, தமிழ் மொழி நமது அடையாளம், தமிழ் பண்பாடு நமது பெருமை. அதனால் தமிழ்தாய் வாழ்த்தின் மரியாதையை பாதுகாப்பதில் தமிழக வெற்றி.

0: Todd Dorsey, managing editor and primetime anchor.
1: The news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
2: Your work is being watched by people. You think that you're...
3: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Commonwealth Game Heroes are back home, and this time they had a special audience. Prime Minister Narendra Modi met the CWG medalists and applauded their grit, dedication and the standout performances in Glasgow, where India finished with 39 medals and fourth place in the overall tally. We leave you with this snippet of that interaction that the CWG medalists had with Prime Minister Narendra Modi today.
4: मेरे फ्रेंड्स सर्कल मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ
5: इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी उस मैप पर नजर जाना मैं सच बताता हूँ लंबे समय तक लोगों को याद
6: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है
5: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है किसी को मैं मिला हूँ तो खिलाड़ी है पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं भाई खेलना चाहिए ये करना चाहिए वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी
7: हाँ जी अभी वे उम्र की छोटी है अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई
5: पक्का
8: जब मैं दौड़ रहा था जब मेरा इवेंट था 29 को तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया
5: बड़ी शान बढ़ाई आपने इतने आंसू टपक रहे थे मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है
9: मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी इमोशनल भी थे उसी दिन खुशी ज़्यादा था और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 kg में मेडल रह गई थी और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर
5: क्या हुआ वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी
10: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उनको अच्छे से बोला रिक्वेस्ट किया था सर फिर उन्होंने मान भी लिया अभी चेंज भी हो गया सर
5: इस विजय की परिस्थिति खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं तो हंसी मजाक मस्ती का मूड ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है ऐसा नहीं भीतर से देश का भाव मैं सच बताता हूँ ये वीडियो सामान्य नहीं है आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहे
6: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी और वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे तो मिलिट्री वाले को फ़ोन आया कि भी पाकिस्तान से नहीं आना है तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया सेकेंड राउंड 3-2 से जीत गया पर दोनों के सर लग गए आपस में तो दोनों के लग गए कट वो फाइट तो मैं जीत गया

0: उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
3: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से मेरा बर्थडे था तो आज सर की
2: बहुत बधाई।
3: ओनली एक ही
2: सर मेरे सर के।